0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहाँ आपको

भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: पुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी औसत सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ITIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज़।
4: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
6: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles,

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055

0: 7057052।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

स्वागत अभिनंदन है आप सभी का, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने देसी रेडियो यानी एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ। यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, 8:22 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। आज 4 जुलाई की सुबह है, दिन है आज शनिवार का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करते हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सभी लोग सुबह सुबह इतने खूबसूरत संदेश जो पहुंचा देते हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं कहते हैं, पहचान से मिला काम कम समय के लिए ही चलता है, कि पहचान से मिला काम कम समय के लिए ही चलता है लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप पहचान से जो है अपने काम को चलाने वाले हैं या फिर अपने काम से जो आपकी पहचान बनी है उसको आप मेंटेन करने वाले हैं। मैं तो कहूँगा कि अपने काम पर थोड़ा फोकस कीजिए, अपने काम को थोड़ा सा जो है और इन्हांस कीजिए, अपने आप पर थोड़ा और वर्क कीजिए। आई एम रियली श्योर कि जो काम आज आप कर रहे हैं ना वो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको एक ना एक दिन, है ना। तो बस भरोसा रखिए अपने आप पर, उस अपने ऊपर वाले पर, अल्लाह पर, वाहेगुरु पर, खुदा पर, भगवान पर, ईश्वर पर, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस पर एक बार यकीन रखिए, उस शक्ति पे, उस परमपिता परमात्मा पे, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। क्या हुआ जी, डाउन फेसेस आ गए हैं जिंदगी में, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिंदगी है तो डाउन अप डाउन तो चलती रहती है, लाइफ ये सबकी जिंदगी का पार्ट है। अगर हमारी जिंदगी में अगर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तो सोचिए फिर ये गम कहाँ जाएगा, है ना। और जो ये थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, इससे हमें एक्चुअली रियलिटी पता लगती है ना, बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं जो शायद खुशी के आलम में ना हो, है ना। फिलहाल आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वाइब हैं जो आपके लिए लेकर आ गया हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, आप सुनते हैं आरजे आनंद को। एक बेहतरीन ट्रैक के साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत लेडीज एंड जेंटलमैन। आने वाला एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी ऑसम और आपको बनाएगा दीवाना। तो आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, चलिए इसी को सुनते हुए करेंगे अपने दिन का एक बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन वार्म वेलकम एंड आप सभी का स्वागत है जी। चलिए साथ में मिलकर गुनगुनाएंगे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। थोड़ी सी देर में लौट कर आता हूँ, 8:24 हो रहे हैं।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर्नी और समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: मोहब्बत है तुमसे।
1: बिल्कुल जी, हमें भी ऐसी ही मोहब्बत है आपसे, इसीलिए तो हम आपके लिए डेली आ जाते हैं आपके रेडियो सेट पे, छोटे से रेडियो पे मंडे टू सैटरडे आता हूँ जी। स्वागत अभिनंदन है, 8:36 का समय हो गया है हमारे स्टेशन की घड़ी में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी समय के साथ चलिए। कहते हैं जो समय के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा जीत होती है। देखिए लाइफ में ना हर टाइम आपको हर चीज नहीं मिल सकती, ये चीज तो दोस्तों आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप जो चीज चाह रहे हैं वो आपको तुरंत उसी वक्त आपके अनुसार मिल जाए। कुछ कुछ चीजें ना ऊपर वाले ने सेट करके रखी हुई हैं और वो सही समय आने पर ही आपको मिलेंगी। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो अपने वक्त आने पर ही बदलती हैं, अपने वक्त आने पर ही मिलती हैं। तो थोड़ा सा जो है वक्त दीजिए वक्त को भी। और मुझे ऐसा लगता है जिसके पास पेशेंस की घड़ी है, जिसके पास सब्र नाम की घड़ी है, यकीन मानिए उसकी जिंदगी बहुत तेजी से चमकने वाली है। अगर आपके पास वो घड़ी है तो आप बहुत ही खुश नसीब है मेरे दोस्त। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। श्रोताओं, 4 जुलाई की तारीख है आज, क्या कहता है आज के दिन का इतिहास, चलिए एक नज़र डालेंगे आज की मुख्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर। और हर दिन का इतिहास बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल जानने को और सीखने को मिलता है हमें। श्रोताओं, आज का जो ये दिन है वो अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन ढेर सारी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जिनका जिक्र आज के इतिहास के पन्नों में किया गया है। श्रोताओं, आपको बता दें बुर्दन का युद्ध समाप्त हुआ था सन 1914 में। आज के दिन रूस के राष्ट्रपति बोरियस पुनः 4 वर्ष हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित 1996 में हुए। श्रोताओं, आज के दिन एंड अमेरिकी यान सोजर्न मंगल ग्रह पर जो है आज के दिन पहुंचा था 1997 में। आज के दिन श्रोताओं,

सन 2007 में वेबसाइट सीडो कॉमन के मुताबिक मेक्सिको के जो स्लिम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे श्रोताओं आज ही के दिन, और आपको बताते चले आज ही के दिन चिराग शेट्टी जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनका भी जन्म हुआ था 1957 को। लक्ष्मीकांत जी का भी आज ही के दिन जो है जन्म हुआ श्रोताओं। और आपको बताते देवेंद्र कुमार जोशी इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था 1954 को। सुनील कुमार जो अभिनेता है हिंदी फिल्मों के अभिनेता 1945 में उनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आपको बताते चलें आज ही के दिन नसीम बानो हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री सन 1916 को उनका भी जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन। ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपके साथ लगातार साझा करते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप जुड़ते हैं आनंद के साथ, बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक, और तमाम सारे श्रोता साथी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। एंड डेफिनेटली हम आपसे अभी और भी बातचीत करेंगे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही आरजे आनंद को सुनते जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जैसे हमारे कुछ श्रोता साथी जुड़ चुके हैं। हमारे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर, हेलो गुड मॉर्निंग आनंद जी आप कैसे हैं, हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं जी, गुड मॉर्निंग। इनका नाम पल्लवी है, इन्होंने मुझे मैसेज किया है लाइन पार से ही, और पल्लवी लिखती हैं कि आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो आनंद जी, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। बहुत ही खूबसूरत आपने बोला है पल्लवी जी, 100% आई एग्री विद यू। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है कि आपके अंदर अगर कितनी भी प्रतिभा क्यों ना है, लेकिन अगर आप उसको आप लगातार उस पर प्रयास नहीं करोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, तो वो व्यर्थ है। मुझे भी लगता है आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और जब आप सही दिशा में प्रयत्न करते हैं ना, प्रयास करते हैं, तो यकीन मानिए उसका रिजल्ट भी आपको बेहतर से बेहतरीन मिलता है। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है, बड़ी सुंदर फोटो हमारे पास पहुंची है। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत है। आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है, गाने आप बहुत ही अच्छे प्ले करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे पास ये मैसेज पहुंचा है, इन्होंने क्या नाम लिखा है अपना, हरी, ऑल राइट, हाय हरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड एक मैसेज और हमारे पास पहुंच गया है अभी आज की मॉर्निंग जो है, इतने प्यारे प्यारे संदेश आप कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। कुछ अच्छे गाने निकाल रहा हूँ आपके लिए ताकि जिनको सुन के आपकी सुबह डेफिनेटली अल्टीमेट हो जाए, एंड ऑफ कोर्स अच्छे गाने बजते हैं तो मजा आ जाता है। हमारे साथ सहारनपुर से हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं वो जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड मॉर्निंग। एंड साथ में लिखते हैं गलत लोग गलती करके भी शर्मिंदा नहीं होते और सही लोग केवल इल्ज़ाम से ही टूट जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है आपकी बातों में। एंड इसी बीच एक और संदेश हमारे पास पहुँच गया है कि नुस्खे निकाल इस कदर हमें, इन्होंने लिखा है कि नुस्खे निकाले हैं इस कदर हमें लोगों ने जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और इंसान निकल गया। हाँ बात तो बिल्कुल सही की है जनाब, थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप भी अपने संदेश पहुंचा सकते हैं हमारे स्टेशन के पर, बहुत सिंपल नंबर है 9837896896 पर। अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में, 8:41 का समय हो गया है।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिला।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
4: अरे आनंद, इस

छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो चुके होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे स्कूल पहुंच भी चुके होंगे डेफिनेटली। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी मैं आपको फटाफट से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुबह का समय है, तो अपनी शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन अगर सुबह की शुरुआत आप अच्छे पॉजिटिव तरीके से करेंगे, अच्छी वाइब्स के साथ करेंगी, तो आई एम रियली श्योर आपका सुबह और आपका दिन दोनों ही अच्छा हो जाएगा। फिलहाल करंट टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर हवाओं की बात करें तो आज हवाएँ जो है भाई साहब कितने किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हैं, तो बस 1 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने वाली है। एयर क्वालिटी बेटर से थोड़ी बेटर नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हल्का सा पोल्यूटेड रहने वाला है, एंड ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ऐसी रहने वाली कि गर्मी उमस वाली आपको लगने वाली है डेफिनेटली आज, है ना। तो बाकी अभी ये जो टेम्परेचर है ये डेफिनेटली अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, 35 तक पहुँचेगा, एंड गर्मी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन शाम होते होते मौसम बदल भी सकता है। तो चलिए मौसम की बात हमने यहाँ पर कर ही ली है दोस्तों, एंड मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत ही ये सिंपल सवाल है, एंड आई एम श्योर आप इसका जवाब मुझे डेफिनेटली पहुँचा दोगे। तो आप मुझे ज़रा ये बताओ कि आपका फेवरेट रंग कौन सा है, मतलब आपका फेवरेट कलर कौन सा है, कौन से कलर के कपड़े हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, प्रीमियम लगते हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड लगते हैं, एंड सुबह सुबह मैं कलर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, डेफिनेटली इस पर हम अभी आगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कलर्स के बारे में मैंने क्यों जिक्र किया है, और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन भी क्यों पूछ रहा हूँ इसके पीछे भी एक रीज़न है, कुछ रिसर्च मैं करके लाया हूँ, कुछ फैक्ट पता करके लाया हूँ। आप पहले मुझे मैसेज करके बताइएगा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको कौन से फेवरेट कलर का फ्रूट्स, सब्जी या फिर कपड़ा या फिर कलर्स, कोई भी कलर हो सकता है, और उसमें कुछ भी चीज़ इंक्लूड हो सकती है, कुछ भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, यार मुझे ये कलर बहुत पसंद है, मुझे इस कलर के कपड़े, मुझे इस कलर का टी शर्ट, इस कलर के फ्रूट्स, मतलब कुछ भी, व्हाटएवर, जो भी आपको लगता है आप मुझे मैसेज करिएगा आपका फेवरेट कलर कौन सा है। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसका अगर आपको अर्थ पता है तो बहुत बढ़िया, कि आनंद मुझे ये कलर इसलिए पसंद है क्योंकि इसके पीछे का ये कारण, जैसे होता है ना कि अगर आप ग्रीन कलर को देखते हैं या फिर पहनते हैं, अपने आसपास ग्रीन चीज़ें लगाते हैं, तो इन्वायरमेंट को नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि भैया सब कुछ हरा भरा रहे, एकदम बढ़िया रहे, एकदम खूबसूरत रहे, अपना मन जो है शांत करने वाला होता है ग्रीन कलर, है ना। तो ऐसे ही जैसे ब्लैक कलर बहुत ही प्रीमियम कलर होता है, रेड कलर बहुत इमरजेंसी का सिग्निफिकेशन होता है कि भैया रेड कलर मतलब बहुत कुछ ना कुछ इमरजेंसी वाला सीन है, जैसे आपने देखा होगा जब भी रेडियो स्टेशन पे आप होते हैं तो वहाँ पे भी ऑन ईयर रेड होता है, तो हर कलर का एक उसके पीछे एक स्टोरी है, एक उसके पीछे एक कहानी है। बट मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, यू कैन टेल मी, उसके बाद फिर हम उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप आनंद के साथ हैं, ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए। गुड मॉर्निंग, हाय आनंद कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये हमारे साथ प्रियांशी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखती हैं सुबह सुबह आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आता है, आनंद जी थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत बढ़िया लगता है। एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। ये मैसेज मेरे पास किनका पहुंचा, ये राजू जी मुझे मैसेज करते हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है जुल्फी भाई का, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपको सुन के मॉर्निंग बिंदास हो जाती है, शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। नीतू जी मेरे साथ जुड़ी हैं, हमारी रेगुलर लिसनर, लिखती हैं हाय आनंद जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी आपको भी राधे राधे, लिखती हैं आनंद भाई कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ नीतू जी, एंड लिखती हैं मेरा नाम नीतू सिंह है और आपको सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आप देते हैं, न्यूज़पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको सुनने के बाद जो सुबह सुबह बिंदास हो जाती है मॉर्निंग, क्या कहने, वाह। लेकिन ये सॉन्ग बहुत ही अच्छे प्ले करते हुए एक से बढ़कर एक गाने होते हैं, एकदम अमेजिंग हो जाती है हमारी मॉर्निंग, बहुत ही अमेजिंग शो करते हैं आनंद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच नीतू जी, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, और इतने अच्छे मैसेज ये हमें जो इतना मोटिवेट करते हैं, इतना इनकरेज करते हैं कि हम और अच्छा काम करें, अपना जो पोटेंशियल है उसको और 100% यूज़ करें, थैंक यू सो मच। लाइन पार ढक्का से आप जुड़ी, एक मैसेज मेरे पास पहुँच गया है, इनका नाम भी नीतू है, ओ भाई एक साथ दो दो नीतू जी आ गए, रुकिए ना मैडम आपके प्यार की बात सुनूंगा मैं, जरा नीतू जी को सुन लेता हूँ। एक और मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सर कैसे हाल चाल है, ये मुझे गायत्री नगर से मैसेज कर रही है, लिख रही है गुड मॉर्निंग आनंद जी, आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही हूँ, आप इनवाइटेड है, वाह वाह क्या बात है, वैसे पोहा तो हमारा फेवरेट है नो डाउट। वेल नीतू जी थैंक यू सो मच, बैक टू बैक दो नीतू हो गई है, एक लाइन पर ढक्का से जुड़ी है, दूसरी गायत्री नगर से जुड़ी है। चलिए फिलहाल ही गाना सुनते हैं और

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
4: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।
6: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
9: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
10: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
11: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

वेलकम बैक की तीसरी घंटे की शुरुआत 9 बज चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। इनफैक्ट 9 बज के 6 मिनट हो गए हमारे स्टेशन क्लॉक में। आप जुड़े हैं आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। एंड फिलहाल अभी एक बड़ी ट्रेंड कर रही है एक सुबह सुबह खबर, ओडिशा की 5वीं कक्षा की इंग्लिश किताब में गलती से छप गया है बॉलीवुड का गाना हम दिल दे चुके हैं। सनम बड़ी पॉपुलर मूवी थी, स्टारिंग बाय ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान भी थे इसमें। बहुत ही बढ़िया गाना था, एक निबूढ़ा निबूढ़ा तो ये जो लोकप्रिय फेमस ट्रैक है वो उसके जो बोल हैं वो एक्चुअली इस किताब की इस पे छप गए हैं, मतलब किताब के अंदर बेसिकली ये छप गया है। और उसके बाद उसकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि ये गीत जो है पाठ्य पुस्तक में अनजाने में मतलब जो है शामिल हो गया है। एंड इसके बाद जो है बट ये अब सोशल मीडिया पे इंस्टेंटली बहुत वायरल हो गया है। उड़ीसा का ये घटना है, वहाँ की 5वीं क्लास की जो स्टूडेंट हैं उनके इंग्लिश बुक पर जो है निबूढ़ा छाप दिया है। भाई अब समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा चलो अगर हिंदी पे भी होता तो समझ में, इंग्लिश की बुक पे हिंदी वाला गाना छाप दिया है भाई। खैर क्या ही कर सकते हैं भैया, क्या क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है शायद वो नींबू पानी पीकर आए होंगे जो इसको छाप रहे होंगे, गलती से फिर उन्होंने यही कर दिया। कल मैंने आपको बताया था ना एक जगह पर एक कपल ने जो है क्रिएटिविटी की हद पार कर दी, उन्होंने जो है प्रपोज करने के लिए एक अलग ही बिल्डिंग का सहारा लिया एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, फिर उनका सर्कुलेट हो गया सोशल मीडिया पे एंड अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है उनकी न्यूज़। डेफिनेटली इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम मुरादाबाद के पार्कों के बारे में भी बात करने वाले हैं, अगर आप मुरादाबाद से हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है। डेफिनेटली मैं इस पे बात करूंगा अभी थोड़ी देर में आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आज मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे व्हाट्सएप करके ये बताओ जरा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, बिकॉज आज हम कलर की डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ अपने शो पे। एंड बेसिकली ये डिस्कशन इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज कलर के पीछे एक कुछ रिसेंटली एक रिसर्च हुई है जिसको लेकर मुझे लगा कि आपसे चलो आज यही पूछना चाहिए आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको कौन से फेवरेट कलर की फ्रूट सब्जियां कपड़े क्या अच्छा लगता है, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा। कुछ फैक्ट्स निकल के आए हैं कलर्स के, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रेड कलर के बारे में बताया भी था कि जो लाल रंग होता है वो सबसे पहले नजर आने वाला होता है, रंगों में से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है एंड इसी वजह से ट्रैफिक सिग्नल में रुकने के लिए भी लाल रंग का ही इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा ना, है ना। एंड इनफैक्ट जब ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पे भी रेड कलर होता है। रेड कलर को वैसे तो इसका जो सिग्निफिकेशन है वो खतरे की घंटी को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, माना ऐसा जाता है कि भैया रुक जाओ अगर ज्यादा रेड क्रॉस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा अभी ब्लू कलर के बारे में पता लगा है, ब्लू कलर का जो फैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो नीले रंग होता है वो लोगों को भरोसा और भावना उनमें पैदा करता है, बेसिकली क्रिएट करता है, इसलिए कई बार आपने देखा जो बैंक वगैरह होते हैं, जो कुछ सेक्टर्स होते हैं, जो कुछ ब्रांड्स होते हैं, वो इन कलर्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन कलर्स को ज्यादा यूज करते हैं बेसिकली। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स हो गए हैं एंड जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो ब्लू कलर को ज्यादा इस्तेमाल करती है ताकि उनके जो ट्रस्ट है वो बेसिकली बिल्ड हो ब्लू कलर पे, है ना। एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो येलो कलर को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, येलो कलर बेसिकली दिमाग को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, इसी की वजह से जो है येलो कलर को ज्यादा रखा जाता है। एंड बताया जाता है कि इसी जो है कारण चेतावनी बोर्ड पे भी कई बार जो विज्ञापन आप देखते हैं उसमें येलो कलर का इस्तेमाल होता है। एंड जो ग्रीन कलर है, दिस इज हरा कलर, यस, जो हरा रंग होता है वो आंखों के लिए सबसे ज्यादा आरामदायक होता है, आप भी जानते हैं। एंड ये आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल माना जाता है, इसलिए लंबे समय तक जो है लोगों को हरियाली देखने पसंद है और वो देखने तो उन्हें सुकून मिलता है बेसिकली। आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर्स के वहां पे जाते हैं तो ग्रीन कलर के पर्दे लगे होते हैं, आई एम श्योर आपने देखा होगा, है ना। जब हम कहीं अच्छी जगह पे वेडिंग हॉल्स में जाते हैं या कहीं पे घूमने की डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है ताकि हम जो है वहां पे रुके, हमारा मन प्रफुल्लित होने लगे, वाओ सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटी। तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं वे हम आगे आगे शेयर करेंगे और कुछ कलर्स जिनको ब्रांड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज करती है इन कलर्स को ताकि अट्रैक्ट हो। अच्छा, ये कलर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट क्यों होते हैं, इन पर डेफिनेटली भी मैं और बात करूँगा। एक ऐसा कलर है जो आई एम श्योर आपका मेरा हम सभी का ना ऑल टाइम फेवरेट कलर है। इनफैक्ट ये कलर काफ़ी प्रीमियम होता है, काफ़ी क्लासी होता है, बट अगर हम उसमें कुछ अच्छी चीज़ें सर्च करें तो मिल भी जाती है, बट कई बार वो औकात से बाहर चला जाता है, लेकिन सी हम लोग उसको ढूंढ लेते हैं। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, मॉर्निंग शो चल रहा है, आप लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ऑल द वे बेस्ट, जो जहाँ जा रहा है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। वीकेंड है, सैटरडे है, मैंगो फेस्टिवल के बारे में बात करने वाला हूँ। Yes, यूपी में मैंगो फेस्टिवल जो है शुरू हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे अभी जरा सी देर में। आप आनंद को सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:11 हो गए हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात कर दी है यार मैंने, काम करते हैं कि अच्छे से गाना सुनते हैं एंड उस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, जुबिन भाई की आवाज एंड सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक आज की सुबह, सच अमेजिंग ट्रैक।

एक ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें पता लगा है कि भैया जो मिलियर्स है, जो हमारे पुराने वाले लोग हैं, वो अकॉर्डिंग आज की जिंदगी के हिसाब से ज्यादा यंग दिखते हैं, ऐसा अभी एक रिसर्च में पता लगा है। एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है। 9:19 हो गए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो रीसेंट। यस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, यू बिलीव इट एवरीबॉडी, एक रिसर्च में से पीपल बॉर्न बिटवीन 1985 एंड 1995 में जो लोग हैं वो अभी अकॉर्डिंग आज की जेंजी के हिसाब से ज्यादा यंग दिखते हैं। एंड ये जब मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है। एक्चुअली खुद ये जो रिसर्च है अभी रिसेंटली आई है कि कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि जो 1985 से लेकर 1955 के बीच जन्मे लोग हैं, यानी कि जो हमारे मिलेनियल्स है, वो अपनी वास्तविक जो उनकी बेसिकली एज होती है उस उम्र से वो कम दिखाई देते हैं, और कई मामलों में तो कुछ जेंजी लोगों से भी ज्यादा यंग दिखते हैं। वो जो आज के हमारे जेंजी है, मतलब कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पहन लिया, हमें लगता है ये फैशन है, जो मर्जी फॉलो कर लो, मतलब सब कुछ तो हमने फैशन में ही काउंट कर दिया है। बट जो अकॉर्डिंग अभी आज की जेंजी को देखा जाए, और जो ये 1985 के लोग हैं या फिर जो 1985 से जो 1985 के बीच के लोग हैं वो ज़्यादा यंग दिखते हैं आज की जिंदगी के हिसाब से। एंड बताया जाता है कि भैया ये लोग अपनी फिटनेस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लुक्स का बहुत ध्यान रखते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, लाइफस्टाइल

0: उनका बहुत डिफरेंट होता है, चीज़ें बहुत यू नो सोच समझ के वो मेंटेन करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, वो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा यू नो अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, बेसिकली उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसलिए ये रिसर्च कहती है कि जो वो वाले लोग हैं वो आज के ज़माने के बच्चों से ज़्यादा यंग दिखते हैं। भाई कह सकते हैं भाई, नो डाउट, आजकल की हमारी मम्मियों को देख लो कितनी यंग दिखती है ना। तो यू नो कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल, उनका खानपान बहुत डिफरेंट था, हमारा खानपान बहुत डिफरेंट हो गया यार। तो भैया मैं बस आपको ये रिसर्च बता रहा था कि एक दिलचस्प दावा सामने आया, जिसमें मैं बता रहा था आपको कि 1985 से लेके 1995 के बीच जो जन्मे लोग हैं वो अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं यार, एंड उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज आज के बच्चों से ज़्यादा इनफैक्ट वो लोग यंग दिखते हैं। सो ट्रू, आई थिंक मैं तो इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ भाई। अभी हम मैंगो फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे, डेफिनेटली उस पर हम चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, उसके बाद वी कम बैक। आप कहीं मत जाइए, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधी नगर मुरादाबाद।
4: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
0: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
6: नालायक बेटा।
7: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
1: मैंगो फेस्टिवल के बारे में बात करने वाला था मैं। 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच जो है मैंगो फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है, यानी कि आम का जो महोत्सव है वो शुरू हो गया है, सीजन शुरू हो गया है मैंगो का। इस पे हम बात करेंगे अभी जरा सी देर में। आपने सुबह सुबह मैंगो शेक पी लिया क्या? ओहो क्या करूं, नहीं पाजी, ब्रेकफास्ट में मैं मैंगो शेक नहीं पीता हूं पाजी, मैं तो बस पराठे और दही खाता हूं। पाजी खाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। फिलहाल के लिए गाना, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे आज की सुबह।
8: तेरी सेवा करेंगे ओ मेरी बुल्लो रानी, हाय गॉड बड़ी हिट
1: रही, हाय हाय ढेर सारे मैसेज पहुंच गए। मयंक शर्मा जुड़े हैं पीतल नगरी से, लिखते हैं आनंद जी जय श्री राम, कैसे हैं आप? जो लोग फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लिफ्ट का यूज करते हैं वो टावर पर चढ़कर किसी को प्रपोज करने में उन्हें कोई आपने जो लिखा है ना मयंक, मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बात।
8: आजा
1: बिल्कुल मयंक भाई, मैं 100% एग्री करता हूँ यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, हमारे शो में आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। हमारे शो में आप आए, हमें अच्छा लगा यार, आपने शिरकत किया, थैंक यू। और कौन आ गया है मेरे शो पे, कौन ज्वाइन कर रहा है हमारा शो सुबह सुबह? ललिता जी जुड़ी है नवीन नगर से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हाल चाल है आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भाई। ये लिखते हैं आनंद जी, जिंदगी में खूबसूरत लोग बहुत आते हैं लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाए वो लोग थोड़े से कम आते हैं। बिल्कुल जैसे कि आप मेरे शो पे आते हो, थैंक यू फॉर कमिंग यार, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शो में आ रहे हो, इतने बढ़िया बढ़िया संदेश पहुंचा रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू यार।

मुरादाबाद में वृक्ष हमारा जीवन साथी इस अभियान के अंतर्गत जो है बहुत सारा पौधारोपण जो है कल किया गया। इनफैक्ट आपको बताते हैं मुरादाबाद के जो आशियाना कॉलोनी में है वहाँ पर पेड़ पौधों का जो है बहुत अच्छे से पौधारोपण किया गया है। एंड इसके अलावा आपको बता दें, जैसे कि आपको पता है कल हमने अंतर्राष्ट्रीय पॉलीथीन बैग मुक्त दिवस जो है सेलिब्रेट किया। इसी खास मौके पर जो है पेड़ पौधों को लेकर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और अपने शहर में ग्रीनरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, इसी को लेकर जो है कल इस अभियान के अंतर्गत जो है वृक्षारोपण किया गया, पौधारोपण किया गया। श्रोताओं, वृक्ष हमारे जीवन साथी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मुरादाबाद में जो है, मैं आपको सच बताऊं, जब आप नया मुरादाबाद जाओगे तो वहां पे इतना अच्छा ग्रीनरी है, मतलब मैं जब भी कभी वहां महाकालेश्वर मंदिर है, हम कभी घूमने जाते हैं तो मतलब अल्टीमेट है यार, वहां पर इतना बढ़िया देख के मन प्रसन्न हो जाता है। वहां की ग्रीनरी, इतनी बढ़िया ग्रीनरी है वहां पर, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन, बहुत अच्छा लगता है यार।

लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ हैं। ढेर सारे संदेश ऑफ कोर्स आपके पहुंच रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम मैंगो फेस्टिवल की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंगो फेस्टिवल है वो 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच लखनऊ में शुरू हुआ है। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया है। एंड राज्य के आम उत्पादकों को जो वहाँ पे मार्केट में आए हैं, उनको जो अपने मैंगो लेकर आए हैं, उनके व्यापार को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनकी सराहना की है। एंड इस दौरान उन्होंने बताया कि यूपी के देश में कुल आम की जो उत्पादन है करीब 26% योगदान जो है, जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है, जबकि इसका इसकी जो खेती है इस क्षेत्र में मात्र सिर्फ 9% है। सो ये जो मैंगो फेस्टिवल है ये शुरू हो गया है 3 जुलाई से लेकर ये 5 जुलाई तक जो है ये फेस्टिवल चलने वाला है। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैंगोज आपको देखने को मिलेंगे। एंड मतलब यू नो मैंगो फेस्टिवल है तो ऑफकोर्स आम के बारे में ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे आप जान सकते हैं, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के मैंगो डेफिनेटली आप वहाँ पे देख सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि जब मैंगो आम की बात आती है तो ऑफकोर्स यार बड़े से बड़े आम और नए नए वैरायटी के आम आपको मैंगो फेस्टिवल में देखने को मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे खासे अलग अलग तरीके के मैंगो आप देख पाते हैं मैंगो फेस्टिवल में। वैसे भी आम का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में तो तमाम सारे लोगों को आम की अलग अलग वेराइटीज़ डेफिनेटली पता है। एंड मैं खैर क्या ही बोलूँ, जो आम के शौकीन है वो तो जानते ही हैं, आम फलों का राजा है, बहुत पढ़ा है मैंने, आई एम श्योर आपने भी पढ़ा होगा यार। आपको बताते चलें, यूपी मैंगो फेस्टिवल में दिखेंगे 7 राज्यों के खूबसूरत जो है अलग अलग तरीके के मैंगो। एंड यहाँ पर बहुत सारे नए नए टैलेंटेड वाली चीज़ें भी आपको देखने वाली हैं। देखो मैंगो फेस्टिवल है, वहाँ पे कुछ और नई चीज़ें भी आप देख पाएंगे। एंड बेसिकली ये तो लखनऊ में चल रहा है फिलहाल, ये 3 से लेकर 5 जुलाई तक चलने वाला है मैंगो फेस्टिवल, और जिसका शुभारंभ कल हो चुका है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अच्छा, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस महोत्सव में, इस फेस्टिवल के अंदर 800 से अधिक आमों की जो प्रजातियां हैं वो प्रदर्शित होंगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैंगोज जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग। देखो यार, हर चीज़ पर जो है बात होती है, और मुझे लगता है मैंगो फेस्टिवल पर भी बात होनी चाहिए। एंड मुझे लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। वेल, अभी मेरे साथ ढेर सारे लिसनर्स भी जुड़ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे मैंने आपसे कलर के बारे में पूछा था, एंड मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, हाय, माय नेम इज़ रिद्धमा, ये मुझे लिखती है, आनंद जी मेरा फेवरेट कलर है येलो, एंड येलो कलर में मैं बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करती हूं। जब भी मैं येलो कलर पहनती हूं तो मुझे अपने आप में आत्मविश्वास आता है। वेरी नाइस रिद्धमा, थैंक यू सो मच। प्रेरणा वंस अगेन जुड़ चुकी है हमारे साथ आज की सुबह। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आनंद, एंड दिस इज माय फेवरेट कलर ब्लैक, ऑल टाइम फेवरेट है। ब्लैक में मैं बहुत ही ज्यादा यू नो कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और वो ब्लैक ऐसा कलर है, इतना प्रीमियम है, जिसके ऊपर भी जाता है ना उसको यंग और खूबसूरत बना देता है। ओ माई गॉड, रियली थैंक यू सो मच यार। वैसे ब्लैक कलर की खूबसूरती ये है यार कि ब्लैक को आप किसी भी यू नो मतलब उसका जो कॉम्बिनेशन है किसी भी चीज़ के साथ मैच कर जाता है, बहुत ही बढ़िया है ब्लैक कलर तो यार, नो डाउट। और इन्होंने लिखा है, हाय गुड मॉर्निंग सर, ब्लैक कलर की गाड़ी हो या ब्लैक कलर की शर्ट हो या ब्लैक कलर की टी शर्ट हो, बहुत अट्रैक्ट करती है, ब्लैक कलर अपने आप में ही बहुत सॉलिड होता है। हाँ जी बिल्कुल, एक मैसेज हमारे पास आया है प्रीतम का, लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, रेड कलर मेरा फेवरेट है, जब भी मैं रेड पहनता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, और रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। क्या बात है यार। एक मैसेज और आ गया है, गुड मॉर्निंग, हाय आनंद कैसे हैं आप, ये मुझे ललिता कश्यप मैसेज करती है नवीन नगर से, लिखती है, माय फेवरेट कलर इज रानी ग्रीन पिंक पर्पल कलर येलो कलर माय फेवरेट कलर। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। एक संदेश और पहुंच गया है मेरे पास, गुड मॉर्निंग जी, ये बबली अनजान गीता कश्यप लिखते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले मेरी तरफ से सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सभी को, एंड मुझे तो थोड़े से लाइट रेड कलर बहुत पसंद है, क्या बात है। रिजवान खान साहब जुड़े हैं ग्राम बीजना से, लिखते हैं, हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, अगर रंगों की बात कर रहे हो तो मेरा ब्लू कलर बहुत ही फेवरेट है, मुझे ब्लू कलर बहुत ही पसंद है, एंड साथ में ब्लैक एंड व्हाइट तो सभी का फेवरेट होता है, इनफैक्ट मेरा भी है। क्या बात है यार। हेलो आरजी आनंद, कैसे हालचाल हैं आप, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हार्ट टचिंग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग होता है आपका, एंजॉय करते हैं हम, एंड बहुत ही मजा आता है आपका शो सुनने में, थैंक यू वेरी मच। अजीत कसाना मैसेज कर रहे हैं मुझे लदा बली से, थैंक यू सर। आप ही व्हाट्सएप करो, बताओ मुझे आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। हेलो जी, बातों में मैं बताने भूल गया हूँ कि आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आनंद विद यू, आई विल बी राइट बैक। इस गाने के बाद कुछ एड ब्रेक, उसके बाद मेरी एंट्री होगी।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
6: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: क्या बात है यार, क्या बात है, इतना बढ़िया गाना सैटरडे सैटरडे आपने सुन लिया, मेरे को तो मजा आ गया, आई एम श्योर आपको भी मजा आ गया होगा। अच्छा अभी जल्दी से जरा काम की बात करते हैं फटाफट से। वेलकम बैक है आप सभी का, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ हैं आप। 9:42 हो गए स्टेशन क्लॉक में, और अभी मैं आपको बता दूं जो ये ई रिक्शा चलते चलते बंद हो जा रहे थे, जो लोग ये जो प्राइंग बेसिकली कर रहे थे, अब इसको जो है बेसिकली इससे जुड़ी एक न्यूज़ आ रही है कि भैया ई रिक्शा को 20 सड़क पर रोकने वाली जो ये 3 ऐप थी, अब ये होगी बंद। केंद्र सरकार ने जो है इसको प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। मतलब जो लोग ये बदमाशी कर रहे थे, जो लोग ये यू नो प्राइंग कर रहे थे या जो मज़े में ये चीज़ कर रहे थे, अब ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से जो है इसको हटाने का जो है बताया कि भैया अब गवर्नमेंट की तरफ से इसको हटा दिया जाएगा प्ले स्टोर से, यानी कि पेट BMS नाम की जो ऐप है इसको प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया गया है। सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि भैया उस ऐसे ऐप को जो है तुरंत रिमूव कर दिया जाए प्ले स्टोर से, जो लोगों की प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, होना भी चाहिए यार, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अभी यहां पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कड़क अपडेट फटाफट से बता देता हूं। भैया आमिर खान साहब बॉलीवुड के जो एक्टर हैं उनकी कल शादी होने वाली है। एग्जैक्टली उन्होंने खुद ने खुलासा किया है कि भैया मेरी शादी 5 जुलाई को हो रही है, बहुत ही छोटी सी शादी वो करने वाले हैं, घर पर ही बेसिकली वो ये शादी प्लान करेंगे फैमिली के साथ। कुछ जो उनके मतलब खास करीबी मित्र हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी वेडिंग में मौजूद रहेंगे। एंड उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है ये पोस्ट किया कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा मुझे खुश रहने की ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद देंगे। तो कल यानी 5 जुलाई को टुमारो बॉलीवुड के बहुत ही शानदार एक्टर आमिर खान साहब जो है कल शादी करने वाले हैं। लेटेस्ट न्यूज चलिए मुझे लगा अब तक पहुंचनी चाहिए भाई, ढेर सारे मैसेज आपके पहुंचे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपको बताते चलें एक बहुत ही हम सभी का फेवरेट वाला जो रियलिटी टीवी शो है बेसिकली वो फिर से शुरू होने वाला है। एग्जैक्टली 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा खतरों के खिलाड़ी सीजन 15, इसका जो है हम सभी को इंतजार था बहुत तेजी से। सो अब इसकी जो है धूम मची हुई है एंड ये जो है आने वाला है 25 जुलाई को इसका 15वां सीजन स्टार्ट होने वाला है। एंड सैटरडे को जो है ये कलर्स टीवी पे आएगा, सारे लोग जो इसका से इंतजार कर रहे थे यू नो अब उनका एक्साइटमेंट जो है और ज्यादा होने वाला है। 25 को शुरू हो जाएगा ये, मैं सच बताऊं तो इसमें जो है ना बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट्स होते हैं और बहुत ही मजा भी आता है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और एक जो मेरे पास क्वेश्चन है डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वॉइस नोट मेरे पास आज की सुबह पहुंचा है भूपी जी का, जरा सुनते हैं।
1: घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, जिस प्रकार वे समय को वश में नहीं कर सकती, वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो नियति को वश में नहीं कर सकता। एक झूठ तुमसे 100 झूठ बुलवाएगा, मगर तुम सच बोलना समझने वाला खुद समझ जाएगा। अंत में तुम दोषी निकलोगे हर उस रिश्ते में जिसको निभाने में तुमने निस्वार्थ प्रेम दिखाया। नमस्कार, राधे राधे, बिंदास मॉर्निंग, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर RJ आनंद के साथ। मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत भागपड़ा से बोल रहा हूँ। सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग, जिसको प्रस्तुत किया जा रहा है RJ आनंद के द्वारा। भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे वॉइस नोट जो सुनाए देंगे सारे शहर को, सारे देश को, और हो सकता है सारे संसार को। उसके लिए आपको नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जो नंबर है 9838 96 896। जी हाँ, वही नंबर जो आपको मिलाता है RJ आनंद से। नमस्कार, राधे राधे।
0: थैंक यू सो मच भूपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी दिल से थैंक यू इतने प्यारे मैसेज के लिए, आप इतना अच्छा वॉइस नोट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अभी स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 9:46, आप RJ आनंद को सुन रहे हैं ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे। ढेर सारे संदेश आपके पहुंचे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सबने अपने अपने फेवरेट्स कलर्स के बारे में जिक्र किया है। एक मैसेज मेरे पास आया, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, दिस इज माय फेवरेट कलर इज पर्पल, आई लव दिस, माय ये कलर मुझे बहुत पसंद है। एंड ये राजा कश्यप जी ने मुझे मैसेज किया है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मुझे तो यू नो ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, ऑरेंज कलर भी बहुत ही अच्छा होता है। एक मैसेज आया, हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कलर एंड माय ऑल टाइम फेवरेट कलर व्हाइट कलर, आई लव व्हाइट कलर, यू नो स्कूल ड्रेस भी हमारी व्हाइट होती थी, बहुत ही अच्छा लगता था व्हाइट कलर पहनने में एक्चुअली। और एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, मुझे एक कलर बहुत पसंद है एंड दिस इज माय फेवरेट कलर ब्लू कलर, मेरे को ब्लू बहुत ही अच्छा लगता है ब्लू कलर। थैंक यू सो मच। आज हम रंगों की बातें कर रहे थे कि भैया आपका फेवरेट रंग कौन सा है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और कलर से जुड़ी कुछ फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो वही मैं आपको बता रहा था कि कौन सा कलर जो है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो अक्सर इन कलर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े प्रीमियम होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये वो कलर होते हैं जो थोड़े से ना यू नो अपनी तरफ हमें आकर्षित करते हैं। उन कलर्स के बारे में आज हम बात कर रहे थे। जैसे अभी हमने ब्लैक कलर के बारे में बात करी। जो काला रंग होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, बहुत ही प्रीमियम होता है, बहुत ही लग्जरी का प्रतीक माना जाता है ब्लैक कलर। एंड इससे कई लोग यू नो बहुत ही ज़्यादा यू नो ऐसे फैशन के साथ साथ स्टाइलिश भी मानते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स इसका यू नो इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही प्रीमियम लगता है। अब मैं गाड़ी की बात करूं तो आप देखिए ब्लैक कलर की कार कितनी प्रीमियम एंड कितनी स्टाइलिश लगती है, तो जो एकदम अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो जो ब्लैक कलर है वो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं ब्लैक कलर को। एंड जो पिंक कलर होता है ये काफी शांति और सौम्य कलर माना जाता है। एंड कुछ जगहों पर इसका उपयोग जो है स्ट्रेस कम करने वाले माहौल के लिए भी किया जाता है। जो पिंक कलर का यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया। अभी मुझे किसी लिसनर ने बोला ऑरेंज कलर के बारे में। देखो मैं ऑरेंज कलर की बात करूं, ये मतलब हैप्पीनेस एंड आपकी यू नो जो इंस्टेंट एनर्जी है उसको बूस्ट करता है, उससे जुड़ा माना जाता है। एंड ये वाला कलर अगर आप पहनते हैं, अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं अपने डेली रूटीन में किसी भी तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आप इसको यूज करो। ऑरेंज कलर के आप फ्रूट्स खा सकते हो, ऑरेंज कलर के आप कपड़े पहन सकते हो, ऑरेंज कलर का आप पेन रख सकते हो, यू नो बहुत ही बढ़िया यू नो ऑरेंज कलर माना जाता है। व्हाइट कलर तो ऑफकोर्स यार बहुत ही बढ़िया है, स्वच्छता का प्रतीक है, देश दुनिया को शांति और स्वच्छता का एक मैसेज देने वाला व्हाइट कलर माना जाता है। आपको बता दें इंसानी आंखों में लगभग 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा रंगों के शेड्स जो है हमारी आंखें पहचान सकती हैं। यस, हमारी जो आईज़ हैं वो 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से भी ज़्यादा रंगों के शेड्स को पहचान सकती है। अभी फिलहाल कलर्स की बातें हो रही थी। थैंक यू सो वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे व्हाट्सएप किए हैं। गुड मॉर्निंग जी, राधिका मेरे साथ जुड़ी हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं? विकी जी, आई एम वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आनंद सर, गुड मॉर्निंग, आज हमारी बड़ी सिस्टर हीना का बर्थडे है, क्या बात है। वेरी हैप्पी बर्थडे शबीना खान जी आपकी सिस्टर को। ये नैनीताल से मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाउ यू, कैसे हैं आप? आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, झकास रहें। और ये लिखते हैं, जिसकी ओर कदम उठाए गए हैं, जिस दिशा में आप कदम उठा रहे हैं वो आपको सक्सेसफुल हो आपका वो कदम, हमारी तो यही तमन्नाएं हैं, गुजारिश है। थैंक यू सो मच ऊपर वाले से, बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम आपसे ढेर सारी बातचीत कर रहे थे यहाँ पर। एंड अभी एक कड़क क्वेश्चन भी होने वाला है जिसका जवाब आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करके बता सकते हो यहाँ पे। अगर आप देंगे सही जवाब तो आप बन जाएंगे हमारे शो के आज के सुपर स्टार। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब डेफिनेटली पहुँचाएंगे। आज का मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कभी कभी लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ यार। ये आने वाला गाना है, इट्स नॉट माई क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन इधर है जी, इसको जरा ध्यान से सुनो। ये एक चुटकी सॉन्ग होगा जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। अभी जो म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का है ये आप मुझे मैसेज करके बताना है। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, वेरी वेरी ट्रेंडिंग नंबर, कौन से गाने का म्यूजिक है आइडेंटिफाई करो। अभी देखो इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, ठीक है? तो आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे अपना नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाओगे, अपना फोन टाइप करोगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरा सवाल, ये जो म्यूजिक चल रहा है ये कौन से गाने का है, बहुत ही पॉपुलर नंबर है आपका, मेरा, हम सबका ऑल टाइम फेवरेट है। चलो व्हाट्सएप करो अभी, वही इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। इमीडिएटली मेरे को मैसेज करो अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, अपना सही जवाब।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
6: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
5: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
6: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
5: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
6: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
8: लेकिन सोनिया
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
8: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
4: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
9: सैटरडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। वीकेंड है, आई नो दैट, बस एक दिन और काम करना है, कल छुट्टी वाला दिन है। बहुत से लोग इसी एक्साइटमेंट में ऑफिस जा रहे हैं, सो ऑल द वे बेस्ट। निकलिए आप अपने ऑफिस पर, 9:55 हो गए, 10 बजने को है स्टेशन क्लॉक में। लेकिन उससे पहले एक अच्छा गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा गाना सुन लिया अभी आपने।
1: बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले
0: सुखवीर पाजी की आवाज ही अलग है यार। किसी का भाई किसी की जान से सुन रहे थे अभी आप। इसी गाने के बाद वेलकम बैक है। मैंने आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आज की सुबह, एंड आई एम श्योर इसका जवाब आप दे दोगे। लास्ट ऑप्शन आपके पास है, 10 बजने को है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गाने को आइडेंटिफाई करना है। कौन सा गाना है? वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स आपके स्कूल टाइम का फेवरेट होगा, आपके कॉलेज टाइम का गाना होगा। यू नो ये गाना हर किसी को याद है, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बहुत ही पॉपुलर नंबर है। चलो भाई अपना फोन उठाओ, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके मैसेजेस का। और अभी किसी एक लकी वन को शॉर्टलिस्ट करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, और किसी की मॉर्निंग बनाएंगे सुपर टूपर लाउड। और हाँ, मुरादाबाद के कुछ पार्क है जहाँ पे डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करने जा सकते हो। जैसे मुझे जो है यहाँ पे एक बुद्धा पार्क है, बहुत ही अच्छा लगता है, जो काशीराम में है। एंड दूसरा जो मेरे को अभी तक यहाँ पे सबसे अच्छा मेरे को लगता है जिधर जाने में, वो अपन का कंपनी बाग, वहाँ पे भी आप जाओ, बहुत बढ़िया सुकून उधर मिलता है। एंड ऑफकोर्स यार एक अम्बेडकर पार्क बना था, इतना बढ़िया था यार, मतलब मजा ही आ जाता है वहाँ पे भी। एंड अभी जो रिसेंटली सेवन वंडर पार्क बना है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो आप वहाँ पे अगर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ हमें टैग कीजिए वहाँ की फोटोज़ एंड वीडियोज़। अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हो सेवन वंडर पार्क, जब भी आप जाएं हमें भी टैग कर दीजिएगा। FM मुरादाबाद की ऑफिशियल आईडी है, इसी नाम से आप मुझे भी कर सकते हैं मेंशन। इंस्टाग्राम पे रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलते हैं। और किसी पार्क में जा रहे हैं तो भी आप हमें ज़रूर बताइए।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
4: अरे आनंद इज बैक।

0: हाय हाय नसरुद्दीन शाह एंड विद्या बालन पर ये गाना पिक्चराइजेशन, साथ में इमरान हाशमी भी नजर आए, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, डर्टी पिक्चर से हाय हाय क्या बात है, मजा आ गया जी। ऑफिस जाते जाते आप झूम रहे हो, श्रेया घोषाल बप्पी लहरी की आवाज का अमेजिंग कॉम्बिनेशन। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले जो है हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बेसिकली मैंने बड़ा सिंपल सवाल किया था कि गाना कौन सा था ये आपको बताना था। और आज 4 जुलाई को बहुत सारे लोगों ने मुझे कड़क आंसर दिए हैं, एंड दिस इज राइट आंसर। एब्सोल्युटली आप लोगों ने इतने अच्छे जवाब दिए हैं, जरा बता देते हैं आपको सही वाला जवाब क्या है, बहुत जरूरी है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना। तो दिस इज राइट आंसर एब्सोल्युटली
1: बोलती है ओ सनम ओ सनम हो मेरे सनम,
0: क्या सॉन्ग है, फ्लैशबैक मिल गया ये गाना आपको।
1: सफर में तू हमारा
0: बिल्कुल जी, हम भी आप ही के हैं, ऐसी बातें करोगे तो फिर कैसे चलेगा बबल। गाना बहुत ही अच्छा है यार, एंड आप सभी के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमें और इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आज का विनर कौन है, चलो इनकी आवाज सुनते हैं, इन्होंने सबसे पहले वॉइस नोट दिया था
2: जी सर, जो हमने सवाल किया है।
0: हाँ जी,
2: जवाब ये है
0: जी,
2: कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं ओ सनम ओ सनम, ये वाला है।
0: बहुत ही बढ़िया गुलाम जलानी पाशा जी, थैंक यू सो मच, आपने एकदम राइट वाला मैसेज जो है वॉइस नोट के जरिए पहुंचा दिया। और मैम का भी सुनते
3: राधे राधे राधे राधे मैम, जो म्यूजिक चला रहे हैं इसका राइट आंसर है कहो ना कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम,
0: क्या बात है, बिल्कुल थैंक यू मैम, मैं अपनी शीशे में आज जरूर आके देखूंगा कितनी ये बोलती है,
1: कहो ना कहो
0: ये बात सच है क्या,
1: ये आंखें
0: अच्छा
1: बोलती है ओ सनम।
0: थैंक यू सो वेरी मच इतने प्यारे मैसेज के लिए, जोरदार तालियां यार, दिल चुरा लेते हो आप लोग, दिल जीत लेते हो यार, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए भर भर के तालियां। 10:09 का समय हो गया, एक तो समय का पता नहीं चलता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ यार। देखिए भूपी शर्मा जी सही जवाब दे रहे हैं, लिखते हैं और साथ में मेरा ब्लू कलर बहुत ज्यादा फेवरेट है, साथ में फगवा रंग मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल हम सभी के फेवरेट कलर्स होते हैं, सारे कलर बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी गुड मॉर्निंग, आपने जो म्यूजिक चलाया था वो ये आंखें बोलती है करके ये गाने का आंसर दिया था रिजवान खान साहब ने। जरीफ बाबू मुरादाबाद से सही जवाब दे रहे हैं, साथ में हमारे पास मैसेज पहुंचा है बबलू जी का मुंबई महाराष्ट्र से, मंसूरी कॉलोनी से अरशाद हुसैन अंसारी डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत ही अच्छी अपडेट के साथ शो करते हैं आप। आनंद जी गुड मॉर्निंग, नोनेश कुमार जुड़ रहे हैं राइट आंसर के साथ, साथ में ललित कश्यप जी सही जवाब दे रही है, ललिता जी शुक्रिया। लक्ष्मी जी प्रकाश नगर से जुड़ी है सही जवाब के साथ, एंड साथ में साथ प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एंड डॉक्टर प्रेम कुमार जी जुड़े हैं,
1: ये आंखें बोलती हैं।
0: राम गोपाल गुप्ता बुद्धि बिहार से जुड़ रहे हैं सही जवाब के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश पहुंचा है, गुड मॉर्निंग हाय आई एम शाहरुख खान फ्रॉम मुरादाबाद, गुड मॉर्निंग आनंद भाई, मेरा फेवरेट कलर है व्हाइट एंड ब्लैक, एब्सोल्युटली ऑल टाइम फेवरेट होता है हम सभी का यार। आज बहुत सारे फैक्ट हमने आपको शेयर किए रंगों के बारे में, कलर्स के बारे में बताया कि कौन से कलर का क्या सिग्निफिकेशन होता है, जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो अक्सर इन कलर्स का इस्तेमाल करती हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं और थोड़े से प्रीमियम होते हैं। चलो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ फैबुलस मॉर्निंग, मिलते हैं अब आपको मंडे की सुबह, अपना ख्याल रखिए खूब सारा, एंजॉय करते रहिए अच्छे अच्छे गाने, अगली कंपनी भी आप एंजॉय कीजिएगा अगले आरजी के साथ, आई एम श्योर आपको बहुत सारा मजा आएगा अगली कंपनी में भी। फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे जाने की अनुमति, मिलेंगे आपको वेरी वेरी सून इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, एंड ऐसे ही आप जो है एफएम मुरादाबाद को प्यार देते रहिए। बाकी अगर आप भी हमसे सोशली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, हमारा इंस्टा आईडी मिलेगा आपको, ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, और हमारी ऑफिशियल आईडी आपको मिल जाएगी FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। चलो जी फिलहाल मैं अब यहां से निकलता हूं, वीकेंड है अच्छे से एंजॉय कीजिए, एंड मेरे पास कुछ टेक्स्ट मैसेज आए थे, हेलो आनंद जी आप कैसे हैं, जयंतीपुर से मुझे मैसेज आ रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच, नमस्ते भैया क्या हाल चाल है आपके, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, थैंक यू सो मच अपना मैसेज देने के लिए। नेहा अमरोहा से जुड़ रही है मेरे साथ, हेलो जी हेलो कैसे हैं आप, हेलो हेलो मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, चलो गाइस अपना ढेर सारा ख्याल रखो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो और सुनते रहो ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, अमेजिंग प्रोग्राम्स अमेजिंग गाने जो आपकी सुबह को बनाते हैं और भी जकास, सभी के लिए बाय बाय।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: I cannot sleep.
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जो रीना के साथ एफएम मुरादाबाद, गुड वाली मॉर्निंग है जी। ओ माय गॉड, गुड वाली मॉर्निंग है जी। मॉर्निंग मसाला शो में और समय की बात करूँ तो 10:19 हो चुके हैं श्रोताओं, और आपने क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, ना सोचना है, कुछ नहीं करना है, बिंदास होकर हमें मैसेज करना है। नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें। जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, किसी का नाम लेना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, क्योंकि ये स्टेशन आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, तो आपकी मर्जी है भैया, आप मैसेज करिए जो गाना सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, और आपको भी पता है कि भैया सैटरडे हमारे लिए कितना लकी होता है, क्योंकि फरमाइश शो के लेकर बात करूँ, इस शो के लेकर बात करूँ, तो इसमें जो आप सभी के प्यार प्यारे भरे जो मैसेज होते हैं ना, वो शामिल किया जाता है, आपके रिक्वेस्ट को भैया एक्सेप्ट किया जाता है। सो इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें फटाफट मैसेज करना चाहिए, क्योंकि जब आप मैसेज करेंगे तभी आप अपने फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। और बहुत से ऑफिस की तरफ पहुंच गए हैं, बहुत ऑफिस में बैठे बैठे भैया रेडियो एक लीड लगा लेते हैं कान में, क्या है, ईयरबड्स लगा के सुनते रहो, है ना। और किचन में जो हमारी प्यारी विमनिया है, अभी बहुतों के ब्रेकफास्ट चल रहा होगा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भैया, उसके बाद कुछ और काम करेंगे, क्योंकि भाई गर्मी देखा जाए तो आज थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है, यानी कि अभी बात करूँ तो मैं 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज का मुरादाबाद में, और बारिश का तो भैया कुछ कह नहीं सकते, भगवान जी को देखकर तो लग नहीं रहा है कि बारिश आ सकती है। फिलहाल बारिश आए ना आए, हमें तो भाई काम करना ही है ना। जो बाहर का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि पानी की बोतल अपने साथ रखिए, क्योंकि पानी की बोतल अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम टाइम पर पानी पीते रहिए, ताकि आपके अंदर यानी कि डिहाइड्रेशन बना रहे, पानी की कमी ना होए, साथ ही साथ ग्लूकोज ORS अपने साथ रखिए, ये अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है जी। चलिए फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं, एक मेरी पसंद का गाना मैं आप सभी को सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ और आप सभी के मैसेज यहाँ पर हम शामिल करते हैं।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आज रीना के साथ आप कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 10:29 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद में। हाँ जी, और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और आज की तारीख यानी कि 4 जुलाई बेहद खास है, क्योंकि देखिए इस महीने को शुरू हुई यानी कि आज चौथा दिन है, और आपने अपने अंदर यानी कि क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्योंकि देखिए 6 महीने खत्म हो चुके हैं, ये 6 महीने रहते हैं, और हमने जो चीजें काम नहीं की है वो अब शुरू की है। तो आपने बताना है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं और आपने क्या कुछ नया शुरू करा है, और आपने सोच लिया कि बस अब तो मुझे कल का इंतजार नहीं करना है, जो करना है आज ही करना है, क्योंकि देखिए कल के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं रहना चाहिए, है ना। चलिए बिंदास यानी कि मसाला मॉर्निंग शो में है। देखिए सब्जी वाला मसाला तो लगाते नहीं हम, बातों वाला तड़का तो लगा देते हैं। चलिए जी, देखते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास। अगर मैं मैसेज की बात करूं तो हमारे पास है, हेलो गुड मॉर्निंग रीना जी, जिला मुरादाबाद ग्राम बिजना से रिजवान खान जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं मुंबई से। बॉम्बे से रेल चलाई, ओके जी, ये गाना सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। चल सर, और अगले मैसेज आता है हमारे पास, ये कनेक्ट होते हैं रीना जी को, गुड मॉर्निंग विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं। और सर मेरा नाम बीना जी नहीं है, रीना जी है भैया, इन्होंने मेरा नाम ही चेंज कर दिया। बीना जी गर्मी बहुत करा रखी है आपने। अरे अरे सर, कहाँ हमने गर्मी करा दिया है बताइए, आपने तो नाम ही चेंज कर दिया तो ऑलरेडी अब तो गर्मी जरूर होएगी। और अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रवि सैनी लाइन पर मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं तुम्हारे बिना कहीं चैन ना आए। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार, ये गाना सुनना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना कहीं चैन ना आए। बिल्कुल जी, ये गाना हम आपको सुनवाएंगे, बस आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहिए ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि देखिए गुनगुनाना बहुत जरूरी है जिंदगी में। हमें यानी कि परेशान होकर थोड़ा डिप्रेस होकर बिल्कुल नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जो होएगा देखा जाएगा। बस अपने अंदर एक सोच जरूर रखनी चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, अभी से क्यों टेंशन लेनी है। टेंशन ले लेके बस सर में दर्द होगा और भी बहुत चीजें बॉडी में चेंजेस हो जाती है, तो इसीलिए बिंदास रहिए और FM मुरादाबाद सुनते रहिए।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: और एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेवर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

0: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है। और समय की बात करूँ तो 10:44 हो चुके श्रोताओं, और आप सभी से यही कहेंगे कि देखिए कल संडे है और आप सभी ने संडे की प्लानिंग जरूर करी होगी कि घूमने जाना है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ कि भैया पहाड़ों में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिलहाल तो यानी कि वेदर थोड़ा चेंज है इस टाइम। घूमने के लिए बस 2-4 दिन रुकना पड़ेगा आपको, उसके बाद घूमिए आप, एंजॉय करिए। लेकिन वही आस्था की बात करूँ यानी कि बद्रीनाथ की जो यात्रा है कल से शुरू हो गई है, और साथ ही साथ कटरा वैष्णो देवी की बात करूँ तो वहाँ पर भी बारिश यानी कि जमकर बारिश हो रही है। लेकिन जो श्रद्धालु है यानी कि जो भक्त है उनकी जो श्रद्धा है वो कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही। लाखों के कगारों में श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। उनका कहना है कि बारिश अपनी जगह, गर्मी अपनी जगह, लेकिन आस्था अपनी जगह होनी चाहिए। चलिए फिलहाल हम मैसेज की तरफ बढ़ते हैं आगे कि इनका क्या मैसेज आता है। ये लिखती हैं रामपुर से सबनम बी राहत अली और नेहा लाइबा काजमी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं रीना जी? बहुत अच्छे हैं। और ये गाना सुनना चाहती है, जो भी आप गाना सुनना चाहती है मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कृपया इस गाने को आप चेंज करिए, क्योंकि हम इस तरह के गाने भी रेडियो पर नहीं सुना सकते। बिल्कुल दर्द भरा, इंसान सोचिए जो प्यार में उसका अभी अभी दिल टूटा हो तो वो और भी चकनाचूर हो जाएगा, यानी कि जब कांच को तोड़ दे तो वो जुड़ता नहीं है तो उसको और ज़्यादा। पर ये गाना हम नहीं चला सकते, आप कोई और गाना भी बता सकते हैं मुझे, डेफिनेटली वो गाना मैं ज़रूर प्ले करूँगी। फिर फिलहाल ये कुछ लाइनें भी लिखती हैं, प्यार हो जाता है करता कौन है, हम तो कर देंगे प्यार में जान भी कुर्बान, लेकिन पता तो चले हमसे प्यार करता कौन है। देखिए प्यार कोई करे ना करे, लेकिन हमें खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपको प्यार करती है या नहीं करती है, क्योंकि खुद से प्यार करते हैं तो दिल भी नहीं टूटता है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो आता है ये हमारे पास, हेलो रीना मैम, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं जी। आज इस प्रोग्राम में आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आज मेरी बड़ी सिस्टर का बर्थडे है तो हमारी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे, और इनकी बहन का नाम है हीना, और ये गाना सुनना चाहती है। हीना मूवी का ही टाइटल सॉन्ग है, मैं हूँ खुशरंग हीना। क्या बात है जी, ये सबीना खान रहमत नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं। सो हम ये गाना डेफिनेटली आपको सुनवाएंगे, और मेरी तरफ से हीना जी को हैप्पी वाला बर्थडे, और आप अपनी ज़िंदगी में यूं ही खुश रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, और आपके आपके जितने भी सपने हुए भगवान उसको ज़रूर पूरा करे, बट पार्टी ज़रूर दे दीजिएगा जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये आते हैं हमारे पास, रिस्पेक्टेड आरजे जनकपुरी सहारनपुर से कनेक्ट होते हैं जोन रोजेस पलवली जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, चलते चलते यूं ही कोई मिल जाता है। क्या बात है जी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना सुनना चाहती हैं। डेफिनेटली हम आपको ये गाना सर जरूर सुनवाएंगे, और चलिए अपने शो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले भाई देखते हैं कि किनका भाई एक शानदार गाना एंजॉय करते हैं किला, और यूं ही आप सभी से परेशान मैसेज करते हैं।
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। चलते चलते कोई यूं ही मिल गया था। सच में जिंदगी में कुछ नहीं पता कब आपको कौन कहाँ मिल जाए, कब आप किससे आपकी मुलाकात हो जाए और अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाए कि ऐसा लगता है भाई कि कभी कभी हम पहले इंसान से भी मिलते हैं ना जिसे कभी मिला नहीं हो हमने, लेकिन उससे भी मिलकर ऐसा लगता है कि हमने ना जाने कितनी बार मिल चुके हो, है ना। तो इस जिंदगी का कुछ नहीं पता कि कब आपको कहाँ मिलना है, किससे मिलना है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। कुछ चीजें अच्छी जो होती है वो भले ही हमें लेट से मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। चलिए आज जो रीना के साथ आप कनेक्ट है यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में, जो कि समय की बात करूं तो भैया समय पूरी अपनी कगार पर होती है, यानी कि 10:57 हो चुके हैं और दूसरे घंटे की शुरुआत होने वाली है श्रोताओं। और इसी के साथ अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए हम मूवी देखने के ना बहुत दीवाने होते हैं, लेकिन उस मूवी के बारे में, उस चैप्टर के बारे में लिखने, उसके पीछे की क्या कहानियां होती है एक्चुअल में हमें नहीं पता होता है। हर मूवी हमें इतनी अच्छी लग जाती है, कोई कोई मूवी तो ऐसी होती है कि भाई हम अपने जिंदगी से रिलेट करते हैं कि ये जो मूवी में कहानी है ना वो मेरे जिंदगी से रिलेटेड है, उसके पीछे कितनों की मेहनत होती है, इनफैक्ट उसको जब लिखा जाता है कितनी बार उसको लिखा जाता है, कितनी बार उसको कैंसिल किया जाता है, तब जाकर उसको सेलेक्ट किया जाता है ना। तो कुछ चीजें जो हमें अच्छी लगती है ना उसके पीछे की कहानी बहुत ही यानी कि संघर्ष वाला होता है। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 77 ए की एज में यानी कि महेश भट्ट, जिनको आप सभी जानते हैं, वो डायरेक्टर है, निर्देशक है, और उन्होंने कम से कम 80 से ज्यादा फिल्मों को यानी कि डायरेक्ट किया है, लिखा है उन्होंने, और 100 से अधिक फिल्मों की यानी कि कहानियां लिखी है उन्होंने। और उनके फिल्म यानी कि 2020 में आई सड़क 2 आखिरी फिल्म है उनकी। और उन्होंने अब इस डायरेक्टर से, निर्देश से यानी कि लिखते थे जो उनकी कहानियां, अब उन्होंने ये कहा जा रहा है कि वो संन्यास लेने वाले हैं, यानी कि संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी है। यानी कि उनकी कुछ मूवीज है जो कि मुझे बेहद पसंद है। अगर मैं बात करूँ तो अर्थ मूवी जो कि 1982 में रिलीज हुई थी इनकी मूवी, और एक और है यानी कि दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान और इनकी खुद की बेटी पूजा भट्ट इस मूवी में है, या और ये मूवी रिलीज हुई थी यानी कि 1991 में। अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार मूवी है दिल है कि मानता नहीं। और सड़क मूवी की बात करूं तो ये भी 1991 में रिलीज हुई थी, जिसमें पूजा भट्ट और संजय दत्त इस फिल्म में नजर आए थे। और जख्म मूवी जो कि महेश भट्ट की जिंदगी से प्रेरणा, उनकी जिंदगी की इस मूवी में अगर आप देखेंगे तो कुछ रिलेटेड है उनकी जिंदगी से। और अजय देवगन आपको इस मूवी में देखने को मिले, बहुत से एक्टर हैं जो कि इनकी मूवी बहुत ही शानदार रही है, जिसमें से मुझे बहुत पसंद है एक तो सड़क और दिल है कि मानता नहीं, ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इनफैक्ट ये मूवी मैंने देखी भी है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये संन्यास लेने वाले हैं, यानी कि जो डायरेक्टर पद का किरदार निभाते थे, ये क्या इनका कहना है कि अब हम थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे अब, चलिए क्योंकि एज भी ज्यादा हो गई इनका कहना है। और देखिए मुझे एज तो यानी कि एक आंकड़ा होता है, एक नंबर होता है, लेकिन इनके साथ इनका जो टैलेंट है, इनकी जो कहानियां हैं मूवी लिखने की, उनकी कला, ओह माय गॉड, इनकी बेटी पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, जो कि भाई आलिया भट्ट यानी कि हर बहुतों के फेवरेट एक्टर होंगी वो, है ना। सो देखिए मेहनत करने पर हर चीज मिलती है। फिलहाल आप सभी के मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बातें तो मेरी कभी खत्म नहीं होती जब एक बार मैं बोलना शुरू करती हूँ। तो चलिए जी मैसेज की बात करूँ तो मैसेज आते हैं हमारे पास मन

0: पूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, इनके दोस्त हैं सैयद सारी कली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी। गुड गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी। सैटरडे में आपको यानी कि मॉर्निंग मशाला शो में सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और ये गाना सुनना चाहते हैं, कोयल सी तेरी बोली अय हाय बेटा मूवी से ये गाना है। और अगले मैसेज की बात करूं तो कश्मीर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मिराज उद्दीन जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, ओ सोनिया फिल्म है इश्क है तुमसे, क्या बात है जी। और आप और गुड वाली मॉर्निंग है जी आपको कश्मीर से जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे पास आता है मुरादाबाद से, रणवीर सिंह जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है, भैया क्या कहते हैं ये सुनिए जरा, बेवफा सनम का गाना सोनू निगम जी की अनुराधा पोडवाल जी की आवाज में है, ये सुनाइएगा। तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे, उनकी याद एक जख्म बन गई, वरना भूल जाने का कुछ तो ख्याल था। अरे यार क्या बात है जी, लगता है भैया दिल पे छुरिया चला दिया आपने। ओहो चलिए गाइस, फिलहाल कुछ कमर्शियल यानी कि न्यूज ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो भी सुनना बहुत जरूरी है, यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
8: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
7: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
8: कॉल 9045912348।
0: क्या बात है जी, अर्जेंटीना कनेक्ट हो गई आप सभी के साथ और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई। भैया 11:07 हो चुके हैं, गज वाली मॉर्निंग है आप सभी को। और फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज भी आता है हमारे पास, जय माता दी, राधे राधे अर्जेंटीना सिस्टर जी। और आपकी जो आप बोलती है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही शानदार है, थैंक यू सो मच जी। अजीत कसाना जी कनेक्ट होते हैं, माया देवी ऋतिक इनके फैमिली के नाम है, आदित्य कसाना जी काठ रोड दलदावली से ये कनेक्ट होते हैं।

चलिए जी, फिलहाल हम गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद आप सभी के मैसेज जो रह गए हैं वो भी शामिल करेंगे। बस आप मैसेज करते रहिए, नंबर है 9823789689।

हाय क्या बात है, तू नहीं तो तेरी याद सही। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। लेकिन फिलहाल एक कबीर देव जी के दोहे हैं जो कि मुझे बेहद पसंद है, सुनिए जरा क्या कहते हैं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए संत कबीर। तो इसीलिए ना धन के ऊपर लोभ करिए, ना टेंशन मिल लीजिए, क्योंकि शरीर आधा हो जाता है। बिंदास रहिए और जिंदगी में जो हो रहा है एंजॉय करते रहिए। फिलहाल आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 11:16 हो चुके हैं श्रोताओं, गज वाली मॉर्निंग है। और भैया अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे पास आता है, हेलो, ये हमारे साथ साजिद जी कनेक्ट होते हैं फ्रॉम मुरादाबाद आजाद नगर से, और ये गाना सुनना चाहते हैं जो कि बहुत ही शानदार गाना है, हुआ है आज पहली बार। क्या बात है जी, ये गाना बेहद अच्छा है, सो इस गाने को मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना जी, जय श्री राम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, दिल में जवानी मांगता इश्क की गली भेजो। अरे बाप रे क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना है, लेकिन इस गाने को मैं पहली बार सुनूंगी। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग रीना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है बबली अनजान गीता कश्यप। रीना मैम बहुत दिनों बाद प्रोग्राम में आई हो। अरे नहीं नहीं सर, मैं हर सैटरडे प्रोग्राम में आती हूँ, बहुत दिनों के बाद कहाँ, बस एक सैटरडे को ही मौका मिलता है यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में मुझे कनेक्ट होने के लिए। और आप मुझसे नाराज़ है क्या? नहीं नहीं नहीं सर, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं होती हूँ, आखिरकार नाराज़ होके जाना कहाँ है, आना मुझे यहीं है। तो मुझे आप सभी से किस चीज़ की नाराज़गी होगी ये बताइए। आप सब मैसेज करते हैं, मैं मैसेज शामिल करती हूँ, मुझे किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है, कोई भी नहीं। ये जिंदगी है सर, और ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसे एंजॉय करिए। किसी से नाराज होकर करना तो करना है क्या है। और ये गाना सुनना चाहते हैं साजन, आ मेरी तेरी तू मेरा दुनिया से क्या लेना। ठीक है जी, ये गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे सर, लेकिन मैं कभी किसी से नाराज नहीं होती हूँ। चलिए चलिए फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं और फिर करेंगे ढेर सारी बातें जी, कहीं नहीं जी, आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। प्यारा गाना है, पुराने गाने में कुछ बात ही अलग होती है ना जी, म्यूजिक से लेकर बात करूं तो गाने, ओ माय गॉड।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 11:27 हो चुके हैं श्रोताओं। और चलिए बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। इतने शानदार शानदार जो मैसेज आते हैं भाई साहब, क्या ही कह सकते हैं। चलिए यानी कि अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती है अमरोहा से नेहा। नमस्ते, कैसी हो आप रीना मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ और पहले ही सॉन्ग में आपने मेरा दिल जीत लिया। रीना मैम शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। एंड आपका आप मुझे एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल जी, सुनवाएंगे। दिल दे दिया है जान तुझे देंगे, क्या बात है जी। बस जान मत दीजिएगा जी, दिल जरूर दिया है लेकिन जान बहुत प्यारी होती है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारी रेगुलर लिसनर है, यानी कि ये मेरे शो में भी कनेक्ट होती है। बड़ी एक्टिव लेडी है, लड़की है ये, सॉरी। और आज इसका बर्थडे है तो ये कनेक्ट हो रही है। हाय संजू जी, हमारे साथ कनेक्ट होती है। रीना दी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसी हो। और आज मैम मेरा बर्थडे है, मैंने इंस्टा पर आपकी स्टोरी भी देखी है। राधे राधे की DP लगी हुई है, क्या बात है जी। राधे कृष्ण की DP लगी हुई है, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी बात है कि आपने अब मेरी स्टोरी देखी, इंस्टा स्टोरी देखी है। और आज आपका बर्थडे है तो मैं एक बहुत ही शानदार आपको गाना सुनवाऊंगी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी पालने में, आगे नहीं आता मुझे
5: सजनी।
4: तो ये गाना मैं आपको डेफिनेटली सुनवाऊंगी संजू। और आज आपका बर्थडे है और आप अपनी जिंदगी में यूं ही खुश रहे और भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और अगले मैसेज की बात करूँ तो बहुत ही शानदार आपको गाना सुनाएंगे, डोंट वरी। और ये कहना चाहती है, देखिए अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं आप, मैं RJ रीना के नाम से आपको मिल जाऊंगी इंस्टाग्राम पर। दोस्तों यहाँ बातें खत्म होने के बाद बातें वहाँ शुरू हो जाती है जी। चलिए और अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है।

हेलो रीना मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। ये हमारे साथ निधि कनेक्ट होती हैं और आज अपने पापा के साथ रेडियो सुन रही हूँ। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पापा के साथ रेडियो सुन रही हैं। और ये बहुत ही शानदार गाना सुनना चाहती है, सो डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और शानदार गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। श्रोताओं, कहीं नहीं जाना है। अपने समय की बात करूँ तो 11:30

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। आपने किसी प्यारी सी आई कोई परी। आपके घर में भी जी किसी का बर्थडे हो तो हमारी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे, और आप अपनी जिंदगी में यूं ही खुश रहे। और चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं भैया। समय की बात करूँ तो मॉर्निंग मसाला शो में यानी कि 11:40 हो चुके हैं गाने, और समय बिल्कुल अपनी पूरी कगार पर है भैया। एक हमारे पास ना वॉइस मैसेज आता है, सुनते हैं कि अपनी प्यारी मधुर आवाज में क्या कहना चाहते हैं।
1: गुड मॉर्निंग मैम, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद सबीर मुरादाबाद से। हम गाना सुनना चाहते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन।
0: जाने कहाँ गए वो दिन। सच में गाना बहुत ही शानदार है कि जाने कहाँ गए वो दिन। बचपन वाला जो दिन है, सच बताऊं बड़े ही शानदार थे कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, एंजॉय करते थे, और उस टाइम कोई किसी को कुछ नहीं बोलता था। बस थोड़ा सा डांट देते थे कि घर का काम और मिट्टी में नहीं खेलते हैं। लेकिन जो पहले के दिन थे वो अब कहाँ हैं। पहले गली मोहल्ले में बच्चों की जो शोर शराबा गूंजती रहती थी, अब तो भैया बस बच्चों को एक ही कहा जाता है, एक ही काम कहा जाता है कि भैया काम कर लो, स्कूल से आ गए तो स्कूल का होमवर्क कर लो। लेकिन पहले की टाइम की अलग ही बात है। जब इस टाइम वैसे खेतों में फसलें लगाई जा रही हैं, धान लगाई जा रही है, इस टाइम खेतों की अलग ही रौनक होती थी। जब सारे

बच्चे आराम से बाहर निकल चलते थे घूमने के लिए, सुबह शाम कबड्डी खेलो, कुछ भी खेलो। आजकल वे पहले वाले गेम भी नहीं रहे हैं, अब नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंच गए हैं। लेकिन सच में जो पहले के जो दिन थे वो तो याद आते ही आते हैं। चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला किन का मैसेज आता है हमारे पास? ये बेबी राधिका जी कनेक्ट होती है। रीना मैडम आपको गुड वाला मॉर्निंग है जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहती है, मेरे मामा जी के लिए कर्तव्य फिल्म से एक गाना सुना दीजिएगा। चंदा मामा से भी प्यारे हैं मेरे मामा, क्या बात है। ये हमारे साथ यानी कि गुजरात से मधु भाई चौहान जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूब। ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे जी।

चलिए जी, अगले गाने को एंजॉय करते हैं, और आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहे भैया, क्योंकि देखिए जो आपके गाने हैं वो तो डेफिनेटली प्ले किए जाएंगे। बिंदास रहिए, बेधड़क होकर आप कनेक्ट रहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो आपको नहीं सुनाया जाएगा। बिल्कुल सुनाया जाएगा जी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य तो देखिए रखना पड़ता है। अगर आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बोलेंगे ओहो जल्द थोड़ा जल्दी सुनवाओ। जल्दी के चक्कर में, यानी कि जल्दी का काम कोई भी नहीं करना चाहिए। जो काम शिद्दत से और आराम से किया जाता है ना, वो काम बहुत ही प्यारा होता है। सो चलिए, दिल दे दिया नेहा की रिक्वेस्ट पर ये गाना सुनना चाहते हैं, और ये गाना बहुत ही शानदार है। इस गाने के बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं, और जिनके मैसेज रह गए हैं वो भी शामिल करेंगे।

0: बहुत ही जज रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: ईरानी ले जा छल्ला, 4 दिनों की जिंदगी है दीवारी, क्या बात है।
1: ईरानी ले जा छल्ला निशानी,
0: ओहो छल्ला निशानी, ठीक है जी। फिलहाल आज रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए। हर कोई कहीं ना कहीं से मेमोरी और निशानी जरूर लेकर जाता है, यादें जरूर लेकर जाता है, क्योंकि भले आप इंसान से मिले ना मिले लेकिन उसकी यादें आपको हमेशा आती रहती है ना जी। फिलहाल समय की बात करूँ मॉर्निंग मसाला शो में तो 11:54 हो चुकी हैं और जो मैसेज रह गए हैं चलिए उनको शामिल करते हैं जी। गुजरात से हमारे साथ ये कनेक्ट होते हैं जय सर जी, ओके जी। और इनका कहना है कि चेतना बहन जी, अरे सर मैं चेतना बहन जी नहीं हूँ, मेरा नाम रीना है, रीना आरजे रीना। भैया मेरा नाम मत चेंज करो यार, मत चेंज करो कृपया करके। लेकिन सच में बहुत नाम मेरे को सुनने को मिल जाते, कोई टीना कहता है, कोई रीना कहता है, कोई टीना कहता है भैया, कोई चेतना कहता है भैया, कोई बीना कहता है। अरे ये सर मेरा नाम रीना है, REENA रीना। और ये गाना सुनना चाहते हैं, प्यार हमारा अमर रहेगा, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना है कि प्यार हमारा अमर रहेगा। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ सना जी कनेक्ट होती हैं और कहती हैं, कैसी हो मैम? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसी हैं। और ये गाना सुनना चाहती है, आंख उठी मोहब्बत। ओ माय गॉड, ये कॉल किसी टाइम बज जाता है श्रोताओं। फिलहाल इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, पानी पीते रहिए और हम मिलेंगे दोपहर 3 बजे, ढेर सारी बातें करेंगे, बाय-बाय।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।

0: चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सारणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरिटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: सभी लोग ध्यान दें, आज

0: खांसी हो लगातार, मत करना इंतजार, समय पे जांच करवाओ, टीवी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद कि हम पहले भी टीवी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इस विषय पर लौटे हैं। वजह है कि टीवी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। मैंने कई बार गांव में लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे टीवी तो पहले भी हुआ करती थी, अब कहाँ जाता है, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीवी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं मौसम बदल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या टीवी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीवी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीवी की जांच के बारे में, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है, और अगर सही समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमारे कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझा देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आरजे खुशी, और मेरे सभी श्रोताओं भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीवी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा थकान बनी रहती थी, घर के लोग पूछते थे क्या हुआ तो वे हंसकर कह देती अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था।

0: शाम होते होते हल बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुए, बलगम की जांच हुई, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
1: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीबी है क्या?
0: देखिए खुशी, टीबी एक संक्रमण बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसीलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
1: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्या हर बार टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी 2 तरह की हो सकती है। एक लेटेस्ट टीबी, जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते, वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीबी, जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों को एक्टिव टीबी दूसरों तक फैल सकती है।
1: तो ये फैलती कैसे है?
0: जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इससे सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
1: गांव में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
0: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसीलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
1: इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बलगम में खून आए तो तुरंत टीबी की जाँच करानी चाहिए।
1: क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
0: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहतर जरूरी है।
1: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
0: जी हाँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोग, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
1: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTIP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
1: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
0: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच, बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी की जीवाणु मौजूद है या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती है और आज भी महत्वपूर्ण है।
1: CBN, AAT और TuneIn जैसे नाम भी सुनते हैं, कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होता है।
0: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत यही है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कई बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रजिस्टेंट तो नहीं। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
1: और एक्सरा की क्या भूमिका होती है? क्यों जब भी लोग लंबे समय तक खांसते हैं डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरा लिख देते हैं?
0: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की जांच में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसी बदलाव दिखाई देती है जैसे टीबी की ओर संकेत करते हैं, फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है तब और भी विशेष जांच की जरूरत होती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावित होगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
1: साथियों, बात बिल्कुल साफ है, अनुमान नहीं जांच जरूरी है। खांसी तो घरेलू नुस्खों में महीनों ना उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। 2 हफ्तों की खांसी हो जाए, जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार। टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगी, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करवाती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
0: नहीं आरजे खुशी, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसमें हम पेसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँव बस्तियों दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
1: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही है।
0: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
1: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्यों अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है?
0: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो बाकी सदस्यों को भी जांच करवाना बेहतर जरूरी है। इससे संपर्क जांच या कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग की जांच जरूरी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी हो तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
1: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर है और शर्म। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं करवाते और दूसरों को भी बताते नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, टीवी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीवी कोई शर्म की बात नहीं, यह कोई पाप नहीं, यह कोई चरित्र की कमी नहीं, यह एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसीलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा जरूरी है। समय पर जांच न करवाने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं?
0: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच जरूर करवाएं। दूसरी बात, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच करवाइए। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
1: और मैं इनमें से एक 6ठी बात जोड़ना चाहूंगी। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसीलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच करवाइए, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब लेते हैं मिलकर सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: खांसी रहे 2 हफ्ते से पार, जांच करवाना है समझदार। टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करा के ही रुकेंगे।
1: श्रोताओं, मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे, ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अरे सिहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
6: अरे RJ खुशी, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की एक 12 साल की बेटी थी गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप में पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगा। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ देखने को लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी। लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते कि ये सब शहरों की बातें हैं लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुल के विस्तार में बताइएगा।
6: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
6: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो खुशी जी?
1: क्या सियतिया जी, अब आप तो थोड़ा डरा ही रहे हैं।
6: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता।
6: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
6: यही तो अच्छी खबर है RJ खुशी जी, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
6: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें।
6: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
6: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बार की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आके नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब कि ये बीमारी को शुरू करने से पहले ही रोक देता है।
6: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किस लिए लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या?
6: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इसे बड़ी उम्र की हो
6: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में ये टीका भी लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हुआ तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
6: यही तो सबसे अहम बात है RJ खुशी, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
7: जरा विस्तार से बताइएगा।
6: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को सही समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन

0: को समझाएं, उसे डर या अफवाहों से दूर रखें और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वही हारेंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखिए आरजे खुशी, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
0: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत?
0: यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे खुशी, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचती वहाँ ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गाँव था, छोटा पूर्वा, यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाती है, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा वगैरह वगैरह। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आ गया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द, रानी की बीमारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झंकोर दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत ध्यान देना, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती भी, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए और आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी, बड़ी बीमारी से बचाओ।
0: बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ।
1: तो चलिए, जाने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही।
1: तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोता? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है दोस्तों? फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है। बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप

आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना कर तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम। लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। ओटीपी और पासवर्ड कभी ना बताएं। डराने वाले मैसेज से सावधान रहें। खुद बैंक से संपर्क करें। जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओ, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद, अपने आप गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का, एक बार फिर से ये लीजिए। अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं, मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
2: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
1: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
2: गर्मियों में दिन में पसीना,
1: हाँ, रात में मच्छरों ने जीना कर दिया,
2: जीना कर दिया दुश्वार,
1: मुश्किल नहीं, ये तो है यार। खैर श्रोताओं, मैं और अखिल जी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम हमने आपको बताया सोच बदलो, और आज हम किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जरूर आपको पता लगेगा, जैसे कि इसका नाम ही है सोच बदलो। अखिल भाई, आप पहली बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इसका नाम है सोच बदलो, तो कुछ मतलब नाम से कुछ लग रहा है आपको कि इसका क्या टाइटल ऐसा है, तो अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम?
2: आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं कहता हूँ हालात नहीं बदलते हैं जब तक इंसान भी अपनी सोच नहीं बदलता है।
1: तो है,
2: जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे या किसी चीज को लेके अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो अपने हम हालात भी नहीं बदल सकते।
1: गॉट इट, 100% सही कहा आपने, लेकिन हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल हर इंसान परेशान है, कोई करियर को लेके, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई खुद से हार चुका है, तो आज इन सब मुद्दों पर बात करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सोच बदलो है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता तब तक चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे।
2: नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
1: वाह,
2: सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं,
1: करेक्ट।
2: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।
1: वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात कही है अखिल जी ने, और बिल्कुल सही बात है, जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
2: छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी
1: जी,
2: कभी
1: जी,
2: वो जिंदगी में लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आती
1: है, करेक्ट। और छोटी सी शुरुआत ही जो है हमें जीवन में वहां तक पहुंचा देती है जहां हम जानना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। एक सवाल, अगर सुबह उठते ही इंसान ये सोच ले कि आज भी कुछ खराब होगा तो क्या दिन अच्छा जाएगा?
2: बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है
1: जो हम बताते हैं,
2: बिल्कुल
1: है ना?
2: सही, वही दिमाग हमारी चीज ढूंढ रहा होता है।
1: और अभी फिलहाल मेरा और आपका दिमाग ढूंढ रहा है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा म्यूजिक वाला, तब तक हमारा दिमाग भी ढूंढता रहेगा गाना कहाँ है, गाना आ गया आपका फेवरेट गाना, एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैं और अखिल आपके हिम्मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
2: बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
1: वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक है। इस ब्यूटीफुल गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी अखिल जी, कुछ कह रहे थे आप अभी?
1: मैं यही कह रहा था कि आजकल लोग छोटी सी परेशानी में भी बोल देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं, सभी इंसान इस चीज पे बिलीव करते हैं और सभी बोलते हैं। मोस्टली हर इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है या उसका कोई काम नहीं बनता है तो ये चीज को जरूर बोलता है। अखिल भैया, लाइन क्या बोली थी अभी आपने? वो
2: ऐसे बोल दो
0: जी भैया,
1: ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है।
0: और ये जो लाइन है ना, ये अखिल भैया आप नहीं, मुझे लगता है दुनिया का हर दूसरा इंसान बोल रहा होता है। करेक्ट,
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएं और ये वो टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जो एक्चुअली हमारी और आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं।
1: अब देखो ना, अगर बारिश हो रही होती है तो कोई बारिश को देखकर ये बोल देता है ओह आज तो ट्रैफिक होगा, बारिश हो रही है, और कोई उसी बारिश को देख के कहता है अरे आज मौसम कितना प्यारा हो गया।
0: बस अपने अपने देखने का तरीका है, नजरिया है ना। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हुई है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अखिल भाई
1: बिल्कुल सही बात कहे।
0: चलो,
1: अरे आनंद भाई, कभी कभी ना अगर कुछ लोग इतने नेगेटिव मिलते हैं कि अगर आप उन्हें फ्री में पिज्जा भी दो ना तो ये कहेंगे आपसे अरे कहीं कोल्ड पिज्जा तो नहीं दे दिया, कहीं ठंडा तो नहीं दे दिया हमें।
0: मतलब पिज्जे के अंदर भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो फिर पक्का उन्हें सोच बदलने की जरूरत है। और श्रोताओं, मुझे ऐसा लगता है कि सोच अगली बात से डेफिनेटली बदल जाएगी। और कुछ लोग अखिल भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, आप यकीन मानिए कि मतलब अगर उनके घर में उनका वाईफाई ना भी चले तो भी भैया उनको ये लगता है कि चलो आज वाईफाई ना चला ना सही, एटलीस्ट फैमिली से तो बतिया लेंगे भाई।
1: हाँ,
0: फैमिली से तो बात कर लेंगे। और ये जो गेट टुगेदर वाला टाइम होता है ना, ये एक अलग ही होता है और यहीं पर निकल के आती है पॉजिटिविटी। अगर आपका, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा श्रोताओं, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और अगर वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल या वो नहीं बन पा रहा है तो आप सोचिए उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, अखिल भाई ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और वो हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है यार ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, जबकि थोड़े दिन के बाद उससे भी बेहतर से बेहतरीन हो रहा होता है। फिर हमें लगता है कि यार अगर वो चीज हो जाती तो शायद ये नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: तो
1: जिंदगी कहाँ परफेक्ट होती है? जिंदगी परफेक्ट कहाँ होती है? नहीं होती ना जिंदगी परफेक्ट। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो वो और सफर थोड़ा सा और आसान हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे भी लगता है कि दोस्तों जिंदगी देखो परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकती, ना ही इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक गाना जो मैं लगा रहा हूँ ये जरूर परफेक्ट हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, प्रोग्राम है सोच बदलो। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। भैया बजाते रहो या गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो या बजाते रहो, बात एक ही, फिलहाल हम बजा रहे हैं गाना।

0: और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें ना जिसकी भागदौड़ में छोटे से लेके बड़े तक और बड़े से लेके बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाए। और मजे की तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। टाइम पे क्या करना है भाई? क्या हम 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई?
1: बिल्कुल सही बात कही। और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना है क्यों है?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। तो गाइज, यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुराने
0: याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ घूम के आए हुए भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आ गया है जैसे

0: मतलब बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती, वैसे ही इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना, ठीक है, दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल मत
0: समझना। क्यों यार, भी एक मेरा फ्रेंड है, रिसेंटली उसने पता नहीं अनाप शनाप डाला और उसके इतने व्यूज आ गए, इतना वायरल हो गया वो बंदा। अभी किसी और की बात क्यों करे, कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई, कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। वेल, आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है।
0: वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी हाईलाइट ही दिखाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, पूरी कहानी वो किसी को नहीं पता।
0: पॉइंट तो है, और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही चीजें कर देते हैं भाई। तो दोस्तों, आपको अपनी जो है ना सोच को एकदम सही रखना है। जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। आज भी आप YouTube पे एक इन्फॉर्मेशन डालोगे, उसके इतने इन्फॉर्मेशन आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा सही क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हमें सही डायरेक्शन में चलना है। और अभी एक और डायरेक्शन है जहां हमें जाना चाहिए, मुझे और अखिल भाई को, वो है एक म्यूजिकल ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है ना उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की, स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी, शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था, 2 महीने हो गए तक आया क्यों नहीं। तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती
1: है। इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा।
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच रहा है तू मेरा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चार लाइनें, चंद लाइनें सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन से सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज में।
1: अच्छा आनंद, तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है, क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: जो तुम्हारा सोना है ना, वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार। और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका, तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थी आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना, भाई साहब हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइनें कही थी, वो लाइनें मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल, इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: बात।
0: लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं।
1: हाँ।
0: ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं?
1: मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ,
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना, उसकी टाइमिंग अलग है।
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर सेट है,
1: एक अलग ही टाइमलाइन चल रही है, तो वो अच्छी ही चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव दे।
0: अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: थोड़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसपे हमें ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेस आता है, मुझे ऐसा लगता है, छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना। तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% अग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट।
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। जब तक फेलियर्स से आपका सामने नहीं होगा, तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट, जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो, तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो। इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे, तब नहीं सीखते, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे। बिकॉज वो जो फेस होता है ना, वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है, जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद, काम में फेल हुए, बिजनेस नहीं चला, या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना।
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट। तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड हैं, तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। बट अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना आप कहां पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पता है आपकी मंजिल कहां है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है, और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात
0: है ना,
1: क्या
0: इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: हाँ जी, ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं आनंद।
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे और आपको यहाँ बिठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपने सुना है गाना?
1: सुना।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है
0: आमिर खान साहब ने, अरे गजब। और ये उदित साहब का भी कमाल है, उदित नारायण जी ने जब ये गाना गाए थे तो भाई साहब उनकी भी रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। उदित साहब की आवाज है ना,
1: देखा एकदम आपका जो थे जितने भी फेलियर थे सभी एक उस गाने से सक्सेस हो गए।
0: एब्सोल्युटली यार। और आमिर खान की भी फर्स्ट मूवी थी क्यामत से क्यामत तक मूवी है, इसमें आमिर खान साहब को अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखना, उनका जो फेस है एकदम यंगर वाला, क्या लग रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, अगर हम इन्हीं पे बातें करेंगे तो पूरा स्टोरी निकल जाएगा, गाना नहीं सुन पाओगे, तो पहले गाना सुनो उसके बाद लौट कर आते हैं।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, और
5: आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है, और मैं जानता हूँ कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये गाना भी आपने सुना कयामत से कयामत मूवी का, और बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बहुत ही फैंटास्टिक लगे मुझे तो आमिर खान। और इसमें एक गाना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर। अभी तक वो चेहरा मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन अखिल जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज टेल अस यार।
1: मैं एक्चुअली क्या है ना, अभी हम बात
0: कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
1: मगर आमिर खान साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एक मूवी थी यादों की बारात करके,
0: हाँ।
1: और उन्हीं के अंकल हैं, डायरेक्टर थे जो उस मूवी के थे, नसीर साहब थे। तो मतलब बचपन से ही इज लाइक इन एक्टिव, और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीज।

0: ये थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
1: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है, एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था। लाल सिंह चड्ढा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे, तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा। तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद, तो कह रहे मैंने कहा मैं आमिर खान से बात कर रहा हूँ। आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहाँ से हो, मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट ये वो। तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करता हूँ, जो वहाँ का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे, कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं, बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्ढा की मूवी के ऊपर, तो फिर मैंने बना दिया। मुझे बड़ा मजा आया भाई जब मैंने बनाया, तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई। वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है, जाना था मुझे बस के अड्डा लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्ढा। इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएटिव। एक दो लाइन और बोली थी वो, शायद मेरे पास मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे उनसे हम बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस।
0: हमारे साथ ये वाला वाक्या हो गया कि पापा कहते हैं
1: बड़ा नाम करेगा। हाँ बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान। और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई यार ऐसी, तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से इतना एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो मतलब आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है, जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है। और ये अखिल जी जो बैठे ना ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
0: मतलब मैं बताना चाहूंगा आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है। उनकी एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
1: तो दुबई
0: नहीं नहीं नहीं गुड़गांव में
1: किंगडम ऑफ ड्रीम्स, अच्छा ओके।
0: तो वहाँ पे ना इनकी शूटिंग थी पीके मूवी की,
1: पीके ओके हाँ, आमिर खान और अनुष्का,
0: हाँ अनुष्का शर्मा, और दोनों ही आए थे उस अच्छा। गाने को शूट करने के लिए दोनों ही लोग आए थे। तो मेरी मतलब आमिर खान साहब का तो शॉट रात में था, और रात में आप मतलब मानोगे नहीं, रात में एक दो बजे भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के एकदम ताजा उठे हुए और वो शूट कर रहे थे, और उस बीच उनका एक
1: मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम मॉर्निंग वाली थी,
0: इतने एक्टिव कुछ पूछो मत। और उस शूट में एक मजे की बात और थी कि उन्हीं के बेटे जुनैद खान वो उसमें असिस्टेंट थे।
1: ओ वाओ क्या बात,
0: सॉन्ग के असिस्टेंट थे,
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो जानकर हमें बहुत खुशी हुई अखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने ये कड़क अपडेट हमें बताई, और अगर हम कभी आमिर खान से मिले तो जरूर आपका मैसेज तक पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप हमसे पहले मिले तो हमारा पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम है सोच बदलो, और उनका पीके मूवी का इन्होंने जिक्र किया तो एक मीम बहुत वायरल होता है, अच्छा हमें सिखाएगा, अच्छा हमें बता दिया है, आई एम श्योर आपने देखो ना। और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोले ना अच्छा हमें सिखा दिया है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 105 चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार। एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप,
0: बिल्कुल सही।
1: और दोस्तों इस एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है। सो वेल ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे।
0: मैं तो कहूंगा यही
1: जी भैया,
0: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता,
1: वाह,
0: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं आनंद।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं हरा सकता, करेक्ट। तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है, कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप भी अच्छा सोचिए, ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का, कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को देख देख ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही हैं और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
0: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
1: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड़ पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद पर भरोसा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन जाती है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दिया अखिल जी, और बहुत ही बड़ी बात ही है मुरादाबाद के युवाओं के लिए। बस यही एक प्यारा सा मेरी तरफ से भी संदेश रहेगा कि दोस्तों जिंदगी में ये मत सोचिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करते हो ना, वही सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम होता है।
0: अपने साथ स्माइल रखनी है बस हमेशा,
1: करेक्ट, अपनी स्माइल के साथ आगे बढ़िए, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हम भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे से गाने की प्रस्थान करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और थोड़े से कूलर शूलर भी चला लीजिए।
0: थोड़ा नहीं, कूलर तो पूरा ही चला,
1: मतलब हाँ भाई यार पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी,
0: बाय बाय। रेडियो बजाते रहो,
1: गुनगुनाते रहो और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय
0: बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: हेलो जी, नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
2: प्राची।
1: यस, और प्राची, आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
2: हाँ, किस चीज की बताइए?
1: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
2: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी से।

0: देश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
1: और आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहाँ की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहाँ गलियों में स्वाद बसता है और जहाँ हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
1: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी सी भगौनी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: सही बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का, हर संभव मदद मिलती है, लोन संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की

0: रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
1: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
0: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
1: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
0: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
1: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
0: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
0: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
1: दोस्तों किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती
0: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
1: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
0: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
0: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
1: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है
0: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
1: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा,
0: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
1: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
0: दोस्तों अगर आप कभी गोंडा जाए वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
1: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
0: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं यादों का भी हिस्सा होता है।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
0: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
1: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, मैं आनंद और मेरे साथ
0: प्राची,
1: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय
0: बाय बाय।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: 6,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालूतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है।

0: उपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
4: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवे दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
3: हेलो प्राची, हाउ आर यू?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आप बताइए, आप?
3: मैं अच्छा हूँ। आज तुम मुझे कौन से प्रोग्राम में लेकर आ गई हो? ये
2: आज मैं आपको लेकर आई हूँ महिला मंच, हमारा जो प्रोग्राम है, और आज हम करेंगे ढेर सारी बातें।
3: अरे वाह, महिला मंच में पुरुष मंच भी खोल दिया आज आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेल फीमेल सब बराबर है और सबको सबके प्लेटफॉर्म पे जाने का राइट है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन, और आज आनंद भी आपके साथ रहेगा। और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो घर और दफ्तरों की दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं।
2: आज आज की महिला डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, शिक्षक भी है और अधिकारी भी है। और हमारी बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो बिजनेस वुमेन बन के उभर रही हैं, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे उनकी संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी है।
3: बिल्कुल, तो आइए समझते हैं कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों को और उनके हौसले को सलाम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्यों प्राची?
2: हाँ बिल्कुल।

0: जी मैंने सोचा हम ही आपका वेलकम बैक कर लेते हैं। सभी सखियों को, भाभियों को और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी कैसी हैं आप? और प्राची जी आप बताइए, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और माइक को हिला रही हैं भाई।
1: मैं तो हूँ एकदम बढ़िया। और हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं मंच की। हम अपनी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे स्ट्रगल करती हैं पूरे दिन भर, और ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों दोनों को बहुत अच्छे से निभाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्राची तुमने। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लेडीज ना हर काम में एक्सपर्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हो, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक हमारी महिला सुबह उठती है तो उसका दिन घर की जिम्मेदारियों से शुरू होता है। परिवार का ध्यान रखना होता है, उन्हें बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, और समय पर ऑफिस पहुंचना, ये सारी चीजें कहाँ आसान होती हैं, है
0: बिल्कुल। मुझे भी नहीं लगता है ये तो बिल्कुल आसान है। स्पेशली आजकल की मम्मियों के लिए तो बहुत टिपिकल है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल तो मम्मियां भी वर्किंग हो गई हैं, है ना? बच्चों को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, उसके बाद ऑफिस भी करना, फिर वापस घर आके घर को भी मेंटेन रखना, तो इट्स नॉट इजी प्राची। आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। बट बिल्कुल कई बार कार्यस्थल पर भी उन्हें खुद को साबित करना होता है कि भैया पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है कई बार ये हमारी महिलाओं को, और साबित उन्हें ये करना होता है कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है। हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए हर एक चुनौती का सामना कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरजी आनंद जी आपने। और समाज की सोच भी, आपको पता है कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए एक तरह से एक हर्डल बन जाता है।
0: I agree.
1: आज भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखे हैं कि हमें लेडीज को घर तक ही लिमिटेड रखना चाहिए, पर हमारी महिलाएं घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल रही है।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है प्राची। और मुझे लगता है अब खैर जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ ग्रामीण एरियाज, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर अपना एक रिचुअल्स बना हुआ है, एक रिचुअल्स चलता हुआ आ रहा है कि उनकी घर की बीबी है, जो उनके घर की महिलाएं हैं, वो घर से बाहर काम काज करने के लिए नहीं जाती हैं या फिर वो नहीं जाएंगी। और देखिए हर किसी का अपना अपना एक रिचुअल्स होता है, हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर घर की महिलाएं कुछ काम काज करेंगी तो शायद वो अपने फ्यूचर में थोड़ा सा और अच्छा कर पाएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी और कहीं ना कहीं नया कंट्रीब्यूट हमारे समाज के लिए कर पाएंगी। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं इतनी टैलेंटेड होती हैं, इतना उनमें पोटेंशियल होता है। जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो इस तरह से वो परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि वो अपने करियर को और अपने काम को, दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन करती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो मतलब मुझे लगता है कि प्राची आज हम विमेंस की बात कर रहे हैं महिला मंच में, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अक्सर महिलाओं को जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज उस पर बात करेंगे, और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उससे पहले प्राची कुछ कहना चाह रही हो, प्लीज सी समथिंग।
1: आपकी बात सुन के, आपने जो बात कही कि महिलाएं सारा काम अच्छे से कर पा रही हैं, और ये वो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो उन्होंने हौसला अपने अंदर भर के वो चल रही हैं कि उन्हें रुकना नहीं है। तो उन महिलाओं को सम्मान देते हुए एक शायरी मुझे याद आ रही है।
0: वाह वाह।
1: हौसलों की उड़ान रखती हूँ, हर मुश्किल का समाधान रखती
0: हूँ,
1: मैं नारी हूँ जनाब, अपने भीतर पूरा आसमान रखती हूँ।
0: वेरी नाइस। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। बस इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं महिला मंच, ये है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, और ये है आपकी शहर का अपना प्यारा रेडियो
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो।
1: बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहो। चलो जी अभी मिलते हैं एक छोटे से गाने।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है महिला मंच। यहाँ पर महिलाओं की राइट्स की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, और आज इस महिला मंच में पुरुषों को भी यहाँ पर बुला के लाया गया है कि आप भी आइए और आप भी जरा बताइए कि काम काजी महिलाओं के लिए, तुम पुरुषों को जो लगता है ना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है हर काम, सिर्फ मर्द को ही मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है, हम लेडीज को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्यों प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: देखिए, कोई भी काम करना प्राची मुश्किल तो नहीं है, है ना? अगर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, पोटेंशियल है, अगर उसके इरादे मजबूत हैं, तो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो, बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं। बट वही है, सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: हाँ, सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर हम उन्हें सपोर्ट देंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगी।
0: करेक्ट। कामकाजी महिलाओं के सामने एक और चुनौती है, मैं आपको सच बताऊं तो, और ये देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का संतुलन। वो अपने सपनों को भी जीना चाहती हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसी बीच एक चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा हो जाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मेंटेन करना ही अपने आप में एक बहुत चैलेंज है।
1: टाइम मैनेजमेंट, वो जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती हैं, यही चीज जो है उन्हें बहुत ज्यादा खास बनाती है।
0: Correct.
1: क्योंकि वो अपने बहुत खूबसूरत बात कही, वो अपने ऑफिस की भी अपना बेस्ट देना चाहती हैं और घर की, परिवार की जो उनसे उम्मीदें हैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हैं। तो ये जो बात है, इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसी वुमेन, जो भी हमारी ऐसी वुमेन है आसपास, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम
0: Correct,
1: को।
0: राइट राइट राइट। कहते हैं दोस्तों, थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, कि थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, आंधियों के सामने भी झुकती नहीं है, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, वो कामकाजी महिला है जो हार मानती नहीं है मेरे भाई। और बिल्कुल, हमें महिलाओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात आपने कही। हमें ऐसी महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट भी देने की जरूरत है, ताकि वे अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भर सके।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी एक ऊंची उड़ान भरेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जल्दी वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक है आपका। और आप सुन रहे हैं महक बंच। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
1: क्या बात है प्राची, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिला मंच में आके मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें अपनी घर की विमेंस की, अपने घर की महिलाओं की, तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। लेकिन आजकल तो खैर प्राची, हमारी घर की विमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। तुम्हें पता है ना, जैसे आजकल महिलाओं को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया हमारी घर की महिलाओं के लिए। बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। आप घर से जो लोग अचार बनाते हैं, वो घर से ऑनलाइन अपने अचार को सेल्स कर सकती हैं, मतलब अपने अचार को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती हैं। घर बैठे बैठे मार्केट तक, लोगों तक पहुंचा सकती हैं। कोई अच्छी सिलाई करती हैं, कोई अच्छा बुनाई करती हैं, अच्छी कढ़ाई करती हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं को आसान बना रही हैं, उनके काम को थोड़ा आसान बना रही हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, जब से ये डिजिटल दुनिया का दौर शुरू हुआ है, तब से वो अपने काम को, जो भी उनके तरफ पोटेंशियल है, कोई अच्छा डांस करती हैं, कोई अच्छी सिलाई करती हैं, अच्छी बढ़िया बढ़िया
1: कोरियोग्राफी करती हैं, बहुत बढ़िया है ना। और कुछ वीमेन्स बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो रेसिपी बनाना सिखा रही हैं। और कुछ महिलाएं बहुत अच्छी टिप्स देती हैं, स्किन के घरेलू रेमेडीज बताती हैं। तो सोशल मीडिया ने, तुम्हारे कहने का मतलब है, बहुत इजी कर दिया उनके टैलेंट को आगे पहुंचाने के लिए ना।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत ही, कह सकते हैं हम, एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया है, ऐसा सशक्त माध्यम जो महिलाओं को बहुत आगे लेकर जा रहा है।
1: कॉटन, मुझे भी लगता है दोस्तों। और आजकल महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आजकल महिला हो या पुरुष, हर किसी को अपने लाइफ में, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का राइट है, अपने सपनों को जीने का राइट है। क्यों प्राची?
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की।
1: चलिए तो एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एंड वी कम बैक विद यू आनंद एंड प्राची।
0: यस।

0: मकसद है देश की रक्षा, उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर?
1: यस सर।
0: इज दैट क्लियर?

0: वेलकम बैक है प्राची और आनंद के साथ हैं आप। आज हम लोग महिलाओं की राइट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की उन काम काजी विमेंस की बात कर रहे हैं जो अपने टैलेंट को अब बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाती हैं। और आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो हमारी विमेंस के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जब वो दिल से करती है ना तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। राइट प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खोल दी हैं। वो बड़ी बड़ी वो बिजनेस अपने जो भी उनके अंदर स्किल था आज उन स्किल्स को वो बहुत आगे बढ़ लेकर जा रही हैं और बड़ी क्या बोलते हैं एक तरह से एक बहुत ही बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर रही हैं वुमेन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि हर वुमेन्स की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक संघर्ष की कहानी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। हमारी मम्मियों को देख लो यार, जिन्होंने कभी बस कलर टीवी पे रंगोली देखी थी, आज वो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, है ना। वेल, मेरी मम्मी तो खैर नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हमें और डांटती है कि फोन में घुसे रहोगे, इसके बाहर भी निकल के देखोगे। वेल, आजकल की मम्मियां वेल बहुत एक्टिव हो, इतनी अच्छी अच्छी हमारी मॉम्स को रेसिपी, अचार और पापड़ और ना जाने कितनी सारी चीजें आती हैं, और जब वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक सर्कुलेट करती हैं तो उन्हें जो खुशी मिलती है ना, उन्हें

0: अपना बिजनेस उन्होंने इस तरह से स्टैब्लिश किया है, जो नेटवर्क अपने लिए
1: क्रिएट किया है.
0: क्रिएट किया है,
1: गॉट
0: और
1: इट.
0: उससे जो वो अर्न कर रहे हैं एक तरह से एम्पावर्ड बन रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही है,
1: एब्सोल्युटली
0: तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छे दौर में हम आ गए।
1: करेक्ट करेक्ट. तो दोस्तों बस आज का यही संदेश है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए चुनौतियां आना कंपल्सरी है. जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस चुनौतियां तो आती ही हैं. जिस लाइफ में चैलेंज रहा वो लाइफ ही किस काम की, क्यों प्राची? तो
0: बिल्कुल
1: बस आपको चैलेंजेस का सामना करना है, और कोई लीडी अगर चुनौतियों का सामना कर रही है तो हमें उनका सामना करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, और उनके साथ उनके काम को सराहना है, और उनके आत्मविश्वास के साथ उन्हें और ज्यादा पुश करना है कि वो और मोटिवेट हों.
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा FM मुरादाबाद 89.6 ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करता है और सब उन्हें और इन्हें प्लेटफॉर्म देता है कि वो आके अपनी बात कहें, अपने स्किल अपने टैलेंट से
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.
0: पूरे शहर को पूरी दुनिया को रूबरू कराएं।
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात. और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ फिलहाल तो मैं लूंगा आपसे इजाजत. बस यही कहना मैं चाहता हूँ जाते जाते, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ती हैं, पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे देश को आगे बढ़ाती हैं. राइट प्राची?
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम करते हैं सलाम ऐसी महिलाओं को।
1: एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा आपने. और बस मैं तो जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना आंटी, अगर आपके अंदर कोई बढ़िया टैलेंट है दीदी, तो उसको बाहर निकालो भाभी जी, सिर्फ किचन तक मत रखो. अगर आप बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती हैं, आप बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाती हैं, आप बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हैं, तो उसको सोशल मीडिया पर शेयर करो. हो सकता है वो छोले भटूरे का रेसिपी किसी और के काम आ जाए और उसकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए. क्यों
0: बिल्कुल
1: प्राची?
0: सही बात कह रहे हैं
1: आजकल लड़कियां ना ऐसा हो गया है कि मतलब खाने बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि स्टडी करना है, उनको फ्यूचर ड्रीम पूरे करने, तो यूट्यूब भी उनके लिए हेल्पफुल होता है.
0: हाँ
1: है ना. तो ऐसे में जो हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी हैं, जो
0: हाँ,
1: बहुत
0: जो यूट्यूब
1: एक्सपर्ट
0: पे
1: है,
0: इतना एक्टिव है,
1: एब्सोल्युटली, तो उनकी रेसिपी देख के आज की जेंजी को, आज की लड़कियों को एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाएगा यार. तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, प्लीज आइए एंड लाइफ में ऐसे ही रॉक मचाती रहिए. बाकी मोर डिटेल्स के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते रहिए
0: FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो
0: गुनगुनाते
1: रहो. चलिए हम लेते हैं आपसे इस प्रोग्राम से इजाजत, और फिर मिलेंगे जल्दी इस नए कार्यक्रम में और कुछ नई बातों के साथ. और ये तो महिला छह महिलाओं का कार्यक्रम, अगर आप आना चाहती हैं, आप कोई अपनी प्यारी बात करना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये मंच खुला है. क्यों प्राची?
0: आप हमसे जुड़ सकती हैं, हमारे फरमाइशी नंबर 9837
1: करेक्ट
0: 896896. एक
1: बिल्कुल
0: बार और बता देती हूँ, 9837896896.
1: बिल्कुल इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना टैलेंट और अपना नाम, हो सकता है अगली मॉर्निंग आप हमारे साथ स्टेशन पे हो. फिलहाल हम दोनों जाते हैं छोड़ के कुछ खूबसूरत गीत के साथ. आप सुनते रहिए महिला मंच, जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू
0: FM मुरादाबाद 89.6.
1: बाय बाय
0: बाय बाय.

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन।

0: से कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
4: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
3: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
3: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
4: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
3: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
4: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
3: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
4: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
3: EKCC साख से समृद्धि।
4: नियम और शर्तें लागू।

0: जी हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है। फरमाइशों में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं और समय की बात करूं तो 3:07 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि बस अब आपने अपना फोन उठाना है और हमें कॉल करना है। नंबर है 9837896896 पर कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं वेदर की बात करूं तो आज धूप यानी कि कड़क वाली निकली हुई है और थोड़ी सी गर्मी आज 2 दिन के मुकाबले ज्यादा है। चलिए अगले कॉलर से यानी कि फर्स्ट कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: अनीश अहमद बात कर रहे हैं।
0: अनीश अहमद जी, कैसे हैं सर आप?
1: मैं ठीक हूं, आप बताओ कैसे हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए।
1: मैम बहुत गर्मी हो रही है आज, बहुत परेशान है।
0: गर्मी तो हो रही है, भगवान जी ने बस 2-4 दिन के लिए बस थोड़ी सी दिलासा दी थी, लेकिन अब फिर से गर्मी। देखिए जून जुलाई का महीना है सर, गर्मी तो बढ़ेगी।
1: मैम मौसम विभाग वाले तो बोलते हैं आज बारिश होगी कल होगी, मगर फिर भी नहीं होती
0: सर। वैसे बताऊं तो 2 हफ्ते तक की बारिश बता रखी है, लेकिन अब मौसम है वो तो कभी भी बदल सकता है ना।
1: मैम कल भी बहुत गर्मी थी, आज भी उमस वाली गर्मी है।
0: हाँ, अब उमस वाली गर्मी शुरू हो जाएंगी ना
1: जी।
0: और बता,
1: बारिश बहुत तेज हो जाए मैम तो ठंडक हो जाएगी।
0: प्रार्थना करिए कि बारिश बहुत तेज हो जाए।
1: में लगे हुए हैं।
0: बहुत अच्छी बात है कि प्रार्थना में लगे हुए हैं।
1: मैम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच सर, बट वैसे तो मैं सैटरडे सैटरडे आती हूँ सर।
1: मैम कभी कभी तो प्रोग्राम करती हो ना, हेलो फरमाइश। बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती हैं तो।
0: थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? कौन सा? अच्छा हिमेश रेशमिया का गाना सुनना चाहते हैं, ठीक है। किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: क्या नाम लें, सब सुनने वाले ही हैं, सब हमारे दोस्त ही हैं सब।
0: ठीक है, आपको सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर
1: जी। मैम
0: ठीक है,
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि कॉल करते रहिए, नंबर है 9823789896, क्योंकि कल संडे है और संडे को हमारा फरमाइश शो नहीं आता है। सो आज का मौका है वो हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए कॉल करते रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजोरी, गुड वाली आफ्टरनून है आरजोरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 3:14 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज की तारीख बेहद खास है, यानी कि 4 जुलाई। और आज का जो मौका है ना, वो बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना चाहिए, चौके पर छक्के लगा देना चाहिए जी। बिल्कुल, अगर चौके पर छक्के लगाएंगे तभी आपका कॉल लग पाएगा। और हमारा नंबर है 9837896896। अगर आप चाहते हैं कि बाउंड्री से बाहर बॉल जाए, तो वो तभी जाएगा जब आप कॉल करेंगे हमारे पास, अदरवाइज बाउंड्री के अंदर ही रह जाएगा, फिर वो छक्का चौका नहीं लगेगा। फिर अगर आप कोशिश करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे में लग सकता है आपका, है ना। तो आज का जो मौका है, आज का जो लुफ्त है, वो हमें एंजॉय करना चाहिए, और एंजॉय करने के लिए आपने कॉल करना है। और फिलहाल मैं अगले सेकेंड कॉलर से बात करती हूँ कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
0: मकसूद हुसैन जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम, बढ़िया है। आप सुनाओ, आप कैसी हो? और इस गर्मी में क्या करते हैं मैम? ज्यादा हालत खराब है, बहुत गर्मी है
0: सर। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, अब क्या ही कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि अपनी रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी ना।
1: हाँ, रक्षा तो मैम बराबर कर रहे हैं, लेकिन गर्मी तो गर्मी है।
0: ये तो है, गर्मी तो गर्मी है, गर्मी में पानी पीते रहिए बस।
1: हाँ, सावन का महीना है मैम, कहते हैं कि 8 बरस की है सावन में, पानी का है नाम, और बरसात ही मतलब दिखाई देती है। देखिए, सावन के महीने में तो मुझे नहीं लगता कि बरसात हो।
0: अभी भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो रहे ना, इसलिए हो जाएंगे भगवान जी, तब हो जाएगा सर।
1: ये बोल बेकार फिल्म में जो गीत है ना, बादल यूं बरसता है, दर कुछ ऐसा लगता है, उसमें है ये बोल, पानी का है नाम।
0: अच्छा अच्छा, आपने मतलब ये मूवी भी देखी होगी, है ना?
1: हाँ, ये मूवी देखी, सनी देओल की, अमृता सिंह की,
0: बद्रा जब छाए।
1: नहीं, वो तो मैम वो जो गीत है वो उसमें आया, सावन झूम के मैम।
0: अच्छा,
1: हाँ, बद्रा छाए रे, झूले पड़े राय रे, मछली झूम रहे के आया सावन झूम।
0: अच्छा अच्छा जी,
1: अब मैम चुप बुला रही है। एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो, तो पीछे से उससे भी बड़ा ट्रक आया, उससे भी बड़ा ट्रक उसके बराबर से घाय घाय करते हुआ निकल गया, उसके पीछे लिखता था आया सावन झूम के।
0: अच्छा। बहुत प्यारी लाइन है सर। तो किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: हाँ, डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी जी है, राजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खान साहब है, मोहम्मद इशरत, मुकेश मेहराज भाई है, इरशाद भाई है, और हमारी बीवी जो है रीना जी है, आरजी रीना जी, आकाशवाणी में जो रहती है सर।
0: थैंक यू सो मच सर। चलिए मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ, ठीक है? देखिए, रेडियो का जो वॉल्यूम है ना, वो बढ़ाना पड़ेगा आपको।
1: जी जी जी,
0: हाँ, बढ़ा लीजिए, तभी बारिश आ सकती है मुरादाबाद में।
1: चलो ठीक है जी, धन्यवाद।
0: चलिए जी, चलिए श्रोताओं, और ये गाना एंजॉय करते हैं, और आप भी कॉल करते रहिए। लेकिन उससे पहले एक और बात आप सभी से कहनी है कि जिन्होंने इस वीक कॉल किया है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, उनको कॉल नहीं करना है, ठीक है जी। फ्राइडे तक आपने जो कॉल किया है, वो उनको नहीं करना है। जिन्होंने इस वीक नहीं कॉल किया है, उन्हीं को कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ आता है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट

0: वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है.
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है.
2: कॉल 9045912348.
3: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है. आर्जेरीना के साथ फरमाइश शो में और समय की बात करूँ तो 3:24 हो चुके हैं और टेम्परेचर यानी की 36 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवाओं में थोड़ी सी नमी है. जी बिल्कुल, यानी कि गर्मी के साथ साथ बस थोड़ी सी हवाओं में नमी होना है, उतने में थोड़ा सा तो अच्छा फील होता है, लेकिन आपको और भी अच्छा फील होएगा जब आप आर्जेरीना के साथ फरमाइश शो में कनेक्ट होंगे. अपने फेवरेट वाला गाना आप इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि गाना वही जो आप सुनना चाहे तो आपने हमें कॉल करना है. नंबर है 9823789896 पर. चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं. हेलो.
4: हेलो फरमाइश.
3: हाँ जी बोलिए. गुड आफ्टरनून. जी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं?
4: हम बहुत अच्छे हैं दीदी, आप बताइए आप कैसी हो?
3: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. क्या नाम है जी आपका?
4: दीदी मैं रामपुर से रिहाना परवीन बात करूँगा.
3: ओके रिहाना जी, और बताइए कैसे हैं सब फैमिली में?
4: सब अच्छे हैं दीदी, आप बताइए आप कैसी हो? और मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
3: सब बहुत अच्छे हैं. तो बताओ जी कौन सा गाना सुनना चाहती हो आप?
4: गाना सुना देना ना, उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियां से पूछो, ये वाला गाना सुना
3: दो. ओके जी, किसी का नाम लेना चाहोगी आप?
4: हाँ जी दीदी, दो नाम है, ये होंगी शबनम भी है, नेहा भी है. आप
3: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं. ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद. बाय जी बाय. चलिए श्रोताओं, ये गाना एंजॉय करते हैं. उड़ते बादल से पूछो मेरा नाम, आखिर आज ये उड़ते बादल बता ही देंगे और ये अपने गाना एंजॉय करेंगे. अलकनिक जी की आवाज में, उनकी खूबसूरत आवाज. अलका याग्निक जी जिन्होंने

0: जी गुड वाली आफ्टरनून है आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 और समय की बात करूँ तो 3:31 हो चुके हैं श्रोताओं। और बहुत ही शानदार आपने अलका याग्निक जी की आवाज में गाना सुना है कि उड़ते बादल से पूछो मेरा नाम। आखिरकार उड़ते बादल नाम तो नहीं बताते हैं लेकिन मौसम जरूर बता देते हैं कि आज बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगा, लेकिन वो गरजते हैं बरसते नहीं है, बस इसी बात का दुख है। तो हम आपसे कहेंगे कि गरज रहे तो बरस जाएगी, यानी कि कॉल करना है हमें, नंबर है 9823789689। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी मैम।
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून,
0: क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम आशीष है।
0: आशीष, क्या करते हो आप?
1: जी मैम, मैं अपना काम करता हूँ, लकड़ी का कारपेंटर हूँ।
0: ओके ओके, तो बताइए आशीष जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम गाना सुनना चाहते हैं तेरा नाम दिल रख दिया।
0: चेंज कर दिया सर, बड़ी जल्दी पलट गया आप मौसम की तरह।
1: वो फहीम भाई ने, वो थोड़ा फहीम भाई ने गलत बीच में बोल दिया था ना।
0: क्या बोला आपने, तेरा नाम दिल कर दिया?
1: हमारा तुम्हारा नाम दिल रख दिया।
0: अच्छा, तुम्हारा नाम दिल रख दिया, कहाँ रख दिया
1: जी? अरे बस मैडम, जहाँ रख दिया रख दिया बस।
0: अच्छा जी, दिल तो रखते नहीं है सर।
1: मैं सॉन्ग है तो खाली, दिल तो रखने की जगह थोड़ी है।
2: मैडम ने तुझे कहाँ अच्छा दिया।
0: ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, किसी का नाम लेना चाहेंगे
1: जी? मैम
0: किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: नहीं मैडम, हमारा कोई ऐसा ना जी, हम तो बस किसी का नाम लेंगे।
0: चलो जी, खुद से सेल्फ लव। चलिए जी सुनवाते हैं आपको।
1: जी मैम सुनाइए।
0: श्रोताओं, और आपसे ये कहना चाहेंगे, देखिए कल संडे है तो आप कॉल कर लीजिए, और जिन्होंने इस वीक कॉल किया कृपया करके वो कॉल ना करें।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कि मैंने दिल तेरे नाम रख दिया। ओहो, गुड वाली आफ्टरनून है जी, फरमाइश।

0: मैं आरजे रीना के साथ श्रोताओं और समय की बात करूं तो 3:39 हो चुके हैं, यानी कि अपने पास अभी भरपूर मात्रा में टाइम है, तो आप आराम से कॉल करिए, डोंट वरी, कोई भी जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। हमारा नंबर है 9837896896 पर आपने कॉल करना है। और चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? आयुब, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस बढ़िया, रीना जी, बस गर्मी बहुत हो रही है, काम कर रहे हैं।
0: सर गर्मी तो हो ही रही है, अब गर्मी है, क्या ही कर सकते हैं, काम भी करना है।
1: काम तो करना ही है।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और बताइए सर, सब फैमिली में बढ़िया? हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया है स्टूडियो में भी। और बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज गाना बहुत प्यारा लेकर आया हूँ मैं, जाते हो प्रदेश में जाते ही खत लिखना।
0: जी बिल्कुल, खत तो पहले लिखा करते थे सर, अब खत कहाँ लिखते हैं, मैसेज कर देते हैं अब तो। अच्छा, घर कहाँ है आपका?
1: रामपुर में, मुरादाबाद में है ना अभी।
0: अच्छा, घर रामपुर में है, तो आप अप डाउन करते हैं या फिर यहीं पर रहते हैं?
1: यहीं पर रहते हैं, काम करते हैं, तो 8 दिन में जाते हैं ना।
0: अच्छा, संडे संडे जाते हैं आप?
1: जुमेरात में जाते हैं, जुमेरात में छुट्टी रहता है।
0: अच्छा, शुक्रवार को जाते हैं आप, शुक्र है कि शुक्रवार है। चलिए जी, अच्छी बात है, तो घर की तो याद आती है सर, चाहे आप 1 घंटे के लिए बाहर जाए, चाहे आप आधे घंटे के लिए जाए, और वैसे भी 8 दिन बाद घर में जाना तो बहुत ही याद आती है।
1: याद आती है तो उनकी भी याद आती है।
0: तो चलिए सर, आपको ये गाना हम सुनवाते हैं, ठीक है जी? ओके जी, वेलकम। चलिए जी, आयुब जी के रिक्वेस्ट पर ये गाना हम सुनते हैं, जाते हो परदेश पिया, और जाते ही खत लिख देना।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है फरमाइशों में आरजरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 3:48 हो चुके हैं श्रोताओं, और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और यानी कि 2-3 दिन के मुकाबले आज के अगर वेदर की बात करूँ तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो इस गर्मी में आपने ध्यान रखना है, पानी की बॉटल अपने साथ रखना है। इनफैक्ट जो कोई बाहर से भी आ रहा है, आप नहीं भी जानते उनको, फिर भी पानी पूछना है आप सभी को, क्योंकि पानी पूछना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं एक प्यासे को अगर पानी पिला दिया तो आपने पुण्य तो वैसे ही कमा लिया, इसीलिए पानी हर किसी को पिलाना चाहिए इस गर्मी में। साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी अपने छत पर जरूर रखे। जो पंछी है बेचारे, वो पानी मांग नहीं सकते आपसे, लेकिन आप उनके लिए पानी रखिए, पानी चेंज करते रहिए, उनके लिए दाना डालिए ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा सके और अपना पेट भर सके। चलिए फिलहाल हम अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो
1: हेलो फरमाइश। हाय दी।
0: हाय, कैसी हो?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ दी, आप बताओ आप कैसी हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अपना नाम बता दो जरा श्रोताओं को।
1: दी मैं आपका भिकनपुर जिला मुरादाबाद से रुकैया फातिमा बात कर रही हूँ।
0: ओके फातिमा जी, और बताइए फैमिली मेंबर में सब कैसे हैं?
1: हाँ दी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, अच्छे रहने चाहिए। और ये बताओ कि आप अभी कर क्या रही हो? गर्मी बहुत ज्यादा है ना?
1: मैं इस टाइम तो शिकंजी बना रही थी दी।
0: ओहो, अकेले अकेले बना रही हो तो गलत बात है।
1: हाँ दी, बना अकेली रही थी, पर पियेंगे सारे साथ में।
0: हाँ, इधर भी पार्सल करवा देना आप।
1: हाँ दी जरूर। बस आपको पसंद आनी चाहिए।
0: अरे अरे, प्यार से इंसान जहर पूछ ले वो भी पसंद आता है। बिल्कुल, शिकंजी तो पीनी चाहिए गर्मी में, और इससे सही रहता है बॉडी का टेम्परेचर है जो।
1: हाँ दी
0: बिल्कुल। तो बताओ कौन सा गाना सुनोगी आप?
1: दी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, 90s का सॉन्ग है, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा।
0: क्या बात है जी, बहुत अच्छा है ये गाना। और उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में, ये मूवी आपने देखी है?
1: शायद देखी होगी दी, पर अभी याद नहीं है।
0: चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम आपको ये गाना सुना,
1: ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरी दोस्त दरक्षा फातिमा को।
0: ओके दरक्षा
1: मेरी सिस्टर भी है दी
0: कुछ। बोलो।
1: अफरोज फातिमा, आसिया फातिमा और नजमा अप्पी, राबी अप्पी और नरगिस अप्पी और आप और हम।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं हम, ठीक है?
1: थैंक यू दी, बाय।
0: ओके बाय, वेलकम। चलिए श्रोताओं, आपको ये गाना सुनवाते हैं, सिलसिले मुलाकात का ना छोड़िएगा, और छोड़ने भी नहीं चाहिए जी, ठीक है जी। चलिए

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। सिलसिले प्यार का ना छोड़िएगा, और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं, और रेडियो सुनना बिल्कुल ना छोड़िएगा जी, क्योंकि आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 जो आप सभी को सुबह से लेकर शाम तक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट करता रहता है। जब एंटरटेनमेंट का डोज आपको मिलता है, हम सभी को भैया घर पर बैठे बैठे आराम से हम गाना सुनते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई रेडियो सुनने के लिए हमें काम छोड़ना पड़े, बल्कि रेडियो तो ये कहता है कि काम करते रहो और मुझे सुनते रहो, कब काम खत्म हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून,
0: कैसी हो?
1: मैं ठीक हूँ मैम।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कश्यप है।
0: कश्यप, कहाँ से बात कर रही हो आप?
1: जी मैं बारादरी दर्जान मोहल्ले से बात कर रही हूँ।
0: ओके, क्या करती हो आप?
1: हाँ, हम पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करती हो, तो बताओ कौन सा गाना सुनोगी आप? अच्छा, प्यार किया तो डरना क्या। चलिए ठीक है, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? आपको ये गाना पसंद है?
1: यस मैम।
0: चलिए जी, फिर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? चलिए जी भैया, आजकल के बच्चे बड़े सिंसियर हो गए हैं, और आपसे यही कहना चाहेंगे, जब बच्चे कॉल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं जी। आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ोन तो अपने पॉकेट से निकालना पड़ेगा, जो आपने पॉकेट में फ़ोन रखा है ना, और चैटिंग कर रहे हैं आप। ओहो, देखिए स्माइल तो देखिए बड़े अच्छे कर लेते हैं आप। देखिए इस स्माइल के साथ आपने कॉल करना है, और जिसके साथ आप चैटिंग में बिजी है ना, उनके लिए आप गाना भी डेडिकेट कर सकते हैं, तो मोहतरमा और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो और भी ज़्यादा उनको खुश करना, तो उसके लिए हमें कॉल करिए, नंबर है 9837896896, और उनको भी ये गाना डेडिकेट करिए। चलिए फिलहाल हम गाने की तरफ बढ़ते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के भी। श्रोताओं कहीं नहीं जाना है, और क्योंकि देखिए समय अपने पूरी कगार पर होती है, और जो ये रिक्वेस्ट शो है जिसमें आप सभी के फरमाइश वाले जो गाने हैं वो प्ले किए जाते हैं, सो अच्छा लगता है जब आपके फरमाइश वाले गाने प्ले होते हैं और आप सुनती हो, और भी अच्छा लगता है। तो चलिए

0: 9831533386।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम, प्यार किया तो भैया डरना क्या, ये आजकल हर किसी को प्यार करने से डर लगने लग गया है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आप आराम से कॉल कर सकते हो हमें, नंबर है 9837896896, क्योंकि यहाँ डरने वाली कोई भी बात नहीं है श्रोताओं। और गुड वाली आफ्टरनून है जी, फरमाइश शो में आप आर्जोरीना के साथ कनेक्ट है। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई भैया, यानी कि 4:06 हो चुके हैं, तो आपने सिर्फ हमारे पास 1 घंटा और बचता है, तो इसी में आपने मैनेज करना है, यानी कि हमें कॉल करना है। तो चलिए फिलहाल हम अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हाय दी, कैसी हो आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं गर्मी में बहुत बुरा हाल है।
0: हाँ, आपकी बातों से लग रहा है कि भैया गर्मी बहुत ज्यादा है, थकान हो चुकी है।
1: जी मैम, मुझे तो बहुत ही गर्मी लगती है।
0: अरे लगती होगी। अब गर्मी ज्यादा है तो गर्मी तो लगेगी ना, आप होट हो ना, इसलिए और ज्यादा गर्मी लगती है आपको।
1: जी मैम बहुत गर्मी है, कल भी बहुत थी और आज भी बहुत है।
0: तो आप अपना नाम तो बता दो।
1: मैं दरक्षा भाती में बात कर रही हूँ।
0: ओके दरक्षा जी, और बताइए आपके फैमिली में सब बढ़िया?
1: मैम सभी बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ। बताओ दरक्षा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हो?
1: मैम जो मैं नौटियाल की आवाज में सॉन्ग सुना देना।
0: ठीक है जी, जुबिन नौटियाल की आवाज में आपको हम गाना सुनवाएंगे, ठीक है? किसी का नाम लेना चाहोगी आप?
1: हाँ जी मैम, मेरी बेस्टी रुकैया फातिमा और अफरोज फातिमा है मेरी सिस्टर, और नजमा आपकी राबिया आजी आपकी है, और आप सभी सुनने वाले।
0: चलिए सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा सो गर्मी आपको लगेगी नहीं, ठीक है?
1: हाँ जी मैम, बोलियो फोलियो मिला के जब सुनेंगे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, मोहल्ले तक आवाज जानी चाहिए।
1: हाँ जी मैम बिल्कुल जाएगी।
0: जी चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: थैंक यू मैम, बाय।
0: ओके बाय। चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं, जोबिन नौटियाल की आवाज में, मधुर आवाज में इनके गाना सुनते हैं।
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है, ये सिर्फ मेरा पागलपन है।

0: तारा कहाँ चली गई?
1: क्या बात है जी, जुबिन नौटियाल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओ, और गुड वाली इवनिंग है फरमाइश शो में। समय की बात करूँ तो 4:14 हो चुके हैं, और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और टेम्परेचर की बात करूँ तो 2 degrees यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा घटा है, यानी कि 36 से 34 degrees Celsius पर आ चुका है टेम्परेचर, यानी कि थोड़ा सा वेदर में नमी है। तो चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
2: हेलो फरमाएं।
1: हाँ जी सर, गुड इवनिंग।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम सोनू कुमार, सेक्टर 10 बुद्धिहार से बोल रहा हूं।
1: बुद्धिहार से। हाँ जी सोनू जी, बताइए कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है मैम, आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या करते हैं सोनू आप?
2: परिवार
1: जी, हमारे फैमिली में सब बहुत बढ़िया है, स्टूडियो में भी बहुत बढ़िया है। आप बताइए सोनू जी, क्या करते हैं?
2: हम तो मैम काम पे हैं।
1: अच्छा काम पे हैं, बताइए जी कौन से गाने सुनेंगे आप?
2: हमें गाना सुनना है हम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे।
1: क्या बात है जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
2: नाम लेना चाहेंगे मैम, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: और रेडियो है जी जो साथ निभाता ही है।
2: मैम हम तो अपना रेडियो ऑन कर देते हैं, फिर तो सुनते रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा लगता है आपको?
2: बहुत अच्छा लगता है मैम, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है।
1: चलो जी शुक्रिया कि आपको अच्छा लगता है। जी बताइए
2: मैम, दोस्तों का नाम लेना चाह रहे?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, नाम ले लीजिए और गाना भी बता दीजिए। बता दिया आपने गाना, लेकिन नाम दोस्तों का बता। हाँ,
2: उमेश
1: प्रजापति। बस एक ही दोस्त का नाम?
2: दो दोस्त हैं मेरे तो, उमेश प्रजापति। और सभी हमारे दोस्त जो अभी हमारे साथ हैं वो सभी सुनना चाहते हैं।
1: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी?
2: ठीक है, नमस्कार।
1: ओके जी, नमस्कार। चलिए भैया, गर्मी यही है और इसमें यही बोलेंगे कि आप सभी यानी कि काम कर रहे हैं, पानी की बोतल अपने साथ रखिए और फ्रीज वाला पानी है उसको अवॉइड करिए। आप जितना फ्रीज वाला पानी पियेंगे आपको प्यास उतनी ज्यादा लगेगी, और प्यास कभी बुझती नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए हामी होता है। इसीलिए मटके का पानी पीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। उसको थोड़ा खुले एरिया में रखिए, पानी और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है, और उस पानी को पीजिए ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे। और पानी तो है ही मस्त भैया। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आरजे रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 4:00 यानी कि 26 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, तुम तो ठहरो परदेसी। जो कुछ गाने होते हैं ना, सच में बड़े ही लाजवाब होते हैं। आप उन गानों से ना खुद को रिलेट करते हो। सो आपसे यही कहेंगे कि भैया आप अपने पसंद का गाना सुन सकते हो बिंदास होकर। बहुत ये कहते कि हमारे पास फ़ोन है, हम फ़ोन में भी गाना सुन सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली आप अपने फ़ोन में गाना सुन सकते हो, लेकिन आप देखिए रेडियो पर कॉल करते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हमारे साथ साथ आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुँचता है। तो ये होती है सबसे शानदार वाली बात कि काश मौका मिला मुझे भी रेडियो पे बात करने के लिए। भैया जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मैं बहुत ट्राई करती थी जब भी ऐसे मौके मिलते थे कॉल करने के लिए, और वो कॉल पता है कम से कम 3-4 दिन बाद ट्राई करने के बाद एक बार कॉल लगता था, और वो जो खुशी होती थी ना नेक्स्ट लेवल वाली होती थी, सच में बड़ा ही अच्छा लगता था। फिलहाल हम अगले कॉलर से बात करेंगे, तो आप भी रीना के पास कॉल कर सकते हैं। जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं फरमाइशों में, नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
7: गुड इवनिंग रीना मैम।
6: जी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
7: मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, लोगों की दया मैम। आप बताएं कैसे हैं आप सब?
6: जी हम बहुत बढ़िया, एकदम मस्त हैं। आप बताइए अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं?
7: मैं पिंटू लैंडपाल मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर श्रोता मैम।
6: हाँ जी पिंटू जी, आई नो, मुझे पता है। तो बताइए क्या करते हैं आप काम पिंटू जी?
7: जी मेरा छोटा मोटा काम है अपना मैम।
6: ओके ओके जी, चलिए अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
7: मैं गाना सुनना चाहते हैं कि आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई, मेल फीमेल की आवाज में, दोनों की आवाज में। और मैम मैं एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ आपकी।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
7: जी। आज बादल घने हैं तेरी यादों के, देख तेरी यादों के लम्हों में आज भीगना होगा। आज बादल घने हैं देख तेरी यादों के, आज तेरे मेरे लम्हों में भीगना होगा। जरा सा मुस्कुरा कर ये आसमां देख लेना, अपने खातिर ये मौसम कभी बना होगा, अपने खातिर ये मौसम कभी बना होगा।
6: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने शायरी सुनाया है सर। और इसी के साथ मैं आपको एक गाना सुनवाती हूँ, ठीक है जी?
7: जी थैंक यू वेरी मच मैम।
6: ओके ओके जी, ओके, चलिए बहुत ही शानदार है और ये गाना भी बहुत ही शानदार है। आजा मेरी माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। चलिए जी, बरसात आए ना आए लेकिन गाना तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए, क्या पता गाने सुनने से बरसात आ जाए। थोड़े सूर्य भगवान को लगे कि नहीं यार गाना तो सुना जा रहा है, चलिए हम धरती पर चढ़ते हैं, अपनी बहन को भेज देते हैं, मैं थोड़ी देर विश्राम करने के लिए चला जाता हूँ, ठीक है जी? चलिए गाना इन्जॉय करते हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कि आजा मेरी माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। और जब हल्की हल्की सी बरसात आती है और जब चेहरे पर भैया फुहारे पड़ते हैं ना, तो मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। सो श्रोताओ, गुड वाली इवनिंग है, आज जो रीना के साथ आप कनेक्ट है फरमाइश शो में। और समय की बात करूं तो 4:33 हो चुके श्रोताओं, और आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखिए, समय हमारे पास ओहो बहुत ही कम है, तो आपने कॉल करना है, नंबर है 9837896896। और देखिए, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मैं किसी का भी कॉल कट नहीं करती हूँ। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है तो वो कॉल कट जाता है, मैंने आपके मैसेज देख लिए हैं, ठीक है जी? तो मैं क्यों कॉल कट करूंगी, जबकि इनफैक्ट तो मैं तो बोलती हूँ कि कॉल करिए, गाना सुनिए, जो भी आप सुनना चाहते हैं ना, तो ये नेटवर्क इशू की वजह से होता है जी। चलिए, फिलहाल हम अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है, अपना नाम बता दीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है कामिल जी। और बताइए, फैमिली में सब बढ़िया है? चलो, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे फैमिली में, हमारे स्टूडियो में सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच जी। बताइए, कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: चाइना गेट,
0: बिल्कुल कर।
1: उसका एक सॉन्ग है शर्मा शर्मा, ये तो वाला सुनवा देने।
0: ठीक है जी, किसी का नाम मेंशन करना चाहेंगे?
1: हाँ, मेरे साथ में मेरे फ्रेंड में तो लाला काजमी, मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनिशुर रहमान और रामपुर से मेरे दोस्त, ये सुनना चाहेंगे मैं।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको हम ये गाना सुनवाते, ठीक है?
1: थैंक यू मैम।
0: ओके जी, वेलकम। चलिए, छम्मा छम्मा बजे पाइलिया वाला गाना है ये, सो इस गाने को एंजॉय करेंगे जी। चलिए, लौट कर आते हैं, आप कहीं नहीं जाना है, बस कॉल करते रहना है, नंबर है 9837896896।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। चाइना गेट मूवी से, यानी कि भाई साहब छम्मा छम्मा अलका याग्निक जी की आवाज में, यानी कि भैया बॉलीवुड में उन्होंने जितने गाने हम सभी के लिए भैया गाए हैं ना, उनके गाने बड़े ही लाजवाब है, बड़े ही खूबसूरत है। मतलब सिंगर की आवाज कितना प्रैक्टिस करना पड़ता होगा, और कुदरती उनकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि हर किसी के मन को मोह लेती है। लेकिन आपने क्या करना है जी, आपने चाहते हैं कि अगर FM मुरादाबाद का मन मोहना है आपको, तो कॉल करना पड़ेगा। नंबर है 9823789689। आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में, और गुड वाली इवनिंग है जी। तो अगर आप चाहते हैं भैया कि बाउंड्री से बाहर बॉल जाए, तो कल कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाउंड्री के बाहर अंदर रह जाएगी तो पॉइंट आपको नहीं मिल पाएंगे, है ना। अगर पॉइंट चाहिए तो बाउंड्री से बाहर बॉल लेकर जाइए और कॉल करते रहिए। फिलहाल हम इतने अगले कॉलर से बात करते हैं, फोन निकालिए और कॉल करिए हमें, ठीक है जी। कोई कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि कल संडे है और संडे को आपके भी बताए कि फरमाइश शो नहीं आता है जी। चलिए, हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग।
1: मैं बोल रहा हूँ
0: जी, बताइए कैसे हैं।
1: सब बढ़िया है, और हमारे आरजे सब लोग कैसे हैं, मतलब आपसे।
0: सब बहुत बढ़िया सर, एकदम बिंदास है, मस्त है, झकास है,
1: और हम भी सब बढ़िया है हमारे घर में परिवार में।
0: चलिए अच्छी बात है, बढ़िया रहने चाहिए। बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप।
1: फिल्म का नाम है मेरा पति सिर्फ मेरा है, तो गाने के बोल है, मैंने उस दिनी मैंने तेरा खत पढ़ा, मैंने तेरा खत लिखा।
0: ठीक है जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे।
1: हाँ, ये हमारे साथ में है डॉक्टर सैयद तारिक अली एसएफ दवाखाने से, इरशाद हुसैन अंसारी है, शिक्षा मरवा सभी हमारे अंसारी है, हाजी अभय रामपुर से, मखरूम भाई है, डॉक्टर अक्सर
0: हुसैन पदमन से। चलिए जी, सभी के साथ फिर आपको हम ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया। चलिए गाइस, ये गाना एंजॉय करती हैं, और समय हमारे पास बहुत कम है, तो आप सभी से बस यही कहना चाहूंगी, भैया कॉल कर लीजिए। बार बार कह रही हूँ मैं, कल संडे हैं और संडे को आपको भी पता है मौका नहीं मिलता है। अगर आपको मौका चाहिए तो भाई कॉल कर लो, क्योंकि अब अर्जुरीना यहाँ से लेने वाली इजाजत जाने के लिए, और ये मिलेगी आपको सीधा मंडे को मिलेगी जी, ठीक है जी। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और आपको गाना सुनवाते हैं।
2: हाय दयालला जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है रेखा भैया। रेखा जी की ये जो अदाएं है ना, आय हाय क्या ही कह सकते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं, और समय हमारे पास बहुत कम है, और इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हेलो मैम, कैसी हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसी हो?
1: ठीक।
0: क्या नाम है आपका?
1: राबिया।
0: राबिया, कहाँ से बात कर रही हो आप?
1: राबिया,
0: जयंतीपुर से। ओके जी, तो बताओ जी कौन सा गाना सुनना चाहती हो आप?
1: एक दिन तेरा हो जाऊंगा।
0: क्या बात है जी, और बताइए सब घर में बढ़िया है?
1: सब बढ़िया, गर्मी बहुत हो रही है।
0: हर किसी के मुंह से बस यही निकल रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। जाए तो जाए कहाँ, एडजस्ट करना पड़ेगा जी थोड़ा सा। चलिए जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, किसी का नाम लेना चाहेंगी आप?
1: नहीं मैम, आप और हम और सुनने वाले।
0: क्या बात है जी, सेल्फ लव प्यार वाला है ना। ठीक है जी, चलिए जी हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: थैंक यू।
0: ओके वेलकम। चलिए श्रोताओं, अब मैं लेती हूँ यहाँ से फुर्र होने की इजाज़त, क्योंकि भैया अब हम मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात होगी, यानी कि मंडे इवनिंग मस्ती शो में 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ढेर सारी बातें करेंगे। तो कनेक्ट होइए और अपने दिल की बातें भेजिए आरजे रीना के साथ। अभी के लिए बाय बाय जी, टाटा, टेक केयर, क्योंकि समय की बात करूं तो 4:54 हो चुके हैं जी, और बाय। एक गाना है बहुत ही खूबसूरत, इस गाने को एंजॉय करिए।

0: 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30

0: बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ओटीपी कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, एटीएम और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है। इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगा यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
5: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
6: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर्स हैं, जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं, उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
5: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब पीएचडी भी कर रखी है आपने, फिर एडवोकेट।
6: पीएचडी मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानत उपाधि जिसको बोलते हैं, तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है, उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
5: तो मतलब पीएचडी के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
6: देखिए, जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी, और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाता था मैं।
5: अच्छा।
6: फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है एमबीए करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा, और के लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई, मैंने कहा नहीं, अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
5: और मुझे लगता है कि सर, जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो सर, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
6: देखिए, हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है वो एकदम 10 रुपए में मिलती है तो कस्टमर क्या होता है एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके क्या होता है जैसे ये जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
5: उसके फोन में कनेक्ट
6: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी हैं उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है, और जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
6: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
5: करेक्ट करेक्ट।
6: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना। आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे
5: भी है।
6: तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ आप किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं तो वहां पर आपको घबराना नहीं है बल्कि धैर्य के साथ समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
6: हाँ रीना बिल्कुल आपने ठीक कहा, साइबर अपराध जो है पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया आप आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है, वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि वही जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
5: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
6: देखिए ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
5: एक आसान जरिया,
6: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है तो निश्चित तौर पे वो आपके अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है, इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दे। और याद रखिए ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है,
5: बिल्कुल
6: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने बिल्कुल, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
5: पैसे चाहिए
6: थे या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया,
5: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
6: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में चाबी
5: दे दी,
6: तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
5: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
6: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
5: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी पैन या पासवर्ड मांगते हैं?
6: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है चाहे वो वित्तीय संस्था है वो कभी भी ओटीपी पिन एटीएम या सीवीवी या पास।
7: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
8: तो आइए एएसके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां डीएलएड बीटीसी दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
7: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
8: कॉल 9045912348।
9: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
10: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
9: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
10: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
9: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
10: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
9: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
10: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
9: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
10: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
9: EKCC, साख से समृद्धि।
10: नियम और शर्तें लागू।
5: मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक।
6: तो आपने अगर QR कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल
5: दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से संभाल रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
6: देखिए सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है? क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन QR कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कि केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा है कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने QR कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये
6: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे हाँ, उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
5: ये बिल्कुल वही
6: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
5: बिल्कुल,
6: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
5: बिल्कुल
6: नहीं
5: देना,
6: देना है। और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोता। और
6: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी OTP जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
5: बिल्कुल, और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसे चाहिए? तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर? ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
6: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
5: बिल्कुल, मैसेज क्यों करेगा?
6: मैसेज क्यों करेगा?
5: क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख लें।
6: आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आप आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है, या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
5: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
6: देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं। कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ईडी से हम बोल रहे हैं, कभी एसबीआई सीबीआई से, सॉरी, कभी वो सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
5: बिल्कुल,
6: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
5: क्या बात।
6: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
5: नहीं है,
6: ठीक है? किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें, या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं। हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
5: बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
6: देखिए, लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: तो अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
5: तो फ्रेंड प्रूफ मिल गया उनको,
6: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है, या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
5: सर, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं। इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर, एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, हम चाहते कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
6: देखिए, आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लग गए हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार न जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें।
5: यानी कि सस्ते के चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
6: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
6: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचें, अज्ञात लिंक से

0: बिल्कुल ना करे, जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
1: बिल्कुल
0: ठीक है,
1: बिल्कुल
0: या आपको इतने परसेंट छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने, अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
1: क्या बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
0: जी देखिए, बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है, और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं, कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं, कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है यूआरएल पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, हर चीज को, हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती उसी तरीके
1: बिल्कुल,
0: से
1: बिल्कुल
0: स्क्रीन पे हर चीज आपके बेनिफिट की नहीं हो सकती, है ना। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है श्रोताओं, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
0: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो अब क्या है धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
1: दुगना हो जाएगा।
0: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
0: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो है उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930। हाँ, इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है, जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है, ठीक है। पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट अपनी लॉन्च कराएंगे, तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है, अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी है, टाइमली आपने एक्शन लिया है, तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी।
1: बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे
0: आपके वापस हो सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है, आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शंस को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहां से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहाँ पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
0: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजेक्शन करने की की कोशिश
1: करेगा। हाँ।
0: जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होके किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई वो वापस आ जाए।
1: वापस आ जाए। सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है?
0: देखिए, मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना OTP किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें,
1: इग्नोर करना है।
0: हाँ। तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आता था ना, हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं। कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो सोर्स समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
1: क्या बात है
0: ये।
1: सर, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: देखिए, कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी के बात करते हो, और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आपके माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है। तो मैं यही बस अभी आप के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है ये हमारी, है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइलों का अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में
1: पड़ सकती है।
0: तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं, और जो है OTP पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते, वे आपकी सावधानी तोड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि जो है अलर्ट रहें और अवेयर रहें।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। आई होप कि आपने बातें सुनी और अब इसको फॉलो भी करेंगे, और फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नई बातों के साथ, जिसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलते रहे। इनफैक्ट हमें भी अच्छी जानकारियां मिलती है, और ये जो आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुँचेगी।
1: और सिर्फ पहुँचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है, पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी।

0: लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
1: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहड़ा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
0: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
1: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं
0: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणवाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
1: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
0: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
1: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
0: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
1: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
0: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
1: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
0: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
1: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है
0: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
1: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
0: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
1: अरे, बनारस और ठंडाई जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
0: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
1: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीसकर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छानकर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
0: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
1: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
0: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
1: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है
0: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई हैं।
1: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
0: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
1: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
0: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
1: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
0: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
1: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
0: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
1: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
0: अब बात उस तीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
1: जी हाँ, बनारसी पान।
0: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
1: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
0: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
1: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
0: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
1: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
0: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
1: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
0: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
1: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
0: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
1: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
0: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
1: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
0: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
1: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
0: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
1: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
0: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
1: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
0: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
1: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: गुड वाली इवनिंग है, आर्जेरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है।
3: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
3: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली हमारी डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
2: सही
3: कहा। तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल सर। तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
3: देखिए कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन हैं उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
2: उनकी सेवा करें,
3: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी हैं कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
2: अलग रहने की कोशिश करते हैं
3: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में वाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
2: बिल्कुल सर। सो, अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
3: देखिए ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं। और ऐसी स्थिति में आपको जो है सिटी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को

0: आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप SDM कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, DM के यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चों को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
1: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
0: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
1: बिल्कुल सर, और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
0: बिल्कुल, जैसा आप बीज
1: वैसे ही फल मिलेगा।
0: फल मिलेगा आपको।
1: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
1: श्रोताओं, आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं। रिटन में अगर कंप्लेंट करने को वहाँ पे पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
1: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
1: पहुंचाना जरूरी है
0: तुरंत।
1: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी पति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं। अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो वो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
1: बिल्कुल।
0: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
0: हाँ,
1: तभी
0: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
1: बिल्कुल।
0: तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
1: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर।
0: आपका अधिकार बना रहता है। फिर भी अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
1: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
0: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
1: दी जाती है। सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
0: सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं। जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित और सम्मानित ढंग से कर सके।
1: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, बुजुर्गो को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी कम,
1: थोड़ी शक्ति उनकी कम हो जाती है,
0: कम हो जाती है, शरीर भी थोड़ा दुर्बल हो जाता है,
1: हो जाता है। मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो
0: जो
1: जाता है।
0: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेके शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं, और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस अधिकारियों द्वारा। तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
1: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
0: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी भी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
1: अच्छा अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है, हाँ, कुछ गलत
0: तो
1: बोल रहा है।
0: आप किसी को भी आप ऐसे अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी तो पुलिस तुरंत तुरंत कार्रवाई करती है, और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उसके।
1: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट?
0: बिल्कुल, आप किसी को अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? आप किसी को कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पे जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए, और जो है बुजुर्गों को तो खास तौर पे आपको जो है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए मन के अंदर।
1: बिल्कुल श्रोताओं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा अंत में, यानी कि आप सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को क्या संदेश एक देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरा सभी जितने भी आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 एमएसजेड के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हम सभी को अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और साथ ही सीनियर सिटीजन को अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, तो तत्काल वो उस पर लीगल एक्शन ले सके, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और जो है बुजुर्गों को खास तौर पे हमें जो है वॉच भी करना चाहिए, क्योंकि उन इस एज में आके उनको हमारी जरूरत पड़ती है, वो शरीर से भी दुर्बल होते हैं, सोच भी उनकी थोड़ी सी, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमें बहुत सी जानकारियां मिली कि बुजुर्गों के लिए भी कानून है, मतलब उनके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मतलब तो थैंक यू सो मच सर, अब मैं यहां से जाने की इजाजत लेती हूँ। श्रोताओ, अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है 9837896896।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें, और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई, ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
7: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
6: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
7: हाँ हाँ,
6: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
7: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
6: जी,
7: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं,
6: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
6: जी, जिसका
8: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
6: चलिए बहुत मजे की बात है, और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
8: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
6: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
8: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
6: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को, आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
8: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए, और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
6: करेक्ट करेक्ट।
8: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
6: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
8: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
6: बहुत जरूरी है।
8: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी बढ़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
6: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर।
8: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
6: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने, और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं, और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है। शायद अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
8: ये टॉपिक इतना डीप में कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
6: आई थिंक
8: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
6: क्या बात है।
8: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
6: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है,
8: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
6: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह क्या बात है, लेकिन सर मजा उसी में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
8: बिल्कुल बिल्कुल,
6: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
8: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, है ना, तो उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
6: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है,
8: कहीं
6: फैमिली में चल रही है,
8: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है, गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
7: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
8: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
7: लिटिगेशन,
6: ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
8: देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
6: ओके
8: ठीक है, जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
6: करेक्ट। अच्छा जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का यू नो जिक्र होता है?
8: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
6: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
8: PIL
6: का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
8: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
6: लिटिगेशन के बारे में बात करें।
8: देखिए जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
6: ठीक है,
8: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
6: ओके मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
8: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो हैं जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है
9: करेक्ट
8: उसको बैठ के
9: समझौता किया जाए,
8: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए
9: मतलब दोनों पार्टी
8: क्योंकि क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है, तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
9: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते, आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
7: जी। हाँ हाँ बिल्कुल।
9: यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में और ये किस तरीके से वर्क करता है।
8: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
9: हाँ ठीक है,
8: सुनी होगी,
9: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
8: तो PIL क्या होता है, एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित
9: करेक्ट
8: है ना, इंटरेस्ट पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका
9: राइट।
8: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए फाइल नहीं कर सकता,
9: ठीक है,
8: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की ये वो बता देता हूँ मैं, जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
9: ओके
8: ठीक है,
9: अच्छा,
8: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होते हैं, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं, लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
9: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
8: बिल्कुल,
9: तो पब्लिक की हित की बात होनी
8: चाहिए। पब्लिक की बात होनी चाहिए।
9: करेक्ट,
8: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
9: दिस इज द पब्लिक प्लेस,
8: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या है, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
9: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
8: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी
9: आप पब्लिक के लिए,
8: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं
9: राइट,
8: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
9: मॉडल पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
8: है, बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके।
9: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर पहला क्वेश्चन। इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेसिकली।
8: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही,
9: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
8: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है, पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है, तो उसको लेके ही हम PIL उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशन।
7: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी व्यक्ति या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
8: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
9: ठीक है,
8: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते, उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशंस हैं और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
9: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। सर अच्छा ये बताइए पीआईएल और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
8: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, ठीक है, वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीआईएल सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता पीआईएल नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर

0: सकते हैं।
1: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
0: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरनमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हों, कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हों, तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेटेड पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
0: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
2: करेक्ट, अरावली। हाँ,
0: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे, लैंड माफिया थे, वो खनन वहां पे कर रहे थे। वो उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था, उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
2: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ या नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
0: देखिए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से, ध्यान रखना।
0: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म।
2: सर, मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट
0: लिटिगेशन।
2: यार, पब्लिक सीखने को मिली है,
0: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
2: जी जी सर,
0: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
2: ओके,
0: ठीक है।
2: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आप गूगल नहीं करने देना,
1: गूगल करके निकाल लेंगे।
2: हाँ, ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ, तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
1: हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
0: यस, बिल्कुल कराई जा सकती है। अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
2: हाँ जी हाँ जी,
0: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान, कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
1: क्या बात है।
2: अच्छा, डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा।
0: देखिए, डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो PIL का महत्व और ज्यादा की बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे हैं ना गूगल पे, तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है कुछ,
2: एब्सोल्युटली
0: है ना।
2: 100%।
0: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी कर रहे हैं, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है। तो इसको लेके भी कई PILs जो है दाखिल करी थी, और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शंस दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे
2: करेक्ट
0: हैं
2: करेक्ट। हाँ
0: या
2: जी, हाँ जी,
0: व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भाई जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना
2: लीक
0: चाहिए।
2: नहीं होना
0: तो
2: चाहिए,
0: ये
2: सेफ
0: पब्लिक
2: रहना
0: से
2: चाहिए।
0: रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
2: 100% राइट। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
0: देखिए, हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे, जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में
2: हाँ जी,
0: बताया,
2: हाँ
0: ठीक
2: जी,
0: है,
2: हाँ जी, आई रिमेम्बर।
0: प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता
2: ये
0: से
2: तो सर मुझे
0: संबंधित,
2: लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।
0: भाई ट्रांसपेरेंट
2: हाँ
0: इलेक्शंस होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही एक,
2: करेक्ट करेक्ट, वही
0: है ना,
2: ना।
0: तो कहीं ना
2: तो
0: कहीं एलिगेशंस लग,
2: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई फिर ना,
0: हाँ
2: जिस पे हम
0: बिल्कुल
2: बात
0: बिल्कुल,
2: कर रहे हैं अभी।
0: तो जनहित की जहां पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
2: डेफिनेटली लगेगा,
0: रहती है बिल्कुल,
2: ठीक है,
0: उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं
2: फाइल कर
1: चलिए
2: सकते
1: आगे
2: हैं।
1: बढ़ते हैं। यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती
0: देखिए, हमारे
2: है?
0: जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको लेके जो है कई एक NGOs हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते
2: जी
0: हैं,
2: जी
0: NGOs
2: जी सर।
0: एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी PIL या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लेके अगर उस PIL दाखिल की जाती है तो उस पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
2: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और
0: जी
2: ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड
0: लिटिगेशन,
2: आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
0: राइट
2: करेक्ट,
0: राइट।
2: तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में। एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को FM मुरादाबाद 89.6 FM जो सुन रहे हैं, उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक
1: मैसेज
2: मैसेज
1: देना
2: देना
1: चाहूंगी,
2: चाहेंगे?
0: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी FM मुरादाबाद 89.6 है,
2: जी
0: इसको
2: जी
0: सुनते रहिए, और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
2: इन्फॉर्मेशन
0: भी,
2: भी अपने ऐड कीजिए,
0: अपने घर वालों को भी सुनाइए FM।
2: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल, सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है, जो
0: अच्छा
2: आसपास के
0: आपका
2: लोग हैं।
0: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा,
2: जी
0: मैं
2: सर,
0: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता
2: गॉट
0: है,
2: इट,
1: बिल्कुल
2: हम
1: तो
2: अपने
1: वो
2: समुदाय
1: कनेक्ट,
2: की बात
0: हाँ
2: करते हैं,
0: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना
2: करेक्ट,
0: कहीं आप भी
2: वही
0: पब्लिक की बात कर रहे हैं,
2: पब्लिक
0: तो
2: की
0: आप
2: बात
0: पब्लिक की आवाज बन रहे हैं,
2: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज,
0: बिल्कुल
2: और ये आम जनता की आवाज, इसीलिए हम आप आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.
1: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे
2: लेकिन
1: में पता भी नहीं.
2: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा. आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया. और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग. मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है. मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
1: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे. मतलब इन्होंने
2: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी. लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था. तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का. सर बहुत बहुत थैंक यू, आप आए. एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पे हम बात करेंगे. तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. नारा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा. सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता अभी.
1: पोटला ठोकला नहीं है गाइस,
2: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना.
1: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं
2: वो मुझे नहीं पता. फिलहाल ये लीगल टॉक्स है, यहाँ पे अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन. इट्स नॉट रेसिपी शो.
1: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं आप सभी से. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर. अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रोक मचाते रहिए
2: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए. और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो. तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत. फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना. बाय बाय, नमस्कार.
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा. चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद.
5: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक.
4: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में.
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई.
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी.
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट.
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर

0: आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है, सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ओटीपी कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, एटीएम और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है। इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगी यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
0: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर्स हैं, जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
0: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब पीएचडी भी कर रखी है आपने, फिर एडवोकेट।
1: पीएचडी मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानत उपाधि जिसको बोलते हैं, तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है, उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
0: तो मतलब पीएचडी के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
1: देखिए, जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी, और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाता था मैं उससे पहले। फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है एमबीए करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा, उनके लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई। मैंने कहा नहीं, अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
0: और मुझे लगता है कि सर, जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सर, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
1: देखिए, हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, वो एकदम 10 रुपए में मिलती है, तो कस्टमर क्या होता है, एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं, किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके क्या होता है, जैसे कई एक जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है, या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
0: उसके फोन में कनेक्ट
1: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी हैं उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है, और जिससे हमें नुकसान हो सकता है, वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने

0: तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ आप किसी चोर को, किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता, हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
0: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है, पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आप आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है। वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि वही जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
1: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
0: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
1: एक आसान जरिया।
0: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आपका अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दे, और याद रखिए ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है।
1: बिल्कुल
0: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
1: पैसे चाहिए
0: थे या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
1: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
0: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में चाबी
1: दे दिया।
0: तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
1: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी, पैन या पासवर्ड मांगता है?
0: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे, मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो वित्तीय संस्था है, वो कभी भी ओटीपी, पिन, एटीएम या सीवीवी या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है, और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है। जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
1: बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए, एकदम आते नहीं। तो कई

0: केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको QR कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर QR कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें, तत्काल उसको फोन को ब्लॉक कर दें। और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मेरिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए।
0: बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
1: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
0: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा। तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान।
0: देखिए सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है। क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन QR कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया, और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कई केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने QR कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये
0: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
1: ये बिल्कुल वही
0: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है, और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: देना है,
0: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोताओ। और
0: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी OTP जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
1: बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर। ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
0: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
1: बिल्कुल। मैसेज क्यों करेगा क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख लें।
0: तो आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है, या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
1: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर।
0: देखिए डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ईडी से हम बोल रहे हैं, कभी एसबीआई सीबीआई से सॉरी, कभी वो सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठा देते हैं वो।
1: बिल्कुल,
0: डर बैठा के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
1: क्या बात।
0: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
1: नहीं है,
0: ठीक है। किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं, हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
0: देखिए, लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
1: तो प्रूफ मिलेगा उनको,
0: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
1: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं, इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लगे हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेहरे,
1: यानी कि सस्ते की चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
0: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचे, अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें, जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है, या आपको इतने परसेंट छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनें। अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
1: क्या बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
0: जी देखिए, बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है। वो एकदम से क्या करते हैं, कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है यूआरएल पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए हर चीज को। हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती, उसी तरीके
1: बिल्कुल,
0: से
1: बिल्कुल
0: स्क्रीन पे हर चीज आपकी बेनिफिट की नहीं होती है ना। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है श्रोताओ, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
0: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
1: दुगना हो जाएगा।
0: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
0: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930।
1: हाँ,
0: इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है, ठीक है। पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट अपनी लॉन्च कराएंगे, तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है। अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी है, टाइमली आपने एक्शन लिया है, तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
1: जल्दी करी है। बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे
0: आपके वापस हो सकते हैं अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है। आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहां से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
1: क्या बात है। तो श्रोताओ अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहाँ पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
0: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश
1: करेगा।
0: जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई है वो वापस आ जाए।
1: सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है?
0: देखिए मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना ओटीपी किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें,
1: इग्नोर करना है।
0: तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आता था ना, हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं, कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो सोच समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
1: क्या बात है
0: ये।
1: सर जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: देखिए, कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी के बात करते हो और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आपके माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है। तो मैं यही बस अभी तभी आपके कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है, ये है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइल अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में
1: पड़ सकती है।
0: तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं। और जो है ओटीपी, पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते, वे आपकी सावधानी तोड़ते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि जो है अलर्ट रहें, अवेयर रहें।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। आई होप कि आपने बातें सुनी और अब इसको फॉलो भी करेंगे, और फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नई बातों के साथ, जिसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलते रहे, इनफैक्ट हमें भी अच्छी जानकारियां मिलती है। और ये जो आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
5: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
6: और हूँ आपकी दोस्त प्राची।
5: मैं हूँ आपका दोस्त RJ आनंद। आप सभी का बहुत स्वागत है।
6: दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
6: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
5: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गांव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया है। इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख आ देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात की कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपकी का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी मिलेंगे श्रोताओं, ना ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: दूल्हा तो बहुत ही जज रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: दिस साइड आर्जेडीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
5: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: सर ये बताइए आप, मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
5: जी,
4: तो आपको हमारे रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
5: नहीं मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
4: अरे अरे क्या बात है।
5: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया है आपने।
4: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर।
5: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
4: बिल्कुल सर। तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
5: देखिए बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ही अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथा स्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
4: बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
5: देखिए जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थाई रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
4: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
5: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
4: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
5: देखिए स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
4: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
5: देखिए जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ नहीं कर सकते।
4: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
5: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना, आपको मानना भी है और बाध्यता है आपकी।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
5: नहीं देखिए इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
4: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
5: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी, एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
4: बिल्कुल
5: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
4: बिल्कुल,
5: तो कोर्ट के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
4: बिल्कुल।
5: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
4: बिल्कुल।
5: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है, और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
4: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
5: हाँ बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
4: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
5: जी हाँ बिल्कुल, हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
4: क्या बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
5: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें, और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए, और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
5: बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
4: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
5: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता है।
5: जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
4: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: इट इज अ सनी डे।
7: ओ सनी शेड्स डे यार।
6: यार सॉरी।
7: और फिर मिला है तुलसी?
6: कितने ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को भी अता पता है ही नहीं यार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: सिंह की आवाज में अभी

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की और सोनिया विहार जल संयंत्र तथा तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, मुनक नहर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। साथ ही अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।
1: श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा के BDFD पार्क में सौंदर्यीकरण कार्यों और इसमें नई प्रकाश व्यवस्था के लिए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन किया। इसके अलावा शालीमार बाग में जल भराव और सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए आधुनिक जल निकास प्रणाली और अतिरिक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को जल भराव और सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक तथा दीर्घकालिक संरचना विकसित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा परिसर स्थित दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक तथा तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख और आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश कर रही है, जिससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के अंतर्गत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तबादला किए गए अधिकारियों में 23 उप लेखा नियंत्रक और 29 वरिष्ठ लेखा अधिकारी शामिल हैं। साथ ही 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को पदोन्नत कर उप लेखा नियंत्रक बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार अब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अलग अलग समय को बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर दिया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम के लिए समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग 120 अरब डॉलर है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
3: मैं मानता हूं कि यहां जो सभी भारतीय स्वदेशी खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं, ये एक प्रकार से भारत के भविष्य को तैयार कर रही हैं और ये विदेश से आने वाले सब खिलौने बच्चों के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं, ये इनोसेंट पेरेंट्स को कभी ध्यान ही नहीं आता। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में इस बात का उजागर किया था कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि हम एक ग्लोबल टॉय हब बन सके, पूरी दुनिया में भारत के खिलौने जाने चाहिए।
0: आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय एक्सपो इस महीने की 7 तारीख तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कड़कड़डूमा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की। आरोपियों ने ट्रायल शुरू किए बिना लगातार जेल में रखने पर व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर जमानत मांगी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक स्थानीय और दो अफ्रीकी निवासी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल होने वाले तीन दोपहिया वाहन और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों अफ्रीकी नागरिक वैध पासपोर्ट और वीजा प्रस्तुत करने में असफल रहे। वहीं एक अन्य मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को सीलमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 350 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज जय सिंह रोड स्थित NDCC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन किया। शिविर में नागरिकों से सीधे संवाद के माध्यम से 60 जन शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर संबंधित विभागों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान परिषद के 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर एक ही स्थान पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की। दक्षिण दिल्ली में प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत लोगों को उनके घरों के पास ही मालिकाना अधिकार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविरों की शुरुआत की गई है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज तेखंड गांव स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA बारात घर में पहले शिविर का उद्घाटन किया। ये दो दिवसीय शिविर तेखंड एक्सटेंशन और तेखंड गांव के निवासियों के लिए आयोजित किया गया है। श्री बिधोड़ी ने बताया कि ऐसे शिविर दक्षिण दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम के जन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जन स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निगम के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्पा सेंटरों, होटलों और मोटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही श्री वाही ने भारी मात्रा में कचरा उत्पादकों जैसे रेस्तरां, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि को अपने परिसरों तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता निरीक्षकों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जहां देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, वहीं आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से जुड़े दक्षिणी दिल्ली के मुख्य पाइपलाइन पर काम के कारण कल दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।
4: जलापूर्ति प्रभावित होने के कारण कल सवेरे 10 बजे से करीब 8 घंटे तक इन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जल बोर्ड के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में कैलाश नगर, गांधीनगर, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बटला हाउस, खान मार्केट, निजामुद्दीन, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, सराय काले खां, बदरपुर, सरिता विहार, श्रीनिवासपुरी, छतरपुर और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। वहीं तैमूर नगर ड्रेन के पास नई जल पाइपलाइन को मौजूदा पाइपलाइन से जोड़ने के कार्य के कारण कल सवेरे 10 बजे से सोमवार शाम 4 बजे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने द्वारका में सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के अंतर्गत आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। एक रिपोर्ट।
5: श्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के दौरान द्वारका, नरेला, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे पौधों का रोपण किया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही श्री सिंह ने विशेष रूप से अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाने पर बल देते हुए कहा कि फलदार वृक्ष न केवल हरित आवरण बढ़ाने में सहायक होते हैं बल्कि पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज सभी सहकारी संस्थाओं और उनके सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ सहकारिता जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त आधार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के संकल्प पर बल देते हुए कहा है कि इसे अब जन भागीदारी से पूरा करने का समय आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है जहां नागरिक पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामुदायिक पौधारोपण अभियान के लिए वृक्ष रथ बुला सकते हैं तथा दिल्ली ग्रीन वॉरियर के रूप में पंजीकरण भी करा सकते हैं।
6: दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे, साथ मिलके लगाएंगे। 7 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इनॉग्रेशन करेंगे इस पूरी मेगा प्लांटेशन ड्राइव का। मिलकर के पेड़ लगाएंगे और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दिल्ली ग्रीन वॉरियर के नाते भी कि सरकार जब भी प्लांटेशन करेगी आपको इनवाइट कर सकती है। ईवी पॉलिसी आ चुकी है, कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आइए मिलकर के दिल्ली को हरा भरा करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप के निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महान आध्यात्मिक चिंतक और भारतीय संस्कृति के वैश्विक संवाहक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आयोजित 35वें आम महोत्सव 2026 का आज दूसरा दिन है। दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय उत्सव दिल्ली हाट और जनकपुरी में कल तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
7: महोत्सव में आम की 400 से अधिक किस्में प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें हुसनारा, केसर, मल्लिका, आम्रपाली, फजली सहित अनेक प्रसिद्ध किस्में शामिल हैं। महोत्सव में आम उत्पादकों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और किसान संगठनों ने भी भाग लिया। साथ ही आगंतुकों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। वहीं इस महोत्सव में आम और आम से बने उत्पाद तथा पौधों की खरीदारी की सुविधा भी उपलब्ध है। ये उत्सव कल भी दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की। और सोनिया विहार जल संयंत्र और तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: हेलो जी, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज का शो बहुत ही खास है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास दूर से मेहमान जुड़ने वाले।
0: लड्डू का नाम जो ठगू रखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है। इसकी क्या कहानी है?
4: इसकी कहानी हम बाद में सुनाएंगे। क्यों पूनम, एक गाना सुने फिर? अच्छा सा,
5: हाँ जी बिल्कुल, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस गीत के बाद पूनम और प्राची की हम आपस में कराएंगे क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं किया, एक दूसरे से बात नहीं की।
0: और मैं आपको बताऊंगी पूनम और प्राची में खास कनेक्शन।
4: एब्सोल्युटली। तो आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन, एक ब्यूटीफुल ट्रैक। उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ पूनम के साथ, और साथ में प्राची भी दे रही है मेरा साथ। सो चलिए वापस चलते हैं अपनी प्यारी सी दोस्त पूनम के पास। पूनम क्या कर रही है, वो सो तो नहीं गई हमारी बातें सुन के? हेलो
1: हेलो,
0: मुझे लगा पूनम सो गई होगी। वेलकम बैक है पूनम जी। हाँ जी,
1: बिल्कुल शुक्रिया है बहुत आपका।
0: पूनम पूरा मुरादाबाद आपकी आवाज सुन रहा है आज की शाम। पहले तो ये बताओ कैसा फील कर रही हो
1: जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं और हमारी आवाज को भी सुन रहे हैं। तो सभी लिसनर बताएंगे कि लिसनरों को कैसा लग रहा है कार्यक्रम सुनकर।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में सबको बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि पूनम और प्राची की थोड़ी बातचीत कराएंगे, तो पूनम जी मैं चाहूंगा हमारी प्राची जो होस्ट है उनसे भी आप थोड़ी बातचीत करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो प्राची जी।
2: हेलो पूनम जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम एक साथ तीन इकट्ठा हुए रेडियो जॉकी। तो बताइए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है प्राची जी बात करके और कार्यक्रम में जुड़ के।
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम ठीक कहा कि हमें बहुत मजा आ रहा है कि हम तीन आज एक साथ जुड़े और हम बहुत सारा फन कर रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा और पूनम जी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपकी और मेरे नाम में एक खास कनेक्शन है, इसको हम अभी बता देते हैं अपने लिसनर्स को कि जो पूनम नाम है वो मेरी मम्मी का नाम है। तो जब मैंने आपका नाम सुना ना कि आपका नाम पूनम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
1: क्योंकि आपका नाम प्राची, मम्मी का नाम पूनम और मेरा नाम पूनम, क्या कनेक्शन है यार।
2: और वो विवाह मूवी वाली पूनम याद आ जाती है ना।
1: प्राची जी, तो हम दोनों का देखिए कितना बढ़िया कनेक्शन है और कितना बढ़िया सहयोग है आज की हम तीनों इकट्ठा है एक साथ।
2: और वैसे हमारे लिसनर्स, आप बताइए कि जो पीपी नाम की गर्ल्स होती है उनका जो होता है वाइब्स ज्यादा मैच करती है। मेरी अब तक जितने भी पी नाम वाली फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरी वाइब्स बहुत मैच करती है। तो लिसनर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतना पूनम पूनम हो गया है हमारी शादी में। पूनम जी, वो गाना तो डेफिनेटली लगता है,
2: प्ले करना
0: पड़ेगा, प्ले है ना
2: हमारी शादी को।
0: अभी हफ्ते हैं बाकी, चार चार सो बरस लगे, कुछ ऐसे गाना है। पूनम जी, इतना पूनम पूनम हो गया है तो ये विवाह फिल्म का गाना तो सुनना बनता है। हो पूनम हो पूनम हो प्राची हो पूनम, अच्छा गाना है ना।
1: अच्छा, आप भी गुनगुना रहे हैं?
0: हाँ जी हाँ जी। तो पूनम जी, कुछ लाइनें हो जाएं इस गाने से पहले, हम चाहेंगे कि कुछ इरशाद इरशाद अर्ज किया है पूनम जी आपने हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल, तो मैं सभी लिस्नरों के लिए बोल देती हूँ एक अच्छी सी लाइन और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आनंद जी,
0: जी जी,
1: ध्यान से सुनिएगा और मैं अब अर्ज कर रही हूँ। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते।
0: वाह।
1: फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते, बस जाते हैं वो एक दिल में आकर जो दिल से कभी नहीं जाते।
0: वाह।
1: फिलहाल ये जो लाइनें हैं लिसनर आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी को हम बोलेंगे। और आप सभी सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी आप सुनने वाले हैं प्राची के साथ, आनंद जी के साथ और साथ साथ
0: इसी बात पे हम भी कहना चाहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। वाह वाह तो कर दो कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता प्राची। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, कि लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता पूनम जी, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।
1: अनमोल नहीं होता, लेकिन हमारे लिस्नरों की तरह कोई अनमोल नहीं होता, हमारे लिस्नर बहुत अनमोल हैं।
0: सच में, इसी बात पे गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस मिलते हैं। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
3: Good morning.

me tea, coffee,

0: फास्टन योर सीट बेल्ट सर।
1: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
0: वेलकम बैक यू लिसनर, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आप जुड़े हैं प्राची आनंद और पूनम जी के साथ।
2: बिल्कुल, और पूनम जी हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज की शाम, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ठगू के लड्डू की स्टोरी प्राची को जाननी थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने इसको ठग लिया बातों बातों में, है ना पूनम?
3: हाँ जी हाँ, तो कानपुरिया का यही तो काम है ना, कानपुरिया हाँ। जो होते हैं ना वो पहले बातों बातों में ठग लेते हैं।
2: बेचारी प्राची सीधी साधी लड़की, उसको क्या पता कि कानपुरिया बहुत कंटाप मारते हैं।
3: बिल्कुल,
2: बहुत भौकाल मारते हैं, पता है।
0: अच्छा, तो पूनम जी यही स्टोरी है क्या, जो मतलब इसलिए लड्डू का नाम ठग्गू पड़ गया?
3: नहीं नहीं, ये तो वैसे स्टोरी नहीं है, और स्टोरी तो कुछ और ही है ठग्गू लड्डू की। फिलहाल तो फिर कभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर जानेंगे क्या स्टोरी है।
0: जब से आपने मुझे ठग्गू के लड्डू के बारे में बताया ना, तो मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि ठग्गू लड्डू ठग्गू कैसे बन गया।
2: प्राची की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और मेरे अंदर की श्वाई बाहर निकल गई है, क्या मैं सुना जू?
3: हाँ जी बिल्कुल सुना दीजिए।
2: ठीक है, मेरी शायरी है कि भैया आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए आप हमारे साथ अपना साथ, आपसे ही तो हमारे शो की जान है।
0: अरे बाबा, और इस शायरी को हम डेडिकेट करते हैं अपनी आरजी पूनम जी को, क्योंकि आज उन्होंने हमारे शो में आके हमारा जो मतलब एनर्जी लेवल है
2: पूरा अलग कर दिया,
0: बहुत हैपनिंग कर दिया है, और हम सच में बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं।
2: तो पूनम जी
0: आपके साथ आरजी पूनम जी, तो थैंक यू सो मच
2: फॉर कमिंग ऑन आवर शो।
3: बिल्कुल, मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ सभी श्रोताओं के लिए, और शायरी कुछ इस तरह से है। कश्ती खोल हुए किनारों का पता खोज लेती है, कश्ती खोल हुए किनारों का पता खोज लेती है, आए हुए तूफानों का रुख मोड़ देती है। जिंदगी इस तरह से बदलती है, जिंदगी कुछ इस तरह से बदलती है कि जहां भी मोड़ो जिंदगी उसी ओर मुड़ जाती है।
2: वाह वाह वाह, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, मतलब आनंद आ गया जिसको पढ़कर। अब मुझे लगता है कि प्राची भी कुछ सुनाने वाली है पूनम जी इसी बात पर।
3: जी हाँ बिल्कुल, प्राची भी बिल्कुल सुनाने वाली है और हम सब सुनने वाले हैं।
2: वेरी गुड,
0: थैंक यू सो मच पूनम जी कि आप मेरी शायरी सुनने के लिए इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। तो आपके लिए और हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मुझे याद आ रही है। दिल की बात जुबान तक आती है, दिल की बात जुबान तक आती है, और जुबान से गीत बन जाते हैं, और जुबान से गीत बन जाते हैं। आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, यही सर महफिल मुस्कुराहट बन जाती है।
2: वाह वाह वाह वाह, दोस्तों अभी फरमाइश मत दीजिएगा क्योंकि अभी हम आपकी प्ले नहीं कर पाएंगे फरमाइश। प्राची ने इसमें फरमाइश का जिक्र कर दिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी बात है, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी बातों की, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी प्यारी शेर व शायरी की, वो हम पढ़ेंगे, उनको हम शामिल करेंगे। गाने तो आप सुनते ही रहते हैं क्यों प्राची?
0: बिल्कुल सुनते रहते हैं। हाँ
2: जी, तो पूनम इस पे कुछ कहना चाहोगी इस शायरी पे आप?
3: जी मैं तो बस यही कहूंगी कि श्रोताओं इतनी अच्छी चीज जो शेर व शायरी आप सब सुन रहे हैं ना, और बातों की जो खिचड़ी हम सब पका रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। और आप सभी को शेर व शायरी जैसे कि हम सब कह रहे हैं वैसे ही याद आ रही हूँ, तो आप भी शेर व शायरी भेज सकते हैं और अपने अंदाज में, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी बात में मैं पूनम जी आपके लिए कहना चाहता हूँ कि दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर निभाने का।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सी लाइनें आपने बोली हैं आनंद जी, इसके लिए शुक्रिया।
2: मैं चाहूंगा इसी पर दो लाइनें आपकी भी हो जाए पूनम जी।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो इसी बात पे मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए बोलते हैं। ना दिन को करार ना रातों को चैन है, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, देखते हैं बस आपको एक झलक, दिल हो जाता बेचैन है।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: बहुत बढ़िया
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात पर एक गाना तो निकल रहा है हमारे दिल की तरंगों से, एक बेहतरीन ट्रैक आपके लिए निकल रहा है पूनम जी, हम आपके लिए गाना भेजते हैं, ठीक है?
3: जी जी,
2: और श्रोताओं आपके ही मचाइए, पूनम जी हमारे साथ बनी रहेंगी इस प्रोग्राम में। अगर आप भी कुछ ऐसी प्यारी बातें करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कहाँ पर मैसेज करेंगी प्राची?
0: आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 9837896896 पर।
2: चलो एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद आप

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद।

0: मोबाइल नंबर 7055070552।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: हेलो जी, हाय, कैसे हालचाल?
3: यूं ही बनाए रखी हमारा साथ, आपसे ही तो हमारी शो की जान है, आपसे ही तो हमारी शो की जान है।
2: तो आज शो की जान तो पूनम है ना?
3: हाँ हाँ बिल्कुल, आप पूनम जी, आप हमारी शो की जान है।
4: हमारे श्रोता शो की जान है, बिल्कुल, हमारे जो लिसनर हैं जो दिल के करीब हैं और हमेशा साथ निभाते हैं एफएम मुरादाबाद का, हमारे श्रोता इस शो की जान है।
3: वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरजी
2: पूनम जी,
3: पर
2: आप
3: जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो हमारा शो और
2: पहले प्राची की बात पूरी हो जाए फिर मैं पूछूंगा। क्या कह रहे हो, स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं?
3: पर जब आरजी पूनम जी जैसे स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं तो हमारा शो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना।
2: एब्सोल्युटली गॉट इट। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि पूनम जी इतनी अच्छी आवाज लेके घूम रही है, खाती क्या है, पूछेंगे इनसे कौन सी चाय का ये कमाल है या कौन सी रोटी ये खाती है। पूछेंगे
4: जरूर। मैं बता दूं, मुझे दाल चावल जो देसी खाना है ना, दाल चावल वही मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
2: हम भी जो है पूनम जी देसी खाना खाते हैं, हम चाइनीज बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम भी इंडियन खाते हैं। क्यों प्राची?
3: हाँ बिल्कुल, पर आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है,
4: बिल्कुल प्राची जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बताइए।
2: आपकी बातों में, मेरी बातों में ऐसा कुछ होना हो, लेकिन आपकी बातों में है दाल चावल का स्वाद और मेरी बातों में है लाल मिर्च का स्वाद।
4: ये तो आनंद जी ने बात को टाल दिया प्राची जी।
3: हाँ, पर उसमें तो आनंद जी एक्सपर्ट है
2: बिल्कुल। देखो यार, ऐसा है, एक्सपर्ट की जो है बहुत टांग खिंचाई हो रही है, तो हम एक गाना सुन लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तो एक प्यारा सा गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन सा स्टेशन सुन रहे हैं?
3: हम सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6
2: रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। बहुत ही बढ़िया, चलिए मिलते हैं गाने के बाद।

0: तो हमारे साथ कौन है आज हमारे शो में, वही आपका वेलकम करेंगी। जी मैम
1: जी, वेलकम है आप सभी लिसनर्स का। आप सब सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आरजे प्राची और आरजे आनंद के साथ।
0: और अपना भी तो बता दो नाम।
1: मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम सिंह, कानपुर से मैं भी आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो आप सभी श्रोताओं का वेलकम है एक बार फिर से।
0: वेरी नाइस जी प्राची, हम लोग अभी ऑफ एयर कुछ बात कर रहे थे जब गाना चल रहा था, तो
2: हम लोग बात ही कर रहे थे कि आप लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं क्या अच्छा कुक कर लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी पकाने की बात बहुत ज्यादा हो रही है। हम लोग बार बार कह रहे हैं ना खिचड़ी पक रही है,
0: और मजे तो की बात ये कि कोई खिचड़ी खा भी रहा है स्टूडियो में पकने के साथ साथ।
1: आनंद जी खिचड़ी कौन खा रहे हैं अब ये तो हमें बताइए आप।
0: नहीं ये लाइव नहीं बता सकते ना, लिस्नर भागे भागे आ जाएंगी इसीलिए।
1: लिस्नरों को भी खिचड़ी खिलानी पड़ेगी क्या?
0: वही वही वही।
2: और अभी हमारे पास ज्यादा खिचड़ी नहीं है,
0: बस सिर्फ दो चम्मच वो प्राची को खानी है।
1: अच्छा तो प्राची जी इसीलिए तो बुला नहीं रही किसी को, हमको भी नहीं बुला रही ना आपको बुला रही है, अकेले अकेले खिचड़ी खा रही है क्या?
2: नहीं नहीं मैं तो नहीं खा रही हूँ खिचड़ी अभी फिलहाल। हमारे स्टूडियो में खिचड़ी है पर वो अभी हम ज्यादा नहीं है तो
1: खा नहीं रही, आप खिचड़ी पका रही है प्राची।
0: ये है मेरी बात, सच तो यही है। तो वैसे तुम तो क्या अच्छा पकाती हो?
1: खिचड़ी पकाई जा रही है
2: तो अभी तो मैं खिचड़ी अच्छा पकाती हूँ। देखो अभी हम लोग कितनी अच्छी खिचड़ी पका रहे
1: हैं।
2: तो आपने देखिए जो अब खिचड़ी अभी हम अभी अभी पका रहे।
0: देखो तुम लोग मिलके खिचड़ी पकाओ, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में देसी घी डाल के खाऊंगा।
2: नहीं हम लोग तो शायद खिचड़ी पका देते हैं पर आप उस पे देसी घी से उसको बढ़िया बना देते हैं।
1: बड़ों के साथ अगर खाएंगे ना दही बड़े जब होंगे खिचड़ी के साथ, फिर तो क्या टेस्ट आएगा।
0: यार क्या कर रही है तुम, मतलब कौन सी एक्चुअल फुस्ट बना ना, कौन सी डिश थी है? ने कौन सी है खिचड़ी विद दही बड़ा? ओ भाई मुझे मारो, ये कानपुरिया ये कानपुर वाले कब से खाने लगे हैं।
1: प्राची जी आप
2: खा के दही बड़ी के साथ खिचड़ी, अरे वाह, हम जरूर ट्राई करेंगे पूनम जी।
1: जी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा आनंद जी, ये बहुत अच्छी डिश मैंने बताई है देसी।
0: और हमारे लिसनर अगर ट्राई करेंगे तो वो बहुत जूते मारेंगे, ध्यान रखना। ठीक है
2: ठीक है पूनम जी, आज आपने हमें
1: जो ट्राई करेंगे ना वो भी तारीफ करेंगे आनंद जी ने क्या खिचड़ी पकाई है आज।
2: अच्छा पूनम जी आपने आज हमें इतनी अच्छी मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हमें डिश बताई है, तो कुछ और भी ऐसी हमें डिशेस बताइए जो आपको लगता है कि हम लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि हम मुरादाबादी भी तो जाने कि मतलब कानपुर के जो लोग होते हैं उनका टेस्ट और कैसा होता है।
1: कानपुर का टेस्ट और मुरादाबाद का टेस्ट एक जैसा ही होता है, क्योंकि हम और आनंद जब खिचड़ी पकाते थे ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता था खाने में।
0: सही बात है ना।
2: हाँ कुछ और बताइए इंटरेस्टिंग सा, जैसे आपने अभी बताया खिचड़ी के साथ दही बड़े, कुछ और इंटरेस्टिंग सा है और
0: तू बता दे यार उसको मुरादाबाद के बारे में।
1: मुरादाबाद में और क्या खाया जाता है चाहिए बताइए।
0: हाँ, मुरादाबाद से वो बिलोंग नहीं करती तो यहाँ की क्या चीजें फेमस है बताओ कानपुर की स्पेशल।
2: मैं आपको बताऊँ तो मुरादाबाद की मुझे अपने मुरादाबाद की मुझे दाल बहुत बहुत पसंद है। इवन मुझे ना जो दाल है वो मुझे ऑल टाइम फेवरेट
0: दाल खिचड़ी में जो डालते हैं।
2: नहीं नहीं मुरादाबादी मूंग दाल।
0: मूंग दाल ओके ओके, वो शायद
2: वो मुझे ऑल टाइम फेवरेट है, वो अल्टीमेट फूड है मेरे लिए।
1: क्या बात है।
0: तो पूनम आप जब भी कभी कानपुर से यहाँ मुरादाबाद की ओर रवाना हो तो हम आपको मुरादाबादी दाल सर्व करेंगे वेलकम पे, है ना। और क्या फेमस है पूनम को ये भी बताओ यार।
2: और वैसे तो यहाँ बहुत कुछ सारी चीजें अच्छी मिलती है,
0: लेकिन मैं आपको बताऊँ पूनम जी यहाँ पे बिरयानी भी बहुत फेमस है।
1: हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, चिकन बिरयानी मुरादाबाद की बहुत ज्यादा फेमस है
0: वहाँ। यार हम लोग तो वेज है तो हम लोग को वेज बिरयानी का पता है यार,
1: लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो जो कि नॉन वेज खाते होंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ कि चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ की, और जाके श्रोता खा भी सकते हैं। वैसे हम लोग तो नहीं खाते हैं, हम लोग तो वेजिटेरियन है तो हम लोग को क्या मालूम कितनी टेस्टी है कितनी नहीं है, है ना। लेकिन हम सब तो बस वेज बिरयानी ही खा सकते हैं और वेज खिचड़ी जो कि हम लोग पका रहे हैं वो खा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सच में पूनम जी आपको मुरादाबाद के बारे में, मुरादाबाद की पीतल बहुत फेमस है पता है यहाँ की।
2: हाँ
1: यहाँ पर जो पीतल का कारोबार होता है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पीतल के नाम से ही मुरादाबाद फेमस है।
0: राइट राइट राइट, तो मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है यहाँ शो पे बोलने से पहले ना। तभी इतना अच्छा।
1: मुझे मुरादाबाद के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि
0: मुरादाबाद में एक चीज और बहुत फेमस है, यहाँ पर जो है ना खाने पीने की डिशेस तो है ही फेमस, लेकिन यहाँ के पार्क, यहाँ की यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है पूनम, यू नो क्यों प्राची? बाकी तो मुझे भी यहाँ का इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज पूनम मैं बताऊँ तो प्राची यहाँ से है तो ज्यादा जानती होगी लोकल के बारे में।
1: बिल्कुल, तो मुरादाबाद से प्राची जी थोड़ा और बताएं कुछ मुरादाबाद के बारे में।
0: एक यहाँ पे कैसा पार्क बना है जिसके अंदर 7 अजूबे हैं, बता ना यार।
2: हाँ, यहाँ एक ऐसा पार्क बना है जहाँ 7 अजूबे हैं, 7 नहीं मतलब जितने भी जो भी अच्छे मॉन्यूमेंट
0: पार्क है,
2: हाँ जितने भी मतलब वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ है, और वो वेस्ट से बने हैं, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो इधर इधर बहुत ज्यादा बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है मुरादाबाद में, तो उसका जो भी वेस्ट आता है उससे इतना वो पार्क बना है, और मैंने और आनंद ने उसे विजिट भी किया था, तो वो बहुत ही खूबसूरत है।
0: और
2: और
0: हमने वीडियो भी बनाया था गाइस, वो भी बहुत खूबसूरत है, लाइक कर देना आप,
2: हाँ,
0: है ना।
2: और उसको मतलब, और जब रात में जब वो जो व्यू आता है ना, जो रात में जो व्यू बनता है वो बहुत ही खूबसूरत है, और रात में अगर हम जाएंगे तो हमें लगता है अगर हमने वेस्ट ऑफ वंडर अगर हमने विजिट कर लिया तो हमने हमारी कंट्री के जितने भी स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका हिस्टोरिकल अपना इम्पोर्टेंस है वो सब हमने विजिट कर लिए। तो
1: बिल्कुल
2: वो जो पार्क है वो मुझे बहुत पसंद है।

0: स्पेशली उन लोगों को जो लोग हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए तो वो बहुत खास है। तो जब भी आप आए पूनम जी, तो वेस्ट ऑफ वंडर जरूर विजिट करिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। अभी तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है अपने शहर के बारे में, मुरादाबाद के बारे में, और रिसेप्शनिस्ट को पता भी हो गया, और उस मुरादाबाद जाने लायक और जाएंगे तो क्या क्या वहाँ देखने लायक है, जरूर से सभी लिसनर जाएंगे देखने के लिए, घूमने के लिए।
0: जी बिल्कुल पूनम जी,
2: जी चलिए, तो बातचीत तो चलती रहेगी पूनम से, और हमें इजाजत भी लेनी है, हमारे श्रोताओं को ज्यादा और बोर नहीं करेंगे, ज्ञान दे दे कि गाना
1: नहीं पकाएंगे क्योंकि
2: एक गाना लेते हैं,
0: हिस्ट्री चल भी तो सकती है,
2: म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आते हैं लौट कर पूनम के साथ, सुनेंगे और शायरी। चलो अभी लाइन पे रहिएगा आप लोग गाइज।

0: वेलकम बैक यू दोस्तों।
1: यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण
1: भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
2: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
4: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
2: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
7: किसान भाइयों, आप किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और

0: के सीसी साग से समृद्धि,
1: नियम और शर्तें लागू।
2: हेलो जी, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेडीज।

0: वेलकम बैक है दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। एक बार आप फिर से जुड़ गए आरजी आनंद, आरजी पूनम और प्राची के साथ।
1: क्या बात है, पूनम सो गई हो या जागी हो?
2: जी फिलहाल तो मैं जगी हुई हूँ, खिचड़ी खा रही हूँ।
1: अरे वाह, बहुत
0: अरे वाह पूनम जी, आपने भी खिचड़ी खाना शुरू कर दिया। तो क्या क्या ये खिचड़ी में तो बहुत सारा सामान डलता है, तो आप
2: बिल्कुल बिल्कुल। मैं खिचड़ी कैसे बनाती हूँ आनंदी, मैं बताऊँ?
0: हाँ बताइए।
2: खिचड़ी में बहुत सारा, जैसे कि प्राची ने बताया, बहुत सारा सामान पड़ता है। तो खिचड़ी को पहले मैं पानी थोड़ा सा रखती हूँ, जितना जरूरत होता है गर्म करने को, उसमें डालती हूँ जीरा और थोड़ी सी मेथी दाने डाल देती हूँ और थोड़ा सा हींग डालती हूँ और अच्छी सी फ्रेश की हुई दाल जो रहती है उड़द की, वो मैं डालती हूँ और इसमें मूंगफली के दाने रहते हैं वो मैं डालती हूँ और थोड़ा सा कटा हुआ पनीर है वो भी डालती हूँ और साथ साथ थोड़ी सी पालक जो होती है वो भी मैं थोड़ी सी डालती हूँ। इसके बाद जब बढ़िया से वो पकने लगता है तो जो चावल रखे होते हैं थोड़े से वो मैं डाल देती हूँ उसमें। इसके बाद पक जाता है बढ़िया से तो उसमें नमक और थोड़ा सा घी उसको डालने के बाद फिर मैं देसी घी से, एक चम्मच देसी घी से थोड़ा सा हींग डाल के मैं उस खिचड़ी को फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने के बाद फिर उस खिचड़ी को घी डाल के बाद में खाया जाता है तो बहुत टेस्टी लगती है, मजा आ जाता है खाने में।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच पूनम जी कि आपने भी एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बताई। आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत पसंद आई होगी।
1: डेफिनेटली, और अब हमारे जाने का समय हो रहा है, तो पूनम जी थैंक यू सो मच, रेसिपी बताई, शेरो शायरी सुनाई। जाते जाते क्या कहोगी मुरादाबाद के लिसनर को, कौन सी शेरो शायरी सुनाओगी?
2: चलते चलते बस मैं सभी लिसनर से एक शायरी बोलूंगी। वहां पर बस आपका नाम है, वहां पर बस आपका नाम है, कितनी सुहानी ये शाम है। दूर से भेजा है इन हवाओं ने पैगाम, दूर से भेजा है इन हवाओं ने पैगाम, बना रहे आप सभी लिसनरों का साथ, यही है दिल से हमारा सलाम।
0: थैंक यू सो मच पूनम जी, आपने कितनी सुंदर शायरी हमें सुनाई है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आरजी पूनम जी।
1: जाते जाते जाते जाते कोई संदेश जो मुरादाबाद को देना चाहती हो अपनी आवाज में?
2: मैं मुरादाबाद के हमारे जितने लिसनर्स सुन रहे हैं सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आसपास सफाई बना कर रखें, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, अपना पर्यावरण बचाना है तो आसपास हमें सफाई करनी है, पेड़ लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा जो हमें तरोताजा हवा ऑक्सीजन पेड़ देते हैं उन पेड़

0: खाना है और अपना ध्यान रखना है, साथ साथ जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनको दाना पानी भी खिलाते रहना है और सभी का ध्यान रखना है और सुनते रहना है, सुनाते रहना है और सुनते रहना है। FM मुरादाबाद, सुनते रहो और सुनाते रहो सभी के साथ।
1: थैंक यू सो मच पूनम जी।
2: थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। एंड जल्दी मिलेंगे आपको फिर इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे एक नए शो में, है ना?
0: बिल्कुल, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, श्रोता हूँ आप सभी से। और इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, मुझे आप सब दे जाने की इजाजत। कब मिलेंगे आनंद जी, ये तो आनंद जी ही बताएंगे।
2: प्राची आप बताओ, जाते जाते क्या क्या होगी लिसनर्स को?
1: पूनम जी, हम आपको बस हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आपसे फिर से एक प्यारी सी मुलाकात हो, और हमारे लिसनर से हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना पर्यावरण को बचाने की, अपने एनवायरनमेंट को बचाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें ट्रीज, सेव द ट्रीज़, हमें ट्रीज़ बचाने हैं, हमें पेड़ों को बचाना है, स्पेशली जो बड़े पेड़ हैं हमें उन्हें बचाना है, हमें उन्हें नहीं कटने देना है, क्योंकि अगर वो कट गए तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो है, बहुत जंगल जो हैं वो कट रहे हैं, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। तो प्लीज़ आपके आसपास आप मेक श्योर करिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि जो बिग ट्रीज है, बड़े पेड़ है, वो बिल्कुल भी नहीं कटे, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा अगर बड़े वृक्षों को काटा गया, क्योंकि सबसे पहले किसी का जीवन जो है संकट में नहीं आता। जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका जीवन सबसे पहले खतरे में आता है। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करती हूँ कि पेड़ बचाइए, खासकर बड़े पेड़ों को कटने से बचाइए।
2: थैंक यू सो मच पूनम एंड प्राची, लवली टॉकिंग टू यू। अभी हम लोग लेते हैं जाने की इजाजत, एक अच्छा गाना छोड़ के जा रहे हैं गाइस आपके लिए। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बाय बाय
1: बाय बाय पूनम जी,
2: बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।

इकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अपने बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं, तो फिर आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं, तो फिर देख लीजिए इश्क में हारा ऐसा दिखता है। इसके आगे कि अपने शहर मुरादाबाद के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जब अब भी तेरी याद में हैं तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में हैं। हम जब अब भी तेरी याद में हैं तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में हैं। खुशी होगी तुम्हें ये जानकर हम तेरे ही शहर मुरादाबाद में।
6: हाँ जी, कैसे हालचाल है? गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है एंड आई रियली होप सब बढ़िया ही होंगे। देखो यार, शाम होते होते ना मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है यार, काश कोई शेरो शायरी सुना देता तो नींद थोड़ी अच्छी आ जाती। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि शेरो शायरी सिर्फ नींद के लिए सुनी जाती है, नहीं भाई, ये ना बिल्कुल सुकून देती है। शेरो शायरी जो होती है ना भाई, उसकी वाइब ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा इस बात को जरा थोड़ा सा आज और बढ़ाते हैं, हालांकि नए रूप में लाने की कोशिश की है और कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में अपने साथ। हालांकि इनको आपने पहले भी सुना है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज वो कुछ नया लेकर आए हैं और मेरे साथ तो आई थिंक फर्स्ट टाइम होने वाला है उनको और मेरा कॉन्वर्सेशन, तो आई एम सुपर हैप्पी। और साथ में हमारी हवा हवाएं, आई मीन टू से अखिल भैया भी, जो अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं भाई, मतलब इज अ बिजनेस मैन यार, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, वार्म वेलकम करेंगे। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में राघव जी। राघव भाई, बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हाल चाल है आपके?
5: थैंक यू आनंद जी, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर?
6: मैं बढ़िया हूँ सर, एंड डोंट कॉल मी सर, हम सब ऐसे भाई भाई वाले हैं और एक महफिल जमाने आए तो यहाँ पे कोई नहीं, कोई आप नहीं, मतलब एक फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए यार,
7: क्योंकि भी नहीं है, क्योंकि सर ही सर हैं।
6: हाँ मैम नहीं है, नहीं मेरा सर वैसे सही है। ओके ओके,
5: मैम का तो अभाव ही है जीवन में सर।
6: क्या बात है। तो राघव जी, थोड़ा सा अपने बारे में प्रो दीजिए भैया।
5: आई थिंक मुझे पहले भी काफी लोगों ने सुन रखा होगा,
6: एब्सोल्युटली
5: आनंद तो आप हैं ही। आरजे राज जी जो हैं उनके साथ में रहता था, हमारी जुगलबंदी रहती थी पोइट्री की।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और मेरा नाम राघव गुप्ता है, शहर मुराद से बिलोंग करता हूँ, पेशे से वकील हूँ और आज शाम आपकी खिदमत में।
6: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ यार, आपने बताया आपका प्रोफेशन कुछ और है, वकील, मतलब वकील लोग किस लड़ते हैं, शेरो शायरी भी करते हैं, ये मुझे पता नहीं था यार। गलती से कहीं अगर कुछ लिख दिया, लिखने की जगह कुछ दिल की बात लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा।
5: ऐसा है सर, जो दलीलें जज के सामने पेश कर रह जाती है वो शायरी के तौर पर कह देते हैं।
6: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा पहले आपका इंटरव्यू ले लूँ, उसके बाद शुरू करेंगे सिलसिला। ये आपको आया कहाँ से, मतलब कि यार मुझे ये शेरो शायरी में भी करना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप लॉ कर रहे हैं आपका सारा फोकस वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये वाला कैसे मतलब हुआ, पहले ये आया या पहले लो आया, मेरे को ये जानना है।
5: नहीं नहीं, पहले मैंने लिखना काफी समय से ही शुरू कर दिया था।
6: अच्छा।
5: मतलब 10th क्लास के बाद जब गैप मिलता है आपको, रिजल्ट का जब वेट होता है, तभी मैंने पोएम्स लिखना शुरू कर दी थी।
6: अरे वाह।
5: लेकिन फिर मैं पहले बीच में रैप सॉन्ग्स भी लिखे और उसके बाद फिर मैं पोइट्री की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि काफी मुझे सुकून देती है।
6: अरे वाह, बहुत
5: ही बढ़िया। और अगर देखा जाए तो कि मेरी मम्मी को पढ़ने की आदत काफी है, वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है।
6: ओ वाह।
5: तो पुरानी किताब वो एकदम छोड़ती नहीं है हिंदी की, तो मुझे वहां थोड़ी आदत लगी,
6: मतलब इंस्पिरेशन मम्मी से मिली है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कह सकते हैं वो पढ़ने पढ़ाने वाला।
5: बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दादा तो उर्दू और हिंदी दोनों जानते थे।
6: अरे वाह, क्या बात है।
5: उनको काफी शौक था शायरी गजल सुनने का।
6: आपके तलफ्फुज़ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, हम भी हिल रहे हैं आज बैठे बैठे। चलो कुछ नया सीखेंगे। तो राघव भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया एंड आई थिंक मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनका दिल टूट जाता है या थोड़े से जो प्यार शियार करते हैं वो कुछ ज्यादा शेरो शायरी करते हैं, क्या ये सच बात है?
5: देखिए अगर हम गजल की और शायरी की बात करें तो इनिशियली इसकी शुरुआत लड़की की तारीफ करने से हुई थी।
6: ओके,
5: ठीक है, किसी आप कन्या की तारीफ कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका की तारीफ, अपने आप की आप तारीफ कर रहे हैं
6: जी,
5: शुरुआत वहां से हुई थी। फिर उसके बाद उसको अलग अलग आप ये कह सकते हैं अलग जोन में उसको बांट दिया गया।
6: ऑलराइट, कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट
5: कर दिया। जी जी, कहीं सियासत वाली बात कह दी,
6: हाँ।
5: कहीं गुरूर वाली बात कह दी आपने, ठीक है, और कहीं परेशानी आपने झलका दी, इंसानी जो एक परेशानी है उसको झलका दिया, तो इस स्तर में बढ़ता गया। तो अब आज के टाइम पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं है कि आप उसको छोड़ सके, ठीक है, जैसे पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, ऐसे ही अब लिखने की अलग अलग शाखाएं, आप जिस मर्जी टॉपिक पर लिख सकते हैं।
6: 100%
5: तो ये डिपेंड करता है लिखने वाले पे, वो किस तरह से किस बात को बयां करता है। बस ये है, एक फाइनल एम हर राइटर का ये रहता है कि वो सामने सुनने वाले तक पहुंच जाए।
6: वेरी गुड यार, एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें भाई।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: चलो जी, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। बातें चल रही हैं इतनी खूबसूरत आज की शाम, और ये महफिल और भी खूबसूरत होगी क्योंकि राघव जी हमारे बीच में है, अखिल भैया भी हैं, तो कुछ शेर व शायरी करेंगे, कुछ उनके दिल की बात सुनेंगे। फिलहाल आप सुनिए ये दिल से जुड़ा गाना, लौट कर आते हैं थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन जी। राघव जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। आई एम श्योर आपको भी आनंद आ रहा होगा आनंद के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम के साथ ये महफिल सूट कर रही है बिल्कुल।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो सूट कुछ और नहीं कर रहा है, वो जो लैपटॉप लेके भैया ऑफिस में नाच रहे हैं ना भैया, भरतनाट्यम मत करो, हम आज शेर व शायरी सुनेंगे। सो आगे बढ़ते हैं राघव जी। अब जो है मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो ऑफकोर्स आप खाली हाथ तो नहीं आते हो यार मेरे ऑफिस में, कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हो। तो आज की शाम जो है आप क्या लेकर आए हो मेरे लिसनर्स के लिए, हमारे एफएम मुरादाबाद के श्रोताओं के लिए, क्या आप सुनाने वाले हो?
1: जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक बहुत फेमस पोएट हैं
0: जी,
1: जवाद शेख
0: जी,
1: पाकिस्तान के हैं
0: जी,
1: उनकी कुछ लाइनें मेरे जहन में आ गई थी।
0: अरे वाह,
1: तो मैं अभी आपने जस्ट पूछा तो मैं उनको ही कहता हूँ कि
0: सो राघव भाई की जो बात है ना वो मैं डेफिनेटली पूरी सुनना चाहूंगा और जरूर सुनूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो हवा हवाएं हैं, इन्होंने कहा है भैया मेरा माइक रेडी है तो जरा मेरे को तुम थोड़ा सा बोलने का मौका दो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आप कैसे हैं?
2: धन्यवाद आनंद जी, आपने इतना बेहतरीन स्वागत किया है
0: जी।
2: हवा हवाई हमें बोल के बिल्कुल याद दिला दिया है कि एक आप ही हैं जिन्होंने नया नाम रख दिया है हमारा।
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज आप कभी गाड़ी में, कभी गाड़ी के बाहर, कभी स्कूटी में, कभी अपने जंक्शन पे, कभी हमारे स्टेशन पे, तो इतने सारे बंदे, एक ही बंदा इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होगा तो उसका नाम तो यही होना चाहिए यार भाई।
2: तुम नाराज हो तो ये दिल उदास है,
0: आय हाय हाय,
2: तुम पास हो तो हर लम्हा खास है।
0: अरे वाह क्या बात है,
2: तुम ही है ये जिंदगी मेरी, तुम बिन हर खुशी बेकार है।
1: वाह वाह
0: वाह वाह वाह, क्या बात है
1: सर।
0: तो ये खुशी किसके लिए बेकार है, भाभी जी के लिए या अपने लिए, आप किसके लिए बोलना चाहते हो?
2: कुछ तो सरप्राइज है, तो तुम तो यहाँ पे भी जो है
0: टांग खींच रहे
2: हो।
0: देखो ऐसी बात है, जब शेरो शायरी या पोइट्री चलेगी तो भैया उसमें तो पता चलेगा किसके लिए कौन क्या बोल रहा है।
2: दोस्तों और... मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, ये जो जग्गा जासूस है ना ये हमारा आनंद ही है यहाँ पे।
0: नहीं देखो ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ कि अंदर की बातें भी थोड़ी सी बाहर आ जाए, जब जब बात दिल तक पहुंच जाती है तो जुबा पे भी आ जानी चाहिए, क्यों राघव भैया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और लेखक का तो काम ही यही है।
0: एब्सोल्युटली यार, तो राघव भैया मैं थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहूंगा, आपकी तरफ हम शिरकत करेंगे, कुछ आप भी पेश कीजिए जनाब
1: जी। वो जो लाइन थी,
0: हाँ मुझे लगता है कि शायद आ गई है।
1: हाँ
0: जहन में वापस,
1: बिल्कुल जहन में,
0: प्लीज हम उसका इजहार।
1: जवाद शेख कहते हैं कि
0: जी
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह,
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं
0: जी,
1: मगर ऐसा ना कहिए वफा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह,
1: मगर ऐसा ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं, आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर।
0: वाह,
1: आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर, इस ताल्लुक में अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है,
1: कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है,
1: हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं। अब क्या मैं अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं, मान लेता हूं शख्स में था कुछ भी नहीं, और मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा जवाद, ऐसी मुजोर उदासी की दवा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह,
1: ऐसी मुजोर उदासी की दवा,
0: फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत ही बहुत मुझे पसंदीदा गजल लगती है जवाद शेख की। और एक आपको आज के टाइम का पता होगा, जो कोर्स चलता है वो सेमेस्टर वाइज चलता है।
0: करेक्ट,
1: ठीक है। और वहां मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं तब नैनीताल में रहता था मास्टर्स डिग्री के लिए, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि शहर पे कोहरे की चादर हो तो कुछ नहीं दिख पाता है, शहर पे कोहरे की चादर हो तो कुछ नहीं दिख पाता है, धूप आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है, आजकल की मोहब्बत के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा सेमेस्टर पूरा नहीं होता, इनका प्यार बदल जाता है।
0: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, और एक्चुअली ये सच्चाई भी है राघव भाई, जो आपने बोला ये सच्चाई से रूबरू कराने वाली बात है
1: जी। मैंने भी कहा तो मैंने बदलते हुए देखा है,
0: बिल्कुल सही कहा,
2: वो ऐसे ही होता है, सेमेस्टर में कभी कभी बैग भी लग जाती थी मगर तब भी चल रहा है मामला,
1: बैग से याद आया और उसी सेमेस्टर में ब्लॉक भी हो जाते थे, तब मैंने लिखा था कि खिड़की से झांक कर देखो दिख जाएगा आशिक तुम्हारा।
0: अरे
2: क्या बात,
1: खिड़की से झांक कर देखो दिख जाएगा आशिक तुम्हारा, बस आज आज के लिए अनब्लॉक कर दो, आज जन्मदिन है तुम्हारा।
0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, मुझे लग रहा है कि आज राघव जी चुन चुन के आपके लिए शेर व शायरी लेकर आए। गाइस अगर आपके पास भी कुछ अच्छी थॉट है, अच्छी शायरी है, तो डेफिनेटली आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं एफएम मुरादाबाद की ऑफिशियल आईडी पे, एफएम मुरादाबाद 9.6 की ऑफिशियल आईडी है, वहां जाके आपको जो भी लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप जरूर शेयर करें। तो राघव जी आगे क्या क्या कहती है आपकी शेर व शायरी?
1: आपने ये देखा होगा बहुत से लड़के या बहुत से प्रेमी अपनी प्रेमिका को पसंद करते हैं तो अगर वो डिनाई करते हैं सामने से, प्रेमिका डिनाई करती है तो पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एक मेरी कोशिश देखिएगा, मैंने लिखा कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो,
0: वाह
1: मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम जिसके साथ में रहो वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में रहो।
0: अरे बात, क्या बात,
1: मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में रहो।
2: इन्हीं बातों पे एक बात याद आ रही है,
0: स्वागत जी, स्वागत है आपका।
2: मतलब थोड़ा ऐसा है, अटपटा सा है, मगर चलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती। मतलब जो आजकल मोहब्बतें चल रही है ना
1: जी,
2: वो आजकल लाइक वाइक तभी मिलते हैं जब आपके सामने चेहरा बिल्कुल एकदम गोरा हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती,
1: नहीं होती।
2: सच्ची मोहब्बत दिल से होती है, वो जो बिना कहे समझ जाए हर दर्द, वही तो असली हमदर्द होती है।
1: वाह
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। उस हमदर्द को अपने पास रखना थोड़ी देर, नहीं तो मुझे दर्द हो जाएगा आपकी शायरी सुन के। तो एक काम करते हैं गाइस, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आपकी शायरी का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। महफिल ऐसी जमती रहेगी, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में महफिल जमा रहे हैं राघव जी। राघव जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरे को दिमाग से आउट हो रहा है
1: जी, मैं राघव गुप्ता लिखता हूँ।
2: अच्छा, गुप्ता जी, हमारे गुप्ता जी,
1: क्या देश के अच्छे नागरिक बनिए।
0: बहुत ही बढ़िया। और गुप्ता जी जब यहाँ पर पधार रहे हैं तो वो बढ़िया बढ़िया शेरो शायरी से जो है आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो गाड़ियों में अगर आप हैं गाड़ियों में तो वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा लो, कुछ अगला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे उनके चेहरे की स्माइल से लग रहा है कि कुछ तो तगड़ा सुनाने वाले हैं राघव जी।
1: एक बहुत कॉमन चीज आपने देखी होगी, अगर व्हाट्सएप पे हम या फेसबुक पर होते हैं तो सबसे पहले हम किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं, तो डीपी जो डिस्प्ले प्रोफाइल है वो देखते हैं।
0: आजकल हालांकि उसका स्क्रीनशॉट लेना अब अलाउड नहीं है, अब आप ले नहीं सकते हो, बंद हो गया, सिर्फ अंधेरा आएगी, पिक्चर नहीं आएगी।
1: लेकिन डीपी अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो डीपी दिख जाती है।
0: करेक्ट।
1: तो है कि इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया।
0: क्या बात,
1: इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया। वो जब मेरे साथ था तो सबसे छिपाया, वो आज जिसके साथ है उसे डीपी बना लिया।
0: अरे
2: डीपी अब ये राज खोली दो।
0: लेकिन यार राघव जी, जो आपने बात बोली ये एक्चुअली बिल्कुल सच्चाई से रूबरू करा देती है। आपकी सारी बातें, सारी जितनी भी आप बातें बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलेटेबल है। ऐसा लग रहा है कि आपने चीजों को सोच सोच के लिखा है। ये आपने खुद ने लिखा है?
1: जी बिल्कुल, मेरा ही लिखा है।
0: अरे वाह क्या बात है, नहीं सकता ओरिजिनल है इसका मतलब।
2: बिल्कुल,
0: बहुत ही बढ़िया। अब और क्या कुछ स्पेशल सुनाने वाले हो आप?
1: और मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है
0: जी,
1: मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है जुदा होने के बाद किसी के बिना, जैसे तारे निकल आते हैं आसमान में चांद के बिना।
0: क्या बात,
1: मुझे आज उसका एक खत आया है जिसमें लिखा है, राघव मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना।
0: वाह,
1: राघव मैं खुश नहीं हूँ।
0: क्या बात है,
2: जी लिखना भूल गई वो उसमें।
0: यार लेकिन मानना पड़ेगा राघव जी, आपकी बातें और आपके अल्फाज एकदम मतलब दिल को छू जा रहे हैं। गाइस आपको भी मजा आ रहा है ना?
2: बहुत
0: ही बढ़िया।
1: आप, मुझे ऐसा लगता है फिर आपने भी कहीं ना कहीं स्टेज पे कुछ ना कुछ इनमें से जो मैंने कहा है वो कहीं ना कहीं आपने
2: इनके साथ
1: फेस किया होगा।
2: अरे इनके साथ तो हर बार फेस करते ही आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब देखिए ऐसा होता है ना, जब आदमी बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो चीजें उसके साथ धीरे धीरे चल रही होती है। क्यों राघव जी?
1: बिल्कुल,
0: समय के साथ हर किसी के साथ होती है। और ये जो समय है ना, ये दोबारा नहीं आने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम में आपको जो चीज मिल रही है ना उसका आनंद उठाओ।
2: आनंद जो तुम्हारी
1: आनंद उठाओ की बात से याद आया कि आपको ना हर चीज के लिए व्याकुल नहीं हो जाना है।
0: ये भी बात,
1: जो जीवन में घट रहा है उसके पीछे आपको पढ़ने ही जाना है, उससे समझौता आपको करना ही होगा, मन को आपको समझाना होगा,
0: समझाना
1: ठीक है। और इसीलिए शायद लिसनर्स के सामने हम हैं जो हमें सुन पा रहे हैं।
2: आनंद जी के मन की बात मैं थोड़ी सी पढ़ पा रहा हूँ। आनंद जी कहना चाह रहे हैं, रूठना भी जरूरी है मोहब्बत में,
0: अरे वाह,
2: तभी तो मनाने का मजा आता है।
0: अरे वाह,
2: जो बिना कहे समझ जाए दिल की बात, वही तो सच्चा हमसफर कहलाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपके हमसफर से मैं आज ही बात करता हूँ। आपकी तरफ आना चाहूंगा जी, आप प्लीज कुछ सुनाइए बढ़िया सा। और यार माहौल वैसे इंटरेस्टिंग बना हुआ है, नो डाउट, बहुत अच्छा लग रहा है राघव जी। गाइस अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनली राघव जी से भी जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम आजकल बहुत वायरल हो रहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा एक बार आप बता दें अपना इंस्टाग्राम भी, भाई जरूरी है
1: जी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यूजर नेम है adv.raghavgupta।
0: अच्छा, मतलब अपना प्रोफेशन सब कुछ उसमें ऐड कर दिया आपने, शॉर्ट शॉर्ट।
1: मल्टीपल पेजेस नहीं बनाए, मैंने एक ही पेज बनाया।
0: वेरी नाइस यार, वेरी।
1: तो adv.raghavgupta, और अगर आप सर्च करेंगे एडवोकेट राघव गुप्ता से तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊंगा।
0: दैट्स वेरी नाइस।
1: वरना आप आनंद जी को मैसेज भेजिएगा, FM पर पढ़कर हमको बताएंगे जरूर।
0: अरे डेफिनेटली बताएंगे, उसके लिए आपको सुनना भी तो पड़ेगा।
1: मैं सुनता हूँ सर, मैं सुनता हूँ सर।
0: अब आप ये मत बोलिए, पड़ोसी भी सुनता है मेरा, इसलिए
1: ये सच बात है। मैंने आपको अभी ऑफ माइक भी बताया था, मैंने अभी आपको
0: ये एक दो बार और आपने बताया। हम कहीं में हम मजे की बात पता है क्या, गाइस इनकी बात रोक के कह रहा हूँ मैं, हम जब भी मिलते हैं किसी दावत नहीं मिलते हैं, वैसे तो खाली में नहीं मिलते हैं। ये आई डोंट नो, ये हुआ है हमारे साथ राघव जी एक दो बार।
1: ये इत्तेफाक है कि जब भी मैं आपसे मिला हूँ तो आपने मुझे खाने का सौभाग्य प्राप्त कराया है।
0: इसका मतलब ये है कि आज हम खाने का सौभाग्य बिल्कुल आपको प्राप्त कराएंगे। आप आए हैं
2: जो पार्टी है वो आनंद जी जो है, मतलब
0: मैं भी नहीं दे रहा होता, वो हम शादी में मिल रहे होते हैं।
1: हमारा बॉन्ड ही ऐसा है ना,
2: दोनों का लिफाफा एक हो जाता है उस समय।
0: नहीं यार वो बात अलग है, नहीं ऐसा नहीं होता। राघव जी का अपना होता है, मेरा अपना होता है, वो बिल्कुल नहीं है। और
1: खाली अपनी अपनी है लिफाफा।
2: देखिए साहब कैसे आप सभी लोग सुन रहे हैं और इस बात को कैसे छुपाया जा रहा है, ये आप आज सब जान सकते हैं कि आनंद ने और गुप्ता जी ने दोनों ने कैसे इस बात को एकदम पानी डाल दिया।
0: बिल्कुल भैया, और आप जो है पानी डाल के आग मत बुझाओ, माहौल को गर्म ही रहने दो अभी। सो राघव जी, अभी आपने बताया ना मुझे एक दो शादियों में बताया था कि आपके पड़ोसी भी रेडियो सुनते हैं।
1: बिल्कुल, मैं जहाँ रहता हूँ टाउन हॉल जगह है मुरादाबाद में, तो वहाँ पर ही मेरा निवास है, उसके बराबर में एक परिवार है, तो वो मतलब मॉर्निंग में 8-8:30 के आसपास जब मैं 9 बजे करीब निकल रहा होता हूँ घर से ऑफिस के लिए, तब मैं सुनता हूँ कि आपकी आवाज़ आ रही होती है। तो मैंने एक बार कहा भी है, बराबर में जो पड़ोस में बड़े भैया हैं तो उनको बताया था मैंने कि ये हमारे मित्र हैं और काफ़ी अच्छा बोलते हैं आरजे आनंद जी, ठीक है। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आपको परिचित हूँ।
0: ऐसा होता है भैया ऐसा, क्योंकि जो लोग सुनते हैं ना जब आप उनको बताते हैं उनको लगता नहीं है थोड़ा,
1: और वो डेली आपको सुनते हैं।
0: क्या
1: मॉर्निंग में वो डेली सुनते हैं, आप शाम को एफएम यूज करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है ना थोड़ा पुल होता है।
0: एब्सोल्युटली, ठीक है। और तो, बंदे को अपडेट चाहिए होती है,
1: बिल्कुल
0: एकदम से। वो क्या होता है ना, न्यूज पेपर खोलने का मन नहीं करता तो उसने अपना ट्यून कर दिया और अपने काम काज में
1: वो, हाँ बिल्कुल, गृह कार्य करते हुए आपको सुन लिया, ये हो रहा है।
0: बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं राघव जी, हमें स्टूडियो से बाहर भगाने की इरादा है क्या?
1: नहीं,
0: मतलब इतनी बढ़िया हिंदी आप बोलोगे तो कल ऐसा ना हो कि बॉस बोले बेटा आनंद तू बाहर, राघव जी तुम अंदर आओ, तुम्हारा टिकट जो है बाहर का है। मतलब इतना बढ़िया,
1: आप राघव गुप्ता देख के राघव चड्डा समझे क्या?
0: अरे नहीं यार, राघव चड्डा तो उनकी बात ही मत करो यार। चलो बैक टू पॉइंट यार, बातचीत के साथ साथ जो है
1: पॉलिटिकल टॉक्स,
0: समझदार है आप, समझ गए मेरी बात को। सो बैक टू पॉइंट, अब एक काम करते हैं, कुछ बढ़िया सा सुन लेते हैं राघव जी से, और मैं चाहूंगा कि यार हमारे लिसनर के लिए कुछ बढ़िया सा सुना दो यार, जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। और आजकल ना मुरादाबाद के अंदर एक समस्या बड़ी हो रही है जाम की, शाम को जब आप सड़कों में निकलेंगे तो तगड़ा जाम मिलता है, तो ऐसे में वो आपकी आवाज़
1: वो तो कॉमन है ना, शाम को तो जाम चलता ही है,
0: वो तो चलता ही है। ओ माय गॉड, समझ गया मैं, हाँ थोड़ा सा ना समझ हूँ बट अब समझदार बन गया हूँ मैं। हाँ तो कुछ सुना दो यार हमारे लिसनर्स के लिए बढ़िया।
2: पूरा बोल लेना ट्रैफिक जाम।
1: ट्रैफिक जाम, यस
0: बिल्कुल। अखिल जी आपकी बातों ने जो है ना हमें भी थोड़ा सा पूरी बात कहना भुला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक प्रेमी के अंदर दर्द होता है ना और वो इस स्थिति में होता है या उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है वो और भुला भी नहीं पा रहा है, तो उस एक स्टेज में लिखा था मैंने कि तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, हिजर के दिन भी हमने जुदाई की बात नहीं की, तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, हिजर के दिन भी हमने जुदाई की बात नहीं की, क्या इतने गैर हो गए हम तेरे लिए, करीब से गुजरे तो तूने बात नहीं की, करीब से गुजरे तो तूने बात नहीं की, और कोई कैसे कोई इतना करीब आ गया तेरे, तू तो कहती थी ना किसी से बात नहीं की, तू तो कहती थी ना किसी से बात नहीं की, और लग जाए सर के बल चोट हमें, लग जाए सर के बल चोट हमें, भूले तुझको जैसे कभी बात नहीं की, भूले तुझको जैसे कभी बात नहीं की।
2: बहुत ही बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रेमी को समझ नहीं आ रहा कि वो डोलो खाए या डिस्प्रेम। दर्द बहुत है,
0: क्या बात है। अखिल जी आप भी कुछ बढ़िया सा सुना दीजिए।
2: मोहब्बत की राहों में क्या क्या सितम सहते हैं, हम तो तैयार बैठे हैं साहब, आप जी, बस बोलो सुना दो, हम तो एकदम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सेवा में,
2: हाँ गूगल वालों को लेके बिल्कुल सामने बैठे। मोहब्बत की राहों में क्या क्या सहते हैं, जो प्रपोज करते हैं वही ब्लॉक भी रहते हैं, जिन्हें प्रपोज कर दिया वही ब्लॉक हो जाते हैं।
0: अगली बार
2: वो कहती थी तुम ही हो मेरी दुनिया, अब वही स्टेटस लगाती है फीलिंग सिंगल अगेन।
0: चलिए मैं आपसे बाद में पूछूंगा कौन है जो आपके लिए सिंगल बैठी है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं देखिए, राघव जी के साथ यानी राघव गुप्ता जी के साथ हमारी जो ये कॉन्वर्सेशन है वो चलती रहेगी, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो इमिडिएटली इंस्टाग्राम पे आके आप हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं बहुत ईजी है, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आपको मिलता हूँ, डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें आपके लिए चलती रहती हैं, तो फॉलो कीजिए, ऑफिशियल पेज मिलेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। कोई आपके आसपास है जो ऐसी शेरो शायरी करता है या कुछ बढ़िया लिखता है तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म खुला है, आप हमें इंस्टेंट डीएम करिए और हम जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: Again, welcome back. You are listening to FM Moradabad 89.6 FM, aapke shehar ka first community radio station. Ladies and gentlemen, boys and girls, sham ho rahi hai. I know that aapki jo sham hai woh aur khoobsurat bana rahe hain. Main saath mein Raghav ji hain, Akhil bhaiya hain aur hum teenon log milke aapko thoda sa pyar wala ehsaas bhi dila rahe hain. Unki poetry, unki jo shayari hai woh kahin na kahin aapko feel de hi rahi hongi. Baki hame bhi feel aa hi raha hai yaar. Matlab ab to lag raha hai ki yaar प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन प्यार में जब दिल टूटता है उसकी फीलिंग अलग होती है. वैसे राघव भाई आपका क्या मानना है, लाइफ में कुछ लोग कहते हैं एक बार दिल जरूर टूटना चाहिए.
1: मुझे ऐसा
0: मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं
2: वो नाम
0: लाइफ में ना एक बार दिल जरूर तोड़ना चाहिए. मैंने क्या कहा है वो डॉक्टर जो कहते हैं दिल में हड्डी नहीं होती, फिर उनसे भी मिलो. आपको क्या लगता है अखिल भाई, सच में
2: दिल टूटना तो नहीं चाहिए, दिल लगाना जरूर चाहिए लाइफ में एक बार.
0: लेकिन जब जो दिल लगाते हैं ना उसका दिल टूट भी जाता है.
1: देखिए मुझे ऐसा लगता है कृपा ना अलग अलग प्रकार की होती है जो भगवान आपके ऊपर देते हैं. आपको प्रेम होता है ये अलग प्रकार की कृपा है, और आपका दिल टूटा है अलग प्रकार की कृपा है. लेकिन अगर आप चाहे प्रेम में हो या दिल टूटा हो, आपको अपने आप को बनाना ही होगा. अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप उसको अपने आप को डिमोलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है.
0: एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ लोग ना इतना सीरियस वाला प्यार कर लेते हैं कि वो एक ही बंदे में पूरी दुनिया बसा लेते हैं राघव भाई, और वो बाद में बड़ा उनके लिए बहुत तकलीफ वाला होता है.
1: और वो इसके आगे की अगर मैं आपको बात बताऊं, सामने वाले को और तकलीफ देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए. ये कोई प्रेम है, ठीक है, एक फीलिंग तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की लाइफ की केयर बहुत जरूरी है.
0: करेक्ट यार, मतलब मुझे लगता है कि देखो हम प्यार कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला अगर नहीं इतना इंटरेस्टेड है तो हमें भी हम उसे प्यार समझ के भी छोड़ सकते हैं.
1: जी बिल्कुल,
0: बुलाया जा सकता है. बट वही होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है हम खुद भी परेशान हैं, कोशिशें करते हैं कि शायद चीजें सही हो जाएं, बट हमें पता है कि वो होंगी नहीं. उसके बावजूद भी हम मशक्कत करते रहते हैं कि शायद.
1: देखिए आपकी फीलिंग एक अलग साइड है, लेकिन दूसरे की जो सोच है या दूसरे का जो डिसीजन है उसकी रेस्पेक्ट एक बहुत जरूरी है.
0: गॉट इट यार.
2: पहली मोहब्बत की खुशबू भी अजीब होती है.
0: वाह,
2: दिल धड़कता है मगर बात नसीब होती है.
0: वाह वाह वाह,
2: वो नाम सुनते ही मुस्कुराना पड़ता है.
0: जी,
2: क्योंकि पहली मोहब्बत कभी गरीब नहीं होती है.
0: वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. तभी मैं कहूँ आपके पास इतनी बड़ी कार कैसे है. समझ चुका हूँ मैं, मतलब पहली मोहब्बत इनकी बहुत अमीर वाली थी. समझ क्यों मैं अखिल भाई,
2: मैं
0: भाभी से मिलता हूँ. मैं कल ही भाभी से
2: मिलूंगा. भाभी पे क्यों पहुंच जाते हैं,
0: जरूरी है ना इतनी सारी मोहब्बत.
2: तुम्हें मुस्कुराता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं.
0: नहीं बहुत अच्छा लग रहा, वो बात अलग है, वो बात अलग है.
1: इस कन्वर्सेशन में भी ना भाभी जीत गई. डर तो डर दिख रहा है ना, भाभी जीत गई.
0: और बिल्कुल सुन रही हूँ, नहीं पता है, डर तो है. आज घर पे आ जाओगे फिर शाम को तो सारी अमीरी और गरीबी एक साथ ही होगी.
1: तो आप
2: डर के आगे जीत है.
1: आरजे आनंद जी, अब आप इस एंगल से देखिए कि जो भाभी प्रेम करती है भैया से,
0: जी
1: वो कितना खुश हो रही होंगी ना.
0: करेक्ट,
1: उनका प्रेम तो जीत गया ना.
0: चलिए भाभी जी, हमने आपकी भी तारीफ करी दी, और बाकी
1: कुछ लाइन सुनाने के लिए
0: मैं वही कह रहा था.
2: ये जो इनके पास जो घर में भाभी रहती है उन्हें मना
0: नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अभी ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, जो हस्बैंड अपनी बीबी के साथ जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बढ़िया सो जाए.
1: बिल्कुल, मैं सारी सुंदर कन्याओं के लिए, और जो पति हैं अपनी पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ बैठे हुए, तो उनकी तरफ से
2: उनके लिए प्रेमिका के साथ बैठा दिए.
0: नहीं मतलब एक बार बताओ, शादी के बाद हमारी बीबी हमारी प्रेमिका नहीं हो सकती यार. आगे यार कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है यार.
2: ये गाड़ी जो है मतलब पहुंचाना चाहता
0: हूं मैं आपकी बात पे, यहीं पे मैं अखिल जी, अखिल भैया आपकी बात पे कहना चाहता हूँ. आपने बोला कि आपकी बीवी आपकी प्रेमिका नहीं है, है?
2: अब आप बोलते
1: हो.
0: चलो राघव जी शुरू करते हैं यार, प्लीज यार.
1: एक बहुत सुंदर मैंने लाइन लिखी थी, वो आपने याद दिलाया बस, कि हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे.
0: हाँ,
1: हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे.
0: वाह,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे. मेरे शौक वैसे इतने खास तो नहीं, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे. और मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे.
0: अरे वाह,
1: तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे. और कोई तस्वीर जमाने में उदासीन दिख गई तो फिर, कोई तस्वीर जमाने में उदासीन दिख गई तो फिर, तेरी चमकती मुस्कुराहट का हिस्सा उसमें लगाएंगे. और फूल लगाकर घर की रौनक नहीं बढ़ाऊंगा. आनंद जी, फूल लगाकर घर की रौनक नहीं बढ़ाऊंगा, हम तेरे दुपट्टे से अपना कमरा सजाएंगे.
2: क्या,
0: आनंद जी मुझसे पहले ख्यालों में खोया हुआ था यार।
2: तुम शायरी सुनते सुनते खो जाते हो ना।
0: अरे यार,
2: मैं बस इनसे यही कहूंगा कि जो अभी इन्होंने बात कही
1: मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने,
2: नहीं नहीं मिट्टी के बर्तनों से पहले वाली बात जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी,
2: तो ये अपना जन्मदिन भले ही भूल जाना शादी के बाद, मगर बीवी का जन्मदिन मत भूलना कभी भी।
0: आपने कितनी बार याद रखा यार ये बता दो।
1: और सर इसके आगे बोल
2: दीजिए, टैटू बनवा लिया
1: इसके आगे बोल दीजिए, जनहित में जारी।
0: मैं आज इनका टैटू इंस्टाग्राम पे रिवील करता हूँ, हैवी या नहीं।
2: इन्होंने भाभी के लिए कुछ नहीं बोले, भाभी के लिए मैं बोल देता हूँ।
0: अच्छा आप ही बोल दो,
1: हमारी भाभी के लिए
0: राघव जी। मैं अच्छा हमारी भाभी के लिए या
2: नहीं, नहीं, जनरल भाभी
0: जितने भी लोग सुन रहे हैं गाड़ियों में। ऑल राइट, तो राघव जी एक काम करते हैं, मैं और आप बाहर निकलते हैं, जूते अगर पड़े तो हम दोनों बच जाएंगे, बेटर यही है। तो आप प्लीज
2: ये आनंद के ही बोल हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ।
0: हाँ हाँ
2: प्लीज। भाभी का प्यार भी अजीब होता है,
0: अरे वाह,
2: डांट में भी मिठास करीब होता है, राखी सही पर खास होता है, घर में वो खुशियों का आकाश होता है।
1: क्या अलग एंगल पे मोड़ दिया सर।
0: नहीं समझदार है, मुझे पता है। अच्छा राघव जी मैं बस जाते जाते आपसे एक चीज पे बात करना चाहूंगा, मतलब अगर आप इसमें कुछ कह सको कि आजकल ना लोग रिश्ते दिल से नहीं, उनका वो फायदा देखकर रिश्ते निभाते हैं। अब जो है रिश्तों में फायदे ज्यादा हो गए और प्यार थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब जो जेन्युइन चीज मुझे लगती है, जैसे आजकल सुपर
1: बेनिफिशियरी रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट, वही वाला। तो उसके ऊपर कुछ अगर आप कहना चाहें मैं चाहूंगा, क्योंकि आजकल ये हो रहा है, नो डाउट।
1: बिल्कुल ऐसा है, एक हमने लिखा था, देखता हूँ कितनी आपकी बात से बात पे, एक मैंने लिखा था देखता हूँ कितने आपकी बात पर फिट बैठता है कि
0: जी।
1: हमें छोड़कर तुझको जो मुनाफा हुआ, हमें छोड़कर तुझको जो मुनाफा हुआ
0: जी,
1: दुगना करो ये शख्स फिर तुम्हारा हुआ।
0: क्या बात है,
1: दुगना करो ये शख्स फिर तुम्हारा हुआ, कैद रखिए अपनी निगेबानी में हमें, वसूल लीजिए अगर तुमको कोई खसारा हुआ।
0: क्या बात है,
1: कैद रखिए अपनी निगेबानी में हमें, वसूल लीजिए अगर कोई खसारा हुआ, कर लेंगे खुद को हम खत्म तेरे लिए, हमारे लिए तू शख्स इतना प्यारा हुआ, और बता हमसे ज्यादा ख्याल रखता है क्या, वो रकीब जो तेरा नया सहारा हुआ, वो रकीब जो तेरा नया सहारा।
2: बहुत
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो शेरो शायरी का सहारा ही आप हमें देते रहिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसी अच्छी अच्छी पोएट्रीज और शायरियां अपने दिल के जज्बात हमारे रेडियो श्रोताओं तक जरूर शेयर करते रहेंगे। आपको कैसा लगा राघव जी आकर स्टूडियो?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो जुगलबंदी हम तीनों की बैठी है बहुत अच्छा लगा।
0: नहीं आपकी और राज की तो बैठती रहती थी, बट आज थोड़ा सा चेंज हो गया है
1: जी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपने एकदम खट्टा मीठा, एक
0: वो तो हमारे अखिल भाई की क्रेडिट है इसमें, थैंक यू सो मच अखिल जी। आप सोचने जाते जाते भी कुछ चिपका दूं तो वो बात अलग है। फिलहाल अब हम इस रैप अप करेंगे अपने शो को,
1: तो जाते जाते बस इतना कहूंगा कि कैंडल पिघल रही है, तुम कब आओगे, हमारे केक की मिठास तुम कब बढ़ाओगे, तुम्हारे बगैर ही गुजर रहे हैं जन्मदिन सारे, तुमने क्या सोच रखा है सीधे मौत पे ही आओगे।
0: बहुत बहुत ही बढ़िया साहब जी, थैंक यू सो मच जी। अखिल जी आप प्लीज कहिए।
2: मैं तो कहता हूं धमाकेदार, बहुत ही बात एकदम, मतलब आपने गहरी सोच, मतलब दिल से एकदम गहरेपन से निकाल के गई है।
0: राघव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि अगली बार भी आप अपने दिल के पन्नों से ऐसी ख्याल शेरो शायरी करते रहें और लाते रहें, और हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपने जो ये एक बहुत ही अच्छा अपना एक प्लेटफॉर्म चुना है बेसिकली, क्योंकि यार मुझे लगता है पढ़ना

0: जरूर जरूर, हम तो चाहेंगे साथ में बिठाएंगे भाई।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: हो सकता है राघव जी भी आपके साथ बैठे और आप मिलके एक धमा चौकड़ी मचाओ। तो वही बात मैं भी अगेन रिपीट करूंगा, अगर आपके पास भी कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, स्पेशली शेर व शायरी का, आप लिखते हैं या आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आपका स्वागत है FM मुरादाबाद स्टेशन में। आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 हमारी ऑफिशियल ID है, वहां जाके आप हमें बता सकते हैं आपकी जो भी आपके पास टैलेंट है, आप प्लीज हमें मैसेज कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं 9837896896, ये स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप हमें अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है अपनी चीजें हमें शेयर कर सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच इस सेशन को खूबसूरत बनाने के लिए राघव जी, आपके दिल से धन्यवाद। अखिल भैया आपका भी
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आनंद जी,
1: आपने
2: एकदम आनंद मैं कर दिया इस पूरे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अब जो है हम सब अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। रेडियो बजाते रहिए,
2: गुनगुनाते
0: रहिए। बाय बाय।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
6: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
5: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
6: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
5: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
6: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन,
5: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
6: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
5: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
6: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
5: EKCC, साख से समृद्धि।
6: नियम और शर्तें लागू।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।